FM 104 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026, प्रातः की 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र के प्रसारण आरंभ होते हैं। हम अपने सारे श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती से हिंदी में समाचार। 6:05 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम वंदना। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए।

0: इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे मानव, तू तेरा मेरा करता रहता है, पर ये भूल जाता है कि ना ये तेरा है ना ये मेरा है। हम सब तो अपना अपना अभिनय निभाने आए हैं, और एक बार इस मंच का पर्दा गिर जाए तो हम अपने अपने धाम चले जाएंगे।

जिस मन में दया होती है वहाँ प्रभु स्वयं निवास करते हैं। परमात्मा हर उस दिल में बसते हैं जो साफ और निष्कपट हो, क्योंकि परमात्मा दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहता है।

प्रभु का नाम मन को शांति और आत्मा को शक्ति देता है। ईश्वर कभी भी भाग्य नहीं बदलते, वह हमें सही राह जरूर दिखाते हैं।

धर्म वह दीपक है जो जीवन के अंधकार में सही मार्ग दिखाता है, क्योंकि भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होता।

श्रोताओं, आप सब पर प्रभु परमात्मा की कृपा यूं ही बनी रहे, इसी आशा के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस कान। संगीत रचना सतीश भाटिया की है। युगल कलाकार हैं चतुर सेन और राजेंद्र काचरू।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। तया निधान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वनगमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। संगीत रचना सतीश भाटिया की थी। युगल कलाकार थे चतुर सेन और राजेंद्र काचरू। FM एंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज रविवार है। विक्रम संवत 2083 के ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। ऋतु चल रही है ग्रीष्म। सूर्योदय हुआ प्रातः 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर। श्रोताओं, अब जानते हैं टुडेज अपडेट।

श्रोताओं, टुडेज अपडेट में सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को रक्षा प्रमुख नियुक्त किया है, जो सेवानिवृत्त हैं, जो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। वर्तमान रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त होगा।

पंचायती राज मंत्रालय 2 मई 2026 से हैदराबाद स्थित NIRD MPR में आत्मनिर्भर पंचायत पहल पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

श्रोताओ, रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जिसे लेकर आते हैं अमरीक सिंह। शाम 6:20 का समय नियत है कार्यक्रम गीता संदेश के लिए, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर सुरेश कुमार से अध्याय 2 के श्लोक 64 से 68 तक की व्याख्या। शाम 5:30 का समय नियत है कार्यक्रम युववाणी के लिए, हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। शाम 5:30 पर जिसमें होगी युवा फरमाइश और साथ ही चर्चा होगी मेरे सपनों का भारत। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अन्नदाता में थारे संदेश मारे गीत। प्रातः 10 बजे कार्यक्रम शक्ति मंच में हमारी महिला साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम, होगी ढेर सारी चर्चाएं, होगा ढेर सारा मनोरंजन, लेकर आएंगी हेमलता। प्रातः 10:30 पर हमारे बच्चों की बगिया सचेगी कार्यक्रम बाल सभा में, होंगी बच्चों की रचनाएं और कुछ चर्चाएं। संगीत से जुड़े मुख्य आकर्षणों में श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप लुत्फ उठाइएगा सदाबहार गीतों के कार्यक्रम दिल पुकारेगा। प्रातः 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बाजे नगाड़ा, ये लोक गीतों का कार्यक्रम है, इसका आनंद उठाइएगा प्रातः 7:40 पर। हर दिल लजीज कार्यक्रम सुबह सवेरे, इसका समय आपका जाना पहचाना प्रातः 8:30 से प्रातः 9:30 तक होगा। एक आसान सा प्रश्न, साथ ही चर्चा होगी भारत की गूंज आकाशवाणी, साथ ही इलेक्शन कमीशन के बारे में भी आप जानकारी पाएंगे।

गैर फिल्मी गीतों और नगमों से सजा कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रातः 9:30 पर कार्यक्रम स्वरांजलि और शाम 7:45 पर कार्यक्रम गुलदस्ता में। शाम 7:30 का समय है हमारे फौजी भाइयों के कार्यक्रम जय जवान का। श्रोताओं, आज है रविवार तो रात्रि 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो FM। ये सजीव फन इन कार्यक्रम है जिसमें आप सुनते हैं अपने मनपसंद गीत और करते हैं हमसे ढेर सारी बातें। समय नोट कीजिए, रात्रि 10 से रात्रि 11 तक। शाम रात्रि 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मजेदार गीत और कुछ प्यारी प्यारी बातें।

अगर आप जानना चाहते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में तो आप सुनते हैं रूपरेखा शाम 5 बजे और प्रातः 6:45 पर FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। इन संदेशों के बाद आप सुनेंगे देश का।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे देश कान FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 7:10 पर जुड़िएगा कार्यक्रम दिल पुकारी के लिए। कृपया रेले की प्रतीक्षा करें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमीं वर्षपूर्तिम् एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य सप्ततितमं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटिरूप्यकाणाम् अनेकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रीय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिमबंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिमबंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री केन्द्रीयगृहमन्त्री रक्षामन्त्री भाजपादलाध्यक्षः अनेके मुख्यमन्त्रिणः मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकाररचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्रामसड़कयोजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दास्थले अद्य रजतजयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीयग्रामीणविकासमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीयर्तुविभागेन आगामिषु 2-3 दिवसेषु केरललक्षद्वीपदक्षिणकर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचण्डवृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स् दलेन राजस्थान रॉयल्स् दलं 77 धावनाङ्कैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स् दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स् दलेन 30-200 धावनाङ्कानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। VCK और IUML पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरते युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिटिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad at around 3 p.m. He will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. The sacred Somnath Temple is celebrating 75 years of the modern journey evolving into a global center of spirituality and sustainable tourism. With Prime Minister Narendra Modi set to grace the Somnath Amrit Parv, the temple has entered a golden era under his leadership as the chairman of the Somnath Trust. Beyond its religious significance, Somnath is emerging as a pioneer in environmental conservation, aiming to become India's first net zero temple. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn in along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailashnathan invited Rangasamy to form a new government in the Union Territory. Mr. Rangasamy will be sworn in as Chief Minister on May 13th. Mr. Rangasamy is set to assume office as Chief Minister for a fifth term after the AINRC-led NDA secured a comfortable victory in the Union Territory election. The top brass of the Congress party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general.

0: review early warning systems, resource deployment and interagency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss to property. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures for the labour codes. The Ministry of Labour and Employment said the reforms aim to ensure timely payment of wages, mandatory remittance of social security contributions, greater accountability of contractors and principal employers, and stronger enforcement mechanisms against violations of labour laws. Defence Research and Development Organisation has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a runtime of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. In IPL cricket, today Chennai Super Kings and Lucknow Super Giants will clash at M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In the second match of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians in Raipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: FM एंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 7:10 हुए हैं। अब समय है आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम दिल पुकारे का। श्रोताओं, पूरे सप्ताह आप बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे थोड़ी सी थकावट महसूस आपको होने लग जाती है, क्योंकि भाई हमें भी ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है तो आ जाता है संडे, रविवार, और आराम से उठना, आराम से हर कार्य को करना और बड़ी ही अच्छी तरह से उसकी फिनिशिंग देना, ऐसे ही होता है ना। क्योंकि सुबह सवेरे जल्दी जल्दी उठना, अपने अपने कार्यों को पूरा करना, गंतव्यों तक जाना, कार्य क्षेत्रों तक जाना, जहां भी आप जाना चाहते हैं फटाफट से जाना चाहते हैं और पहुंच जाते अपनी मंजिल तक, पर इस भागा दौड़ी में कहीं ना कहीं आपका सुकून पीछे रह जाता है। तो उस सुकून को हम बरकरार रखने आ गए हैं। आज है आपके साथ आपकी अपनी हंसती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी। जी हाँ श्रोताओं, गर्मी का मौसम आ चुका है। गर्मी के मौसम में जहाँ आपको हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है, खूब सारा पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए, ज़्यादा इधर जब धूप होती है इधर उधर ना घूमिए। और भाई आज तो संडे है तो आराम से बैठिए अपने घर में और आराम से नाश्ता कीजिए और रेडियो सेट को ट्यून कर लीजिए FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र पर। ऐप के माध्यम से पूरे विश्व में आप आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे होंगे, है ना। तो चलिए फटाफट से कुछ ऐसे गीतों को संजो कर आपके पास पेश कर देते हैं, नजर कर देते हैं, जिसे आपको बेहद मजा आने वाला है। कार्यक्रम का आगाज इस प्यार से गीत के साथ। फिल्म का नाम साहिब। श्रोताओं, अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित ये फिल्म 1985 में आई थी और ये 1981 में बनी बंगाली फिल्म साहिब का रीमेक थी। आपको बता दें, मुख्य भूमिकाओं में अनिल कपूर, अमृता सिंह, राखी, देवेन वर्मा, उत्पल दत्त, विश्वजीत, विजय अरोड़ा और बहुत से ऐसे कलाकार जिन्होंने इस फिल्म को के गीतों को, फिल्म में अभिनय को आज भी यादगार बनाया हुआ है। फिल्म के गीत अनजान ने लिखे थे और जो संगीत था वो था बप्पी लहरी का संगीत था, और जो गीत हम आपको सुना रहे हैं उसमें युगल कलाकार भी बप्पी लहरी और एस जानकी हैं। जी हाँ, आप समझ गए कौन सा गीत हम आपको सुनाने वाले हैं।

जी आशुतोष, कोशिश की है कुछ ऐसे गीतों को चुनकर लाने की जिससे आप सुबह सवेरे बेहद खुश हो जाए, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं पूरे सप्ताह, परेशान से भी रहते हैं, क्योंकि कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है रविवार को बहुत अच्छा बनाने की और बहुत अच्छे अच्छे गीतों को चुनकर लाने की। कार्यक्रम का अगला गीत 1981 में आई फिल्म याराना से, याद आ गई होगी आपको श्रोताओं ये फिल्म। जी हाँ, मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा और कादर खान। राजेश रोशन के संगीत में अनजान ने इन गीतों को लिखा जो बेहद ही लोकप्रिय प्रिय रहे और ये गीत आज तक सुने जा रहे हैं। जो गीत आपको सुनवाएंगे श्रोताओं, उसे गाया किशोर कुमार ने। इससे मैं आपको बता दें कि फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था अमजद खान को। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ऐसे गाने हम ले ले लेकर आए हैं जिससे आप थोड़े से थिरकने को मजबूर तो जरूर हो रहे होंगे। अरे भाई, सुबह सवेरे का समय है, तो ऐसे में अगर सवेरे का माहौल अगर अच्छा बन जाए ना, तो पूरा दिन बस मजा ही आ जाता है। तो कोशिश हम कर रहे हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के माध्यम से। कार्यक्रम का अगला गीत 1988 में आई फिल्म खून भरी मांग से, जिसका निर्देशन और निर्माण किया राकेश रोशन ने। मुख्य भूमिकाओं में नजर आए रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया। और साथ ही आपको बता दें कि इसका जो संगीत था राजेश रोशन का था, और गीतकार थे इंदिवर। जो गीत आपको सुनवाएंगे उसे गाया है आशा भोसले ने। और साथ ही आपको जानकारी दे दें 1979 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार

श्रोताओं, भी आपने सुना ये गीत आशा भोसले के स्वर में। फिल्म का नाम था खून भरी मांग। कार्यक्रम का अगला गीत 1980 में आई फिल्म कुर्बानी से। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए विनोद खन्ना, जीनत अमान, अमजद खान, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, अमरीश पुरी और फिरोज खान। इस फिल्म का श्रोताओं जो है निर्देशन भी इन्होंने ही किया था, निर्माण भी फिरोज खान ने किया था। तो बहुत ही अच्छी फिल्म रही थी और इसका गीत संगीत की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा और सुपर डुपर हिट रहा, जिसे दिया था बिद्दू ने। और जो गीत आपको सुनवाएंगे, इसे लिखा इंदिवर ने, संगीत बिद्दू ने, और जो गीत को गाया है वो नाजिया हसन ने। 28वें फिल्मफेयर पुरस्कार में श्रोताओं सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक नाजिया हसन को मिला था ये पुरस्कार, और यही गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। और साथ ही सर्वश्रेष्ठ ध्वनि अभी लेखपाल मिला था पी हरिकिशन को। तो आइए सुनते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजित ये गीत नाजिया हसन के स्वर में।

श्रोताओं, अगला गीत 1988 में फिल्म आई हत्या, जिसका निर्देशन किया कीर्ति कुमार ने। मुख्य भूमिकाओं में नजर आए गोविंदा, जो एक फिल्म थी। ये फिल्म थी सस्पेंस थ्रिलर। और साथ ही आपको बता दें, मुख्य भूमिकाओं में गोविंदा के साथ थे नीलम अनुपम खेर। और ये कहानी बहुत ही अच्छी थी, आपको याद भी होगी, छोटे से बच्चे के ऊपर थी, जिन जो बोल या सुन नहीं सकता था पर समझता सब कुछ था। तो इसी फिल्म का ये एक प्यारा सा गीत, ये भी डिस्को नंबर है श्रोताओं, यही आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, भी आपने सुना यह गीत जिसे गाया था सपना मुखर्जी और मोहम्मद अजीज ने, और गीत इंदिवर के थे, संगीत वपील लहरी का। और इस फिल्म को दो पुरस्कार भी मिले थे, फिल्म फेयर पुरस्कार लीलाधर सावंत को सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का, और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन पुरस्कार का जेपी सहगल को। तो आज हमने कोशिश की आपको सुपर डुपर गीत वो सुनवाने की जिसमें थोड़ा सा डांसिंग नंबर भी था, जिससे आपकी सेहत बेहद अच्छी रहे और आप थिरकने पर मजबूर हो जाएं। गीत के बोल जो पूरा दिन आपके लव्स जो इसके ऐसे थे जो चलते रहे आपके जीवा पर। तो इसी आशा के साथ कि आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र FM 101.4 MHz को सुनते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। अब अपनी हंसती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी को कार्यक्रम दिल पुकारे संपन्न करने की अनुमति दीजिए। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा में इंद्रराज दास को।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा एफएम एंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं श्रोताओं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर। जुड़िएगा आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से कार्यक्रम सुबह सवेरे के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे

0: संवाददाता से।
1: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुँचने की संभावना है।
2: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
3: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र

0: वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना
1: से तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
2: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं, लड़ना भी सिखाना है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नई सुबह का नया उजाला, दोस्ती ने जीवन संभाला, हर दिन हंसी के फूल खिले, सारे सपने सच में मिले। जी हाँ श्रोताओं, सुबह सवेरे उठकर हमारे मन में यही भावना आती है कि हमारे क्या कल देखे सपने पूरे हो जाएंगे, जो हमने रात को सोचा था वो जरूर पूरा होगा, ये हमें आशा जरूर करनी चाहिए सुबह सवेरे उठकर। और आज है संडे की मॉर्निंग, तो पूरा शेड्यूल आपका जो पूरे वीक का होता है वो बनाना होता है इस आज के दिन। तो आज है आपके साथ आपकी अपनी हस्ती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी। जी हाँ श्रोताओं, जानकारी और मनोरंजन के पिटारे को संभाले हम आ चुके हैं आपकी सेवा में। सिचुएशंस कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम अपने समय पर अपने श्रोताओं के लिए आ ही जाते हैं और आशा करते हैं कि आपको आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम पसंद भी आते होंगे। अगर आप फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही FM 101.4 MHz पर और ऐप के माध्यम से पूरे विश्व में आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद उठा पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से। तो इस गीत के बाद आपसे प्रश्न पूछेंगे, इंतजार करिए इस बात का। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। अरे पहले पासवर्ड तो डालिए। जी हाँ, गंदा सा मुंह बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो टेंशन है, जो तनाव है, जो व्यस्तता है, वो तो ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। तो क्यों ना हम जिंदगी में हंसे और मुस्कुराएं। अरे यही तो पासवर्ड है हमारे इस पिटारे का। तो चलिए, हम तो यही चाहते हैं कि ये पासवर्ड जो आपने लगा रखा है ना, वो हमेशा लगा रहे, जिससे आपके साथ कोई भी हंसे बोले तो ये पिटारा तुरंत खुल जाए। चलिए करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस प्यारे से गीत के साथ।

जी हाँ श्रोतों, हर तरफ उसी का नूर है, उसी परमात्मा की वजह से हम हर नई सांस को लेते हैं। कहते हैं, विज्ञान कहता है भाई पता नहीं कुछ है या नहीं है, पर हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो हमें चला रहा है ना। तो चलिए भाई हम भी चलाएंगे एक आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम सुबह सवेरे को। जब तक आप हमारी इस गाड़ी में सवार नहीं हो जाते, आप हमारे सफर में बराबर हिस्सेदार नहीं होते, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का कोई भी कार्यक्रम संपूर्ण माना ही नहीं जाता। तो आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है एक आसान से प्रश्न के माध्यम से। ये बात हम इसी

कर रहे हैं क्योंकि जो नए श्रोता हमारे परिवार में शामिल होते हैं उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे में क्या क्या होता है। बहुत सारे स्तंभ होते हैं, उसमें से एक मुख्य स्तंभ जिससे हमारा कार्यक्रम संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, जब आपकी भागीदारी बनती है। अरे आपको पता है, आप सोच रहे होंगे बोले जा रहे। तो चलिए आज आपसे जो नया सा अच्छा सा प्रश्न पूछ रहे हैं जो प्रसार भारती से है। आपको पता है आकाशवाणी, पूरा आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है, तो आपका और हमारा साथ 90 साल का हो चुका है। तो आज आपको बताना है कि प्रसार भारती यानी भारत का पब्लिक ब्रॉडकास्टर, इसके नए अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, आपको उनका नाम बताना है जो हमारे नए अध्यक्ष हैं प्रसार भारती के, किन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम बताइए और फटाफट से अपनी भागीदारी बनाइए अपने नाम के साथ, प्रश्न के सही उत्तर के साथ। इसी कार्यक्रम में 8:45 तक हम इंतजार कर रहे हैं आपके प्रश्न का उत्तर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। तो इंतजार किस बात का, बस विनम्र निवेदन यही है श्रोताओं, क्या कि आपको जब आप अपने नाम सही जवाब भेजेंगे ना, तो सही जवाब उसके बाद अपने नाम, क्षेत्र के नाम हिंदी में लिखिए। कोशिश कीजिए 2 या 3 ही हो तो बेहतर होगा, जिससे हम सभी श्रोताओं के नाम इस कार्यक्रम में शामिल कर पाए और सही प्रकार से उच्चारित कर पाए। तो सही सही लिखिए तो हम भी आपके नाम सही सही पढ़ पाएंगे, आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी, कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो चलिए, आज है मातृ दिवस, मदर्स डे, इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। आकाशवाणी के जो 90 वर्ष हो गए उसके बारे में भी बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे, विचार भी आपसे प्रेषित करेंगे। मनोरंजन तो है ही, तो पूरा इंटरटेनमेंट का खजाना पैकेज लेकर हम आ चुके हैं। तो कार्यक्रम का अगला गीत आपकी नजर।

0: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: हो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: दीदी नौकरी लग गई।
7: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
6: हाँ दी, नया मोबाइल।
7: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
6: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
7: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
6: पर दीप,
7: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
6: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
7: अच्छा।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: तीनों कॉलेज में

एक बार एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ आप मुझे इतना प्यार क्यों करती हो। माँ मुस्काई और बोली, जब तुम छोटे थे ना, रात रात भर रोते थे, मैं जागती थी, तुम्हें चोट लगती थी, दर्द मुझे होता था, तुम्हारी एक मुस्कान के लिए मैं अपनी सारी थकान भूल जाती थी। बच्चे ने फिर पूछा, लेकिन माँ आपको बदले में क्या मिलता है। माँ की आंखें नम हो गई, उन्होंने बच्चे का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस इतना कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊं तो तुम मुझे उसी प्यार से याद करना जिस प्यार से मैंने तुम्हें बचपन में संभाला था। यह सुनकर बच्चा माँ के गले लग गया। उस दिन से उसे समझ आया कि दुनिया में माँ का प्यार ही एक ऐसा धन है जो बिना किसी स्वार्थ के मिलता है। क्योंकि श्रोता, माँ केवल जन्म नहीं देती, वह अपने सपनों, नींद और खुशियों का त्याग करके अपने बच्चे का भविष्य बनाती है।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है? मिठाई।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
7: के लिए आई
8: एम हियर। तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
7: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
7: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ, नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
8: फ्री वाईफाई है ना?
7: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: तो हमारा आज का प्रश्न था कि प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया है, जिसका सही जवाब आप सबने दिया है। सही जवाब है प्रसून जोशी। जी हाँ, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह नियुक्ति की है। प्रसून जोशी एक प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। वे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वर्तमान में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं, जिन्हें हाल ही में इस पद के लिए चुना गया है। और आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और देखते हैं कि किन किन श्रोताओं ने प्रश्न का सही उत्तर देकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर दी है इस कार्यक्रम में। इसका सही जवाब तो हमने आपको बता दिया, और जिन श्रोताओं ने प्रश्न का उत्तर दिया उनमें सबसे पहले हमारे पास नाम आया गाँव धाणी कुतुबपुर जिला हांसी हिसार से रामधारी अवाना, अनाया अवाना और इसके साथ ही ओजस अवाना का। ललिता सिंह, भगवान सिंह सिलई हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए थे। तन्मय सिंह और सिद्धांत सिंह सिलई हिमाचल प्रदेश से। अगले श्रोता दतरंगी बाटा पारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसवणी वर्मा श्रोता हमारे साथ जुड़े। अश्वनी कराड़िया, कृतिका सुबेदार अमरनाथ, रविदास नगर थानेसर सिटी कुरुक्षेत्र से, ये है श्रोता। अरुणा और रोमा कुरुक्षेत्र से जुड़ गए थे ये भी। ये श्रोता है साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति खमरिया छत्तीसगढ़ से। सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह है पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से। श्रोता अगले कौन से हैं? भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा जी। अगले श्रोता है दरियापुर भामली से विश्वदीप येले। अगले श्रोता सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से वीना ढिंगा, कृतिका, विशु और विजय। ये है धानवा सहारनपुर से गुन्नू तन्नू चुन्नू मुन्नू और हार्दिक भारद्वाज। अगले श्रोता है हमारे साथ ही कौन से हैं? ये हैं इंद्रराज हैं नांगल से, और जगूड़ी से आप हैं रणधीर बांगर और युगम बांगर। अगले श्रोता अकली दीवान मध्य प्रदेश से, ये है रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी। धूलिया महाराष्ट्र से अशोक कवाड़े, आदित्य कवाड़े और एक दीप माला कवाड़े जी। ये श्रोता टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, ध्वनि छाबड़ा और छाबड़ा परिवार। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद है पाकुड़ झारखंड से। अगले श्रोता देखते हैं कौन से हमारे साथ जुड़ गए। कलाना से आप तहसील भादरा से हैं, हनुमानगढ़ से, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन योगेश और यूधव कड़वासरा जी। ये अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। छत्तीसगढ़ पथेरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, इनके साथ है वानिया सिंगरौल। गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा और इंदु पार्वती। बेंगलोर राजाजी नगर से आप है NR प्रसाद और इनके साथ है अखिला प्रसाद। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता, बंटी और शंटी, इनके साथ है लाडी जी। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले जी। छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी, मोहम्मद जोहान सैफी, उनके साथ है लीबा मलिक और आबाद खान। छत्तीसगढ़ बोरसरा से वैभवी साहू, उनके साथ है विभूति साहू जी। ये हैं श्रोता हमारे भाणा ब्राह्मणा वाला नरवाना से मेघरा शर्मा। डोंगर गांव से हैं राष्ट्रपाल गजबिये। ये हैं आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर जी। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। कोमल सेन, तोशन सेन, विनायक सेन सौंगा है जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से जुड़ गए थे। गंज डुंडवारा एटा रोड से आप हैं उत्तर प्रदेश से सरिता गौतम और इनके साथ है बीपी गौतम। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, यह संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव। कोरासी छत्तीसगढ़ से आप पवन क्रांति साहू, पंकज साहू, इनके साथ है सुष्मिता साहू। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, इनके साथ है चंद्रकला रेवाड़। यह गौतम कुरुक्षेत्र से। सूर्य नगरी सेक्टर 5 जोधपुर से राजस्थान से आप है रमेश कुमार चौहान, मोहिनी चौहान और इनके साथ है कल्पित चौहान। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और यह है सुभाष योगी जी। अगले श्रोता देखते हैं ग्राम पांजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी जुड़ गए। मांगीराम सैनी, रवि सैनी, पूनम सैनी, खुशी सैनी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र प्रतापगढ़ से जुड़े। रानीगंज बंगाल से आप हैं रवि और इंदर। मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी है ऊपरकोट बुलंदशहर से। संजीव कुमार, अमन कुमार है ये खुंखनी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से हमारे। अगले श्रोता जुड़ गए ग्राम नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू। बिहार से आप हैं डब्लू उल्लाह बेलदार, वली उल्लाह बेलदार और सोनम उल्लाह बेलदार। डीपी सैनी गौरव सैनी किशोर की नगरी खंडवा से। ये श्रोता है रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू जी। बेंगलोर से आप है सुधा नारायण के हाली। मदनपुर छत्तीसगढ़ से आप है श्रवण कुमार साहू, योगेश और इनके साथ है राहुल साहू। जठार पैठ अकोला महाराष्ट्र से पूनम गोरे, स्मित गोरे, श्रियांश गोरे जी। ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण भाई सोनी, जगदीश सोनी और अहमद भाई बागवान। बालौदा छत्तीसगढ़ से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम और इनके साथ है आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना मल्होत्रा, अनिल कटारिया खायल बाजार पानीपत से जुड़ गए थे। देवेंद्र शिपा, कपिल शिपा, पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से। डेर पाटन गुजरात से आप है धीरज भाई रबारी और इनके साथ है संजय और सचिन। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से आप है मास्टर विठल सरोशे, सुषमा सरोशे, मायरा सरोशे जी। श्रोता जुड़ गए हमारे साथ गांव उगाला जिला अंबाला से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और इनके साथ है राघव। शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से आप है राहुल मनवर, सरला और इनके साथ है प्रियांशी। अगले श्रोता देखते हैं कौन है, ये है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा राम टेके और इनके साथ है श्राव्या राम टेके। ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन जी। नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। गुमथला यमुनानगर से डॉक्टर दीपांशु, डॉक्टर आरुषि और बेबी राधिका। अगले श्रोता आरसी कामड़े, करुणा कामड़े जी जुड़ गए जवाहरनगर दुर्ग से। अगले श्रोता देखते हैं कौन है, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और इनके साथ है हिना। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा। जेवरा हिसार से आप हैं वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र और शमशेर भ्याण। योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल। ताज मंजी लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पनवार, बेंजीर कौसर और इनके साथ है मोहम्मद हसनैन पवार। कुरुक्षेत्र से आप है माफ कीजिए जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर से आप है मोहम्मद फरमान। ग्राम पिपरलोड गसरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, इनके साथ है पूनम वर्मा। फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, हियान चंदन, सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से जुड़ गए थे। ये है हमारे श्रोता एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना और ये लव्या और इनके साथ है आरव खुराना और एसके पप्पी जी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावनकर, निर्मला और इनके साथ है विशाल नावनकर। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, मेघा राशि जी। श्रोता जुड़ गए हमारे साथ अकरम हुसैन, हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना, आरिज वसीम। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से जुड़ गए थे ये श्रोता हमारे। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी। पुराना तालाब डुमराव से आप हैं वलीउल अंसारी जी और अस्मा नाज अंसारी जी। जयशी और सुनील बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ गए थे। ये श्रोता है हमारे कबीर रेडियो श्रोता संघ डांडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और इनके साथ है अल कबीर जी। शंभू दयाल खट्टक और पूजा खट्टक हमारे साथ जाखोद से जुड़ गए थे। और ये हमारे श्रोता जुड़ गए हैं मंगोली जट्टान से सीमा कौशिक, रुद्र कौशिक और इनके साथ है तरसेम कौशिक और वसंत कौशिक जी। अगले श्रोता हमारे साथ देखते हैं कौन जुड़ गए हैं, ये हमारे अगले श्रोता हैं कहाँ से, अरे भाई क्लियर नहीं आ रहा है समझ में, ये हैं कहां से, गांव वडागर निमनाबाद जिला जींद से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, उनके साथ है लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। तो बहुत सारे श्रोताओं ने प्रश्न का सही जवाब दिया, इनका देते हैं तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आप प्रोग्राम को भी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया, आज है मातृ दिवस, और साथ ही प्रसार भारती के अध्यक्ष के बारे में भी हमने आपसे पूछा, और आकाशवाणी के 90 वर्ष हो रहे हैं तो इसके बारे में भी आपको जानकारी जरूर देंगे हम।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर

श्रोतों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आकाशवाणी को सुनते हुए सुनाते हुए 90 साल हो गए हैं, कितना लंबा समय हो गया, कितने उतार चढ़ाव देखे आकाशवाणी ने और श्रोताओं ने, पर सिर्फ और सिर्फ नहीं बदला आपका और हमारा स्नेह, आपका और हमारा प्यार, आपका और हमारा साथ, आपकी भागीदारी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र पर और साथ ही संपूर्ण आकाशवाणी पर। तो आशा करते हैं कि आपका और हमारा साथ ता उम्र हमेशा यूं ही बना रहेगा, यही आशा हम करते हैं। श्रोताओं, ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आकाशवाणी कहा जाता है, यह भारत की राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण सेवा है। आकाशवाणी भारत के सार्वजनिक प्रसारण संगठन प्रसार भारती के अंदर का काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य देशवासियों तक समाचार, शिक्षा, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन पहुंचाना है। अगर बात करें आकाशवाणी के इतिहास की, तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1923 में हुई थी। वर्ष 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। वर्ष 1956 में इसे आधिकारिक रूप से आकाशवाणी नाम दिया गया। आकाशवाणी शब्द महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर से जुड़ा माना जाता है। आकाशवाणी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आकाशवाणी के मुख्य कार्य क्या है? देश विदेश के समाचार प्रसारित करना, शैक्षिक कार्यक्रम चलाना, किसानों, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम देना, भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देना, आपदा और आपातकाल में महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना, इसके साथ ही समाचार बुलेटिन, विविध भारती, ये जो हमारी रेडियो सेवा है उनकी बात करें, विविध भारती, एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, युवाणी, खेल प्रसारण, भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषाएं। आकाशवाणी भारत की अनेक भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। श्रोताओं, ये 20 से भी अधिक भाषाओं और सैकड़ों बोलियों में प्रसारण करता है। आज आकाशवाणी के सैकड़ों प्रसारण केंद्र है। इसकी पहुंच भारत के लगभग हर क्षेत्र तक है। सरकार के अनुसार देश में 1991 प्रसारण केंद्र कार्यरत है। इसकी अगर मेन बात करें तो प्रसिद्ध कार्यक्रम है मन की बात, हवा महल, जय माला, समाचार प्रभात, किसान वाणी आकाशवाणी है। अगर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की बात करें तो इसका पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे, नमस्ते कुरुक्षेत्र कार्यक्रम वंदना, और बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा, युवाओं का कार्यक्रम युवाणी, फौजियों भाइयों का कार्यक्रम जय जवान, आपके हमसे सीधी बातचीत कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र और हेलो एफएम के माध्यम से। और अगर आप मन की बात यानी अपनी जो प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं अपने अमूल्य समय में से, तो कार्यक्रम आपकी बात जो आप हर मंगलवार शाम को 7:30 पर सुनते हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम यानी फुल्ली इंफोटेनमेंट का खजाना है। और हमें बेहद खुशी होती है जब श्रोता हमें ये लिख कर भेजते हैं, मेल प्रेषित करते हैं कि आपने आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रमों को सुना और आपकी नौकरी लग गई तो कितना अच्छा लगता है कि किसी का करियर बन गया, या आप दुखी हैं और आपकी भावनाओं के अनुरूप कोई गाने चल गए, आपको मोटिवेशन मिल गया, फौजी भाइयों को झूमने का मौका मिल गया, बच्चों को जानकारी मिल गई, युवाओं को करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के माध्यम से। कितनी अच्छी बात है ना, एक माध्यम जो बिल्कुल भी समय नहीं लेता आपका, सिर्फ और सिर्फ सुनिए और उस एंटरटेनमेंट कीजिए, अपने जहन में उतार लीजिए। श्रोताओं, भारत की संस्कृति और संगीत को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सूचना पहुंचाने का सशक्त माध्यम है आकाशवाणी। स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र एकता में महत्वपूर्ण योगदान देता है आकाशवाणी। शिक्षा और जन जागरूकता का प्रभावी साधन है आकाशवाणी। जी हां श्रोताओं, आकाशवाणी की पहचान उसकी प्रसिद्ध सिग्नेचर ट्यून से होती है। इसकी धुन 1936 में बनाई गई थी। तो श्रोताओं, हमने बहुत सारी आपको जानकारी दी आकाशवाणी के बारे में, और अब आपको जल्दी से जानकारी दे दे मदर्स डे क्या है। मदर्स डे यानी माँ के सम्मान और प्रेम को समर्पित करने का एक विशेष दिन। इस दिन बच्चे अपनी माँ के प्रति प्यार, धन्यवाद और सम्मान व्यक्त करते हैं। माँ हमारी जीवन की पहली गुरु, सबसे बड़ी दोस्त और सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। श्रोताओं, भारत सहित कई देशों में मदर्स डे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, जो आज ही के दिन मनाया जा रहा है। हालांकि मदर का यानी मम्मी का, माँ का, आई का, मासा का कोई भी दिन नहीं होता, हर पल हर क्षण उसके साथ ही होता है, क्योंकि जन्म देने वाली तो वही होती है। अगर हम जन्म ही नहीं लेते, हमें कोई कैसे पूछता हमारी क्या पहचान होती। श्रोताओं, तो माँ के लिए तो कोई भी शब्द कहना बहुत ही छोटा है ना। तो मदर्स डे की शुरुआत अन्ना जर्विस नाम की महिला ने की थी। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। माँ के सम्मान में

विशेष दिन मनाना चाहती थी। पहली बार आधिकारिक रूप से मदर्स डे 1908 में मनाया गया। श्रोताओं, बाद में वुड्रॉन विल्सन ने 1914 में से अमेरिका में राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। इसके बाद धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। भारत में ये दिन माँ के त्याग, ममता, मेहनत और प्यार को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। और हम बहुत कुछ करते हैं क्योंकि माँ पहली शिक्षक होती है, सही गलत की पहचान सिखाती है, बिना स्वार्थ के प्यार करती है, हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है। तो आपको कहीं भी किसी भी तीर्थ और द्वार में माथा टेकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, चाहता हूं, अपने घर में जो माँ है ना, उनको थोड़ा सा समय दीजिए। उन्हें खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर आप इज्जत के साथ सूखी रोटी भी देंगे ना, वो उन्हें हजम हो जाएगी। तो आज अभी इसी वक्त जाइए और अपने माँ को गले लगाइए और उन्हें बताइए कि उनको नहीं, आपको भी उनकी जरूरत है।

श्रोताओं, चलिए बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जी हाँ, भारत निर्वाचन आयोग की। भारत का एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है श्रोताओं, जो देश में चुनाव कराने का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों की विधानसभा के चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाना होता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी श्रोताओं। इसी कारण हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। यह आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है ताकि चुनाव निष्पक्ष रहे। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें आयोग की संरचना की, तो निर्वाचन आयोग में होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके साथ ही अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका प्रमुख कार्य होता है चुनाव करवाना, लोकसभा चुनाव करवाना या विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे चुनाव करवाना। इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट बनाना और अपडेट करना। इसके साथ ही चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है और आचार संहिता लागू करता है। चुनाव के दौरान नियमों का पालन भी करवाता है। मतदाता केंद्र तय करना यानी पोलिंग बूथ और मतदान व्यवस्था करता है। इसके साथ ही वोटों की गिनती और परिणाम घोषित करता है। निष्पक्ष तरीके से मतगणना करवाना, मतदान की आयु, भारत में मतदान की आयु की अगर बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसके साथ ही चुनाव की घोषणा, नामांकन पत्र भरना, प्रचार अभियान करना, मतदान, मतगणना, परिणाम घोषणा, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें अगर तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जैसा कि आप जानते ही हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का उपयोग किया जाता है। चुनाव में पारदर्शिता के लिए वीवीपीएटी मशीन भी का भी प्रयोग किया जाता है। निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है श्रोताओं, क्योंकि ये जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से दिलाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग वह संस्था है जो भारत में सभी बड़े चुनाव निष्पक्ष रूप से करवाती है। तो आज श्रोताओं, हमने बात की आपसे इलेक्शन कमीशन के बारे में, जी हाँ, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको जानकारी दी। आशा करते हैं जो जानकारी हम आपको देने की कोशिश करते हैं, आपसे साझा करते हैं, वो आपको बेहद पसंद आती होगी। और श्रोताओं, जैसे कि हम बार बार आज बात करें मातृ दिवस की, तो कहते हैं कि माँ के घर की सौंधी सौंधी खुशबू यहाँ तक आती है। जब एक लड़की या कोई भी अपना मायका छोड़ के ससुराल में आती है तो माँ की याद उसे जरूर आती है। तो कहते हैं माँ के घर की सौंधी सौंधी खुशबू यहाँ तक आती है। माँ तुम याद बहुत आती हो, तुम कहाँ चली गई? गुड़िया वो घर, घर घर वो बचपन का खेल, तुम मेरे लिए बन जाती थी रेल, तुम्हारी गोदी में हर दुख भूल जाती थी, मेरे यादों में अब तुम अब भी मुस्कुराती हो। घर के आंगन मुझे अब भी पुकारता है, बाहें फैलाए मुझे उठाता है। माँ के घर में चूड़ी खनकती या पायल की रुंझन मुझे आवाज देती है। माँ के घर के पराठों का स्वाद अब तक ललचाता है, उनके हाथों से खिलाए एक टुकड़े से तो पेट भर जाता था। माँ का घर अभी तक है पर तुम नजर नहीं आती हो, फिर खुद से जब झांका आशीर्वाद लिए खड़ी दिख जाती हो। आंखों में आंसू भर जाते हैं जब अकेली होती हूँ, माँ के घर की तरफ जज्बातों को मोड़ देती हूँ। जी हाँ श्रोताओं, हर इंसान के अंदर माँ के लिए भावनाएं जरूर विद्यमान होती है, ऐसी हम आशा करते हैं। तो इसीलिए ज्यादा नहीं तो इतनी कोशिश कीजिए, जब भी आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें अपनी माँ का प्रयोग ना करें।

श्रोताओं, जहाँ गुरुओं ने अगर ज्ञान को बढ़ाया है और उसे बचाया है, वहीं महिलाओं ने यानी माँ ने रसोई की परंपरा को आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा कोई भी बहुत ही प्रसिद्ध शेफ होगा ना, वो हर चीज को अनुपात में डालेगा, परंतु माँ एक ऐसी होती है इंसान जो अपने बच्चे के स्वाद के अनुसार किस तरह से अनुपात ऊपर नीचे कर देती है पता ही नहीं चलता, बस उसमें होता है एक स्वाद। आप कहीं भी चले जाएं और किसी बच्चे से पूछेंगे ना, आपको खाना कहाँ का अच्छा लगता है, तो कहेगा माँ के हाथ का। तो माँ तो एक ऐसी ही इंसान होती है। और श्रोताओं, कहते हैं ना कि एक फूंक से जो हर दर्द का इलाज कर देती है, एक मर्ज का इलाज कर देती है, ऐसी होती है माँ की फूंक। और जब माँ कोई भी बात कहती है तो उसे लगता है कि मेरे बच्चे के लिए है, ख्वाबों को सजाती है, सपनों को पालती है और अपने बच्चे को जरूर बड़ा कर देती है। तो अपनी उस माँ को हमेशा याद रखें। और विनम्र निवेदन यही है कि जब भी आप कभी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो कृपया करके माँ का प्रयोग ना करें। माँ को सिर्फ और सिर्फ पूजनीय, आदरणीय, अपनी दोस्त, अपनी गुरु

संस्कार के लिए, अपने मार्गदर्शक के लिए ही प्रयोग करें। तो इसी आशा के साथ कि आप इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे और एक बात हमेशा से, तू तू मैं की ईंटें अपने घरों में ना लगाएं, हम की नींव जरूर रखें। अपनी हस्ती मुस्कुराती से की प्रमिला सैनी को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए, इसी आशा के साथ कि अपने अमूल्य समय में से अपनी अमूल्य प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराएंगे। मेल्स के माध्यम से कार्यक्रम आपकी बात में हर मंगलवार शाम 7:30 पर। अब अनुमति दीजिए, सुप्रभात।

श्रोताओं, भी आप आनंद उठा रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे का एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वरांजलि। कार्यक्रम का आगाज इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया बलबीर ने।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: ये आकाशवाणी है,
3: हर पल आपके साथ।
2: समाचार हो या सदाबहार गीत,
3: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
2: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
3: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
2: आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

श्रोताओं, सरबजीत चीमा के गायक गीत के साथ ही कार्यक्रम स्वरांजलि यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। प्रातः 10 बजे जुड़िएगा कार्यक्रम शक्ति मंच के लिए हेमलता के साथ। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: जादू है।
1: इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत सुनिए।

पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया। हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।

0: है।
1: सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जानी मानी गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।

0: घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनिए महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम शक्ति मंच।

शक्तिमान सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी हेमलता का नमस्कार। सखियों, आज की हमारी चर्चा है मासिक धर्म के दौरान रखें स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की देखभाल। सखियों, मासिक धर्म क्या है, मासिक धर्म में स्वच्छता क्यों जरूरी है और स्वच्छता से जुड़े जो मिथक हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं यहाँ एक गीत।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सखियो, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना संक्रमण, बदबू और गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी है। सही सैनिटरी उत्पादों का उपयोग, उन्हें समय पर बदलना, शरीर की सफाई और संतुलित आहार अपनाना महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मासिक धर्म से जुड़े मिथकों को दूर कर जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है। हर महिला इस प्राकृतिक प्रक्रिया को सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ जी सकती है। मासिक धर्म महिलाओं के जीवन का एक सामान्य और स्वाभाविक हिस्सा है। हर महीने महिला शरीर में होने वाली इस प्रक्रिया के दौरान स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को नज़रअंदाज करने से न केवल शारीरिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, बल्कि कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार खराब मासिक धर्म स्वच्छता के कारण पेरिनियल क्षेत्र में खुजली या चकते भी हो सकते हैं, बदबू आ सकती है और कभी कभी बड़ी जटिलताएं जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि महिलाएं और किशोरियां इस विषय पर जागरूक हों और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के उपायों को सही तरीके से अपनाएं। आज हम शक्ति मंच में मासिक धर्म स्वच्छता को बनाए रखने के महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जो हर लड़की के जीवन में हार्मोनल बदलावों का परिणाम होता है। यह प्रक्रिया

है। नियमित रूप से साफ सफाई और अन्य हाइजीन उपायों का पालन करना शामिल होता है। मासिक धर्म के दौरान उचित स्वच्छता का पालन करने से महिलाओं को संक्रमण और बीमारियों से बचाया जा सकता है। मासिक धर्म के दौरान उचित स्वच्छता बनाए रखना महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके मुख्य कारण हैं, मासिक धर्म के दौरान खून के प्रवाह के कारण बैक्टीरिया और वायरस का संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है। अगर उचित स्वच्छता का पालन न किया जाए तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान शरीर से खून और बैक्टीरिया के कारण बदबू आ सकती है। स्वच्छता बनाए रखने से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनने से मासिक धर्म के दौरान असहजता कम होती है और आप पूरे दिन आरामदायक महसूस कर सकती हैं। यदि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का ध्यान न रखा जाए तो शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है, जो कि भविष्य में बांझपन जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर सकता है। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, यहाँ सुनते हैं एक गीत।

0: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: सखियों, मासिक धर्म के दौरान केवल शारीरिक स्वच्छता ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। मासिक धर्म के समय कई महिलाएं चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स और थकान महसूस करती हैं। ऐसे में स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अलावा सही खानपान, पर्याप्त नींद और हल्के व्यायाम से मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखा जा सकता है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के कई तरीके हैं। सैनिटरी पैड का चयन करते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें। इसे हर 4 से 6 घंटे में बदल लेना चाहिए। गंदे पैड का लंबे समय तक उपयोग करने से बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। टैम्पॉन का उपयोग करने वाली महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि इसे भी हर 4 से 6 घंटे में बदलें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। जो महिलाएं मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती हैं, यह उपयोग करने में सुरक्षित होता है और पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। इसे नियमित रूप से साफ करना और समय समय पर बदलना जरूरी है। अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए हल्के साबुन और पानी का उपयोग करें। कभी भी सुगंधित या केमिकल युक्त साबुन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि यह त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां लेंगे एक ब्रेक और सुनेंगे एक और गीत।
3: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: सखियों, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। हमेशा साफ और सूखे अंडरगारमेंट्स पहने, गंदे या गीले कपड़े संक्रमण का कारण बन सकते हैं। अपने कपड़ों को हमेशा धूप में सुखाएं, ढीले ढाले वस्त्र पहने, सूती वस्त्रों का ही उपयोग करें और नियमित रूप से अपने कपड़ों को धोएं और नहाएं। इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड, टैम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप को सही तरीके से डिस्पोज भी करें। इन्हें खुले में फेंकना न केवल गंदगी फैलाता है बल्कि संक्रमण का भी खतरा बढ़ाता है। इन्हें कागज़ में लपेटकर सही तरीके से कूड़ेदान में डालें। कभी भी सैनिटरी उत्पादों को शौचालय में फ्लश ना करें क्योंकि इससे प्लंबिंग ब्लॉकेज हो सकता है। इस दौरान अपनी डाइट पर भी ध्यान दें, अधिक से अधिक पानी पिएं, हरी सब्जियां, फल और आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इससे न केवल आपको ऊर्जा मिलेगी बल्कि आप मासिक धर्म के दौरान स्वस्थ भी महसूस करेंगी। हल्का व्यायाम करें जो कि रक्त संचार के लिए बेहतर होता है। मासिक धर्म के दर्द से भी इसे राहत मिलती है। आराम करें, पूरी नींद लें। पर्याप्त नींद लेने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करेंगी। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के महत्व को लेकर कई मिथक प्रचलित हैं। ऐसी बातों पर कोई ध्यान न दें और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने स्वच्छता बनाए रखें, साफ सफाई रखें, यही सबसे ज़रूरी है। और अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखें क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपके स्वास्थ्य पर पूरे घर का स्वास्थ्य टिका होता है। अब सुनते हैं एक और गीत।

सखियो, आज मातृ दिवस है। आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ है तो हम हैं, खुद रह जाती हैं भूखे पर पेट भर हमें खिलाती है, जीवन भर साथ हमारा निभाती है। हैप्पी मदर्स डे।

इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी हेमलता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम शक्ति मंच हेमलता के साथ FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा।

0: बाल सफर सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, स्टूडियो में आए प्यारे प्यारे बच्चों को और सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। भाई स्टूडियो में बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, उन सब से हम बातें करेंगे, वो अपनी अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपकी रचनाएं जरूर सुनेंगे क्योंकि आप ही के लिए तो ये कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले जो इस हफ्ते, इस सप्ताह महत्वपूर्ण दिवस आ रहे हैं, उनकी बात हम आपसे जरूर करेंगे। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को हर साल मनाया जाता है। अब आप भी परिवार में रहते हैं ना, आपका घर है, परिवार है, तो इस परिवार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। परिवार के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखिए ना, अब आप रहते हैं अपने परिवार में मम्मी के साथ, पापा के साथ, किसी किसी के घर में दादा दादी भी साथ रहते हैं, तो खूब मजा आता है परिवार में इकट्ठे जब हम मिलकर रहते हैं, मिलकर खाते हैं, पीते हैं और फिर एक दूसरे के सुख में दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, बहुत मजा आता है। तो हमें परिवार के महत्व को समझना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष भी घोषित किया था और 1995 से ये सिलसिला चलता ही आ रहा है लगातार। और ये दिन हम मनाते क्यों हैं? क्योंकि इस दिन का जो उद्देश्य है वो ये है कि सारे संसार के लोगों को परिवार की अहमियत का पता चले, ये बताने के लिए ये वर्ष मनाया जाता है। यूं तो हम सबको पता ही है परिवार में हम रहते, लेकिन फिर भी हम कभी कभी जिक्र करते हैं या कुछ खास दिन खास मौकों के लिए बना लेते हैं, मना लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का मतलब ये है कि हम परिवार में रहते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते हैं। हमें बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, छोटों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। कभी कभी छोटों के साथ झगड़ा हो जाता है, लेकिन जल्दी से उस झगड़े का निपटारा करके, उसे खत्म करके फिर आपस में अपने परिवार में प्यार को बहाल कर देना चाहिए। खुशियां तभी रहती हैं जब हमारे परिवार में प्यार बना रहता है। तो एक और दिन भी है जो कि आज ही है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आज मदर्स डे भी है। तो मदर्स डे यानी कि माँ की महत्ता को बताने का दिन। जो माँ है ना, कहते हैं धरती पर भगवान का दूसरा रूप है, क्योंकि भगवान स्वयं तो आ नहीं पाए धरती पर, तो इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। और सभी बच्चों की माएँ जो हैं वो सभी बच्चों से खूब प्यार करती हैं, बहुत सारा प्यार आप भी बटोरते हैं अपनी माँओं से, हमें पता है। और इसी तरह से आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप अपनी माँ की इज्जत करें, अपनी माँ को उतना प्यार दें जिसकी वो हकदार है, और माँ का कहना माने। क्योंकि आप छोटे हैं, आप अपना भला बुरा उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे जितना कि आपकी माँ समझती है। तो हमेशा हमेशा अपनी माँ का मान सम्मान कीजिए। यूं तो हम आपको हर पर बताते हैं बड़ों का मान सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी मदर का, अपनी माँ का जरूर सम्मान कीजिए, उनका कहना भी मानिए। तो अब चलते हैं जल्दी से पहले प्यारे बच्चे की तरफ।
1: मैं आज आपको श्री कृष्ण जी का एक भजन सुनाने वाली हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, श्री कृष्ण जी का भजन सुनाएंगी, तो सुनाइए, स्वागत है आपका।

0: भाई बहुत ही प्यारा भजन रिया आपने सुनाया और पूरा वातावरण ऐसे भक्तिमय और संगीतमय कर दिया आपने, हमें बहुत अच्छा लगा आपका भजन और उम्मीद करते हैं कि सुनने वाले श्रोताओं को भी उतना ही पसंद आया होगा। चलते हैं इस प्यारी सी बच्ची की तरफ, क्या नाम है इसका?
1: छाया।
0: छाया भाई बड़ा ही प्यारा नाम। चलिए आप बताइए हमें क्या सुनाएंगी आज? कविता सुनाएंगी, तो स्वागत है आपकी कविता का, सुनाइए।
1: मैं नहीं तू, तू नहीं मैं, सदा ही करते तू तू मैं, करो कभी कोई अच्छा काम, बढ़ाए जो भारत देश का नाम, देश के द्रोहर पर है सबका अधिकार, फिर क्यों है इसकी सफाई से इनकार, नहीं है कोई बहुत बड़ा उपकार, बस करना है जीवन में बदलाव, शहर को मानकर घर अपना, निर्मल स्वच्छ है उसे भी रखना, कूड़ेदान में फेंको पूरा, हर जगह ना फेंको पूरा, थूकने को नहीं है धरती मैया, बदलो अपनी आदत भैया, ना करो किसी पड़ोसी का इंतजार, देश है सबका।
0: बहुत ही प्यारी कविता आपने हमें छाया सुनाई और बहुत ही मजा आया हमें सुनकर। हम अपने हर कार्यक्रम में बच्चों को, सुनने वाले श्रोताओं को, सबको ये संदेश देते हैं कि भारतवर्ष को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता भगवान का दूसरा रूप है। तो आप सब इस बात से सहमत हैं?
2: जी।
0: बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, सहमत हैं और इस चीज को आप पालन भी इस चीज का करते हैं?
2: जी।
0: आप अपना घर साफ रखते हैं?
2: जी दीदी।
0: पर आप कैसे साफ रखते घर, तो आपकी मम्मी साफ रखती होंगी, क्यों, ठीक बात है ना?
2: जी दीदी।
0: तो आप भी अपना स्वच्छता में सहयोग दीजिए, मम्मी पापा को मदद कीजिए घर साफ रखने में। इसी तरह से जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल को साफ रखने में आप मदद कर सकते हैं। तो आज से आप अपने आप से वादा कीजिए, आपको मुझसे वादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप से वादा कीजिए कि हम अपने देश को, अपने आसपास को, सबको स्वच्छ रखने में अपना थोड़ा सा सहयोग जरूर देंगे, स्वयं साफ रहकर और चारों तरफ सफाई रखकर, करेंगे ऐसा?
2: जी दीदी।
0: चलते हैं अगली बच्ची की तरफ, क्या नाम है इसका?
3: भव्या।
0: क्या सुनाएंगी?
3: आजादी के बेटों के बारे में कविता।
0: कविता सुनाएंगी, स्वागत है, सुनाइए।
3: जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहके फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंग इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक भोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा के खातिर जीवन भर गा सकती हूँ, मैं सूरज की बेटी तब के गीत नहीं गा सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ।
0: बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता आपने हमें सुनाई और कितनी सही बात की कि जिन लोगों की वजह से आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं उन्हें भूलने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमारी बहुत बड़ी भूल होगी कि हम ऐसे आज़ादी के मतवालों को भूल जाएं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी और आज भी देश की रक्षा हेतु वो हमेशा तत्पर रहते हैं, हिमालय के पास खड़े होकर जहाँ इतनी सर्दी है। आप सबको ठंड लगती है?
2: जी दीदी।
0: तो आप रजाई में दुबक कर बैठ जाते हैं?
2: जी दीदी।
0: लेकिन भारत माँ के वो लाल हमेशा इतनी सर्दी में हिमालय के पास खड़े होकर, इतनी ठंड में बर्फीली जगहों पर खड़े होकर हमेशा पहरेदारी करते हैं हमारे भारतवर्ष की, ताकि कोई भी दुश्मन हमारे भारतवर्ष पर आक्रमण ना कर सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को लिए चलते हैं एक पायदान और ऊपर। क्या नाम है इस बच्ची का?
1: दृष्टि।
0: दृष्टि क्या सुनाएंगी आज हमें?
1: पेड़ लग

0: लगाने के बारे में।
1: पेड़ लगाने पर एक कविता सुनाएंगी, सुनाइए, स्वागत है।
0: धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम ये खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं, धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है, पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशानी दे, आओ पेड़ लगाए हम, पेड़ लगाकर जग महकाकर जीवन सुखी बनाए हम, आओ पेड़ लगाए हम।
1: बहुत ही प्यारी कविता हमें दृष्टि ने सुनाई कि पेड़ हमें लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जब तक नहीं लगाएंगे तब तक धरती स्वच्छ नहीं हो पाएगी, स्वच्छ नहीं हो पाएगी तो वातावरण भी स्वच्छ नहीं रहेगा। तो वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। सब बच्चे लगाने में अपना सहयोग देंगे?
2: जी दीदी।
1: बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, हर काम के लिए जी दीदी झट से कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
3: मानसी।
1: मानसी क्या सुनाएंगी हमें?
3: लेटस बी द गोल्डन बर्ड।
1: लेटस बी द गोल्डन बर्ड, इंग्लिश कविता। हाँ, स्वागत है।
3: लेटस रिप द डार्कनेस, लेटस स्टेप इन शाइन, लेटस डिपार्ट द नाइट एंड लेटस ब्रिंग न्यू डाउन, लेटस इलेमिनेट एवरी हाउस, लेटस रिमूव डिस्पेयर, लेटस कम्युनिकेट होप्स एंड वाइप आउट एवरीवन्स स्टेयर, लेटस रिमूव discriminations, let us shoot the situations, let us cut the trap of corruption, let us kill the suppression, let us rise above the races, let us love all the human faces, let us defeat the terrorism, let us eliminate the humanism।
1: बहुत ही अच्छी आपकी कविता थी, जिसका मर्म सिर्फ इतना है कि तमसो मा ज्योतिर्गमे, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। तो बहुत ही अच्छी आपकी कविता। चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इस बच्ची का?
4: वेदिका।
1: वेदिका क्या सुनाएंगी हमें?
4: पेड़ लगाने और प्रदूषण मिटाने के बारे में।
1: चलिए बताइए जल्दी से।
4: एक दिन मैं हो रहा था बोर, तभी सुनाई दिया एक शोर, मैंने देखा खिड़की की ओर, दिखाई दी किसी की छाया, मुझे लगा कोई चोर आया, मैं गया उसकी ओर, उसे हाथों से पकड़ा, रस्सी से जकड़ा, मैंने पूछा कौन हो तुम, उसने कहा मृत्यु हूँ मैं, मृत्यु हूँ मैं, लेने तुमको आया हूँ, पेड़ काटकर प्रदूषण फैलाकर तुमने मुझे जगाया है, तुमने किया जंगलों को साफ, मैं नहीं करूँगा तुमको माफ, उसने तलवार मारी एक ओर से, आँखें खुल गई चारों ओर से, लेकिन मैं उठा देखा ये सब सपना था, लेकिन इसमें कुछ अपना था, इसमें कुछ सच्चाई थी, पेड़ लगाने और प्रदूषण मिटाने की अब मेरी बारी आई थी।
1: बहुत ही अच्छी कविता, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बच्ची ने हमें सुनाई। कविता भी थी और इसमें कहानी भी सिमटी हुई थी। बहुत ही अच्छी इन्होंने बात बताई कि वातावरण प्रदूषित हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। और अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
5: आदित्य।
1: क्या सुनाएंगे आदित्य?
5: चुटकुले।
1: चुटकुले सुनाएंगे, भाई इसकी जरूरत भी थी। हम सोच रहे थे कि कविताएं ही सुनाते जा रहे हैं, ये बच्चे कोई चुटकुले नहीं लेकर आया क्या आज? तो गुदगुदाइए, हंसाइए सबको अपने चुटकुले सुनाकर, सुनाइए जल्दी से।
5: अध्यापक ने चार पृष्ठों का निबंध लिखने को दिया, विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने तीन पृष्ठ छोड़कर चौथे पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है।
1: क्या बात है भाई, एक बार तालियां बजाइए। बहुत ही अच्छा चुटकुला, यही आलस्य है, क्या बात है। अगला चुटकुला।
5: अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर मैं कल सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है पिंटू तुम क्यों नहीं आए? चिंटू, पिंटू मैं कल पिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सपनों में ही बच्चे यही हरकतें करते हैं, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई उसको एयरपोर्ट छोड़ने चला जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे सुनाइए।
5: टीचर, न्यूटन के नियम बताओ। स्टूडेंट, सर पूरी लाइन तो याद नहीं है, लास्ट लाइन याद है। टीचर, चलो लास्ट का ही सुनाओ। स्टूडेंट, और इसे न्यूटन का नियम कहते हैं।
1: भाई तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे चुटकुले आप लेकर आए आदित्य, और हंस के हम भी थोड़ा सा तरोताजा सा महसूस कर रहे हैं। क्यों, सभी बच्चे कर रहे हैं ना?
2: जी।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य कि इतने अच्छे अच्छे चुटकुले आपने हमें सुनाए। और अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
6: पार्थ।
1: पार्थ क्या सुनाएंगे?
6: एक कविता।
1: कविता सुनाएंगे, सुनाइए, स्वागत है।
6: दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर उंगली न उठाएंगे, दुर्योधन में भी न कर सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक ही मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अभसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल नहीं पहचाना, तो लो अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संदेश सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का बलदाई होगा, थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर न अगाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे, कर जोर करे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।
1: भाई बहुत ही अच्छी कविता आपने हमें सुनाई, आपने तो छोटी सी कविता में पूरा संदेश समेट दिया। भगवान कृष्ण, जैसा कि अभी हमें पार्थ ने इतनी सुंदर कविता सुनाई, उसमें भी श्री कृष्ण के संदेश के कुछ अंश छिपे थे, और इसी तरह से श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया अर्जुन को, उसे हमने कितने अध्याय हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के कितने अध्याय हैं? 18 अध्यायों में इसका समावेश किया है जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को। अब तो पश्चिम में भी श्रीमद् भगवद गीता को बहुत मान्यता दी जा रही है। श्रीमद् भगवद गीता में सार्थक जीवन जीने की कला छिपी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया उसमें सारे जीवन का सार छिपा है। चलते हैं जल्दी से अगली बच्ची की तरफ। क्या नाम है इसका?
4: चित्राक्षा।
1: चित्राक्षा क्या सुनाएंगी हमें?
4: कोशिश करने पर एक कविता।
1: सुनाइए सुनाइए।
4: कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सासद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फलाद का भी बल निकलेगा, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, कोशिश कर कुछ कर गुजरने की, कोशिश कर कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमासा कल चल निकलेगा।
1: बहुत ही प्यारी कविता कि कोशिश कर हल निकलेगा, हर काम जो हमें आरंभ में मुश्किल लगता है उसका हल कहीं ना कहीं छिपा होता है, बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश करने की, और कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए, हर हालत में करनी चाहिए, कभी भी हमें अपनी कोशिश को रोकना नहीं चाहिए। तो अगली रचना सुनने से पहले क्यों ना एक देशगान सुन लिया जाए। बच्चों सभी सुनेंगे देशगान?
2: जी दीदी।
1: तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा देशगान।

0: कैसा लगा ये देशगान आपको? अच्छा लगा ये देशगान?
1: जी दीदी।
0: पसंद आया सबको?
1: जी दीदी।
0: तो अब चलते हैं अगले कलाकार की तरफ। क्या नाम है आपका?
2: आयान।
0: आयान, अरे बहुत ही प्यारा नाम है आयान। आप क्या सुनाएंगे?
2: एक कविता।
0: कविता सुनाएंगे, सुनाइए। आपकी कविता का स्वागत है।
2: शब्द है थोड़े उनके आगे, कैसे उन्हें पिरों मैं, माँ की ममता सोचकर देखूं तो बिन आंसू के रोऊं मैं। जिसने ये संसार बनाया उसके स्नेह से मन हर्षाया, उनकी गोद में सर रखकर बिन नींद के सोऊं मैं। माँ की भक्ति में है चारों धाम, तन मन में बसा हो जब उनका नाम। ऐसी माँ का लाल बनकर बिन हीरे के दमकू मैं। शब्द थोड़े उनके आगे, कैसे उन्हें पिरोऊं मैं। धन्यवाद।
0: क्या बात है भाई, आज तो ये बहुत ही सुंदर कविता। मैं चाह भी रही थी कि कोई बच्चा हमें माँ पर कविता सुनाए, क्योंकि आज ही मदर्स डे है, तो इसलिए मदर्स के ऊपर कविता आपने बहुत अच्छी, ये हमें माँ के ऊपर कविता सुनाई। आयान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कविता सुनाने के लिए, बहुत ही सुंदर कविता थी आपकी। तो आप भी अपनी माँ की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपनी मम्मी की?
2: जी दीदी।
0: अच्छा, तो यहाँ पर बैठे जितने भी बच्चे हैं, मुझे लगता है सभी अपनी अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं।
1: जी दीदी।
0: आज सुबह उठकर आपने मम्मी को मदर्स डे पर विश किया था?
1: जी दीदी।
0: अरे वाह, क्या बात है, सभी ने विश किया था। तो माँ की ममता का वाकई कोई मोल नहीं होता, ये अनमोल है। बिना ही किसी तनख्वाह के माँ सारे आपके काम करती है, आपको प्रेम से रखती है, जीना सिखाती है, इस दुनिया में आगे बढ़ना सिखाती है। तो हम तो भाई आपसे भी और सुनने वाले श्रोताओं से भी, सभी बच्चों से यही कहेंगे कि अपनी माँ की इज्जत ज़रूर करें और अपनी माँ को हमेशा सम्मान दें। तो अब चलते हैं अगले कलाकार की तरफ। क्या नाम है आपका?
3: खुशी।
0: खुशी, खुशी क्या लाई है आज हमारे लिए?
3: पहेलियाँ।
0: चलिए खुशी।
3: काले वन की रानी है, लाल पानी पीती है।
0: लाल पानी पीती है, लाल पानी कौन पीता होगा? लाल पानी पीती है, करमन्ने को शायद इसका जवाब आता है। करमन्ने आप बताइए क्या है इसका सही जवाब, बताओ जो मन में है, बोलो बोलो। अच्छा भूल गए आप, जवाब ही भूल गए। चलिए इधर देखते हैं हम इस तरफ से। जी हाँ, अभय भी जानते हैं इसका जवाब, तो अभय आप बताइए इसका क्या सही जवाब है?
4: खटमल।
0: खटमल, क्या ये सही जवाब है?
4: जी दीदी।
0: क्या बात है, जोरदार तालियां अभय के लिए एक बार फिर से। और अब चलते हैं, नहीं शायद खुशी के पास बहुत सारी पहेलियां हैं। चलिए खुशी पूछिए अपनी अगली पहेली।
3: ऊंट की बैठक हिरण की चाल, बोलो वे कौन है पहलवान।
0: कौन है पहलवान? ऊंट की बैठक हिरण की चाल, कौन है ये पहलवान? तो अनुष्का को शायद इसका सही जवाब आता है। अनुष्का बताइए।
5: मेंढक।
0: मेंढक सही जवाब है खुशी?
3: जी दीदी।
0: जोरदार तालियां अनुष्का के लिए। और एक और पहेली भी है शायद आपके पास। जी हाँ।
3: हरी डंडी लाल कमान, धोबी धोबी करे इंसान।
0: धोबी धोबी करे इंसान, जी हाँ। इसका सही जवाब लावण्या आपको आता है?
6: जी दीदी।
0: हाँ बताइए।
6: मिर्च।
0: मिर्च सही जवाब है?
3: जी दीदी।
0: सही जवाब, एक बार फिर से जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। एक और पहेली भी आपने लिखी है।
3: जी दीदी।
0: हाँ जी बुझिए।
3: एक पहेली मैं बुझाऊं, सिर को काट नमक छिड़काऊं।
0: सिर को काट नमक छिड़काऊं, सोचिए सोचिए सोचिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब शायद किसी को नहीं आता, तो खुशी आप ही बताइए इसका सही जवाब क्या है।
3: खीरा।
0: खीरा, एक बार जोरदार तालियां खुशी के लिए। बड़ा मज़ा आया हमें पहेलियाँ बूझकर, सुनकर, और उनके सही जवाब भी बच्चों को आते थे ये देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम बाल सभा संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति। सब बच्चे मिलकर बोलेंगे
1: जय।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: बहुत दिनों बाद आज अमरकांत जी इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं और अमर जी कुछ खास रिकॉर्डिंग्स आज हमने अपने श्रोताओं के लिए चुनी है
1: जी।
0: क्योंकि मुझे याद है पिछली विविधा में हम कह रहे थे कि एक विविधा खत्म होती है और हमें फिक्र हो जाती है कि अगले शुक्रवार को हम अपने श्रोताओं को क्या सुनाएंगे,
1: क्या उनके लिए ऐसा खास लाएंगे कि जिसे सुनकर वो कहें वाह क्या खजाना है विविध भारती का।
0: जी तो कौन से हमारे ऐसे कलाकार हैं जिनको आज के इस अंक में हम याद करेंगे, इसका जिक्र कर रहे हैं अमर जी।
1: देखिए ऐसा है मनीषा जी कि हमारे श्रोता जो लगातार विविधा सुनते रहे हैं और सुनते हैं वो अब तक इतना तो समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी कलाकार का जिक्र इस कार्यक्रम में करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है उस दिन उसका जिक्र करने की।
0: बिल्कुल।
1: तो आज जिन तीन कलाकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनके पीछे भी कोई कारण होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो पहले तो मैं नाम बता दूं कि वो तीन कलाकार कौन से हैं।
0: बिल्कुल।
1: अदाकारा रीमा लागू, अपने जमाने के चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले सशक्त कलाकार जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में खलनायक की भूमिका भी निभाई, सज्जन कुमार
0: जी,
1: और एक बहुत ही नामी गिरामी किंग मेकर कह सकते हैं,
0: मैं नाम बता रही हूँ आप और वो है मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: तो आज विविधा में ये तीन कलाकार हैं और इनके अलग अलग रंगों से सजी है आज की महफिल
1: जी।
0: सबसे पहले किसकी रिकॉर्डिंग हम सुनवाएंगे?
1: सबसे पहले रिकॉर्डिंग भी सुनवाएंगे और कोशिश करेंगे एक गाना भी अगर हम सुनवा सकें
0: जी जी,
1: रीमा लागू जी का।
0: बिल्कुल। रीमा जी चरित्र अभिनेत्री के रूप में बहुत मशहूर हुई, खास तौर पर माँ का चरित्र बहुत निभाया उन्होंने फिल्मों
1: जी, लेकिन रीमा जी के फेमस होने के पीछे टेलीविजन का भी बहुत बड़ा हाथ था
0: जी।
1: दो ऐसे सीरियल थे जिनके कारण रीमा जी ने अपने मतलब एक्टिंग की जितनी भी उनकी खूबियां थी वो सारी की सारी दिखाई। एक सीरियल था श्रीमान श्रीमती और एक सीरियल था तू तू मैं मैं। श्रीमान श्रीमती में तो ये पत्नी बनी थी और तू तू मैं मैं में ये सास बनी थी,
0: और वो बनी थी सचिन जी की धर्मपत्नी जो है सुप्रिया
1: पिलगांवकर,
0: पिलगांवकर उनकी सास, और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने उसमें प्ले किया था।
1: अब यहाँ मैं ये बता दूं मनीषा जी कि रीमा लागू जी का जो नाम था वो पहले था नयन भादभड़े
0: जी।
1: 21 जून 1958 को इनका जन्म हुआ और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ही कम उम्र यानी 18 मई 2017 को रीमा जी ने इस संसार से अलविदा कह दिया,
0: मात्र 59 वर्ष की आयु
1: जी।
0: बहुत कम उम्र में वो चली गई। मराठी और हिंदी सिनेमा की तो अभिनेत्री थी ही, थिएटर भी उन्होंने बहुत किया था।
1: हम ये भी बता दें आपको दोस्तों कि रीमा जी चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी काम करती रही हैं
0: जी।
1: मराठी में इन्होंने काम किया, फिर मराठी फिल्मों में काम किया, थिएटर में काम किया, इस तरह से इनकी जर्नी चलती रही। और जब सूरज बड़जात्या ने हम आपके हैं कौन फिल्म प्लान करी तो उस दौरान मनीषा जी हुआ क्या कि वो फिल्म को पूरा एक नया लुक दे रहे थे सूरज बड़जात्या
0: जी।
1: वो आपको तो पता ही है कि नदिया के पार का रीमेक था
0: जी। हाँ, एक अर्बन नदिया के पार कह लीजिए
1: जी जी। और उसमें इनकी कोशिश थी सूरज बड़जात्या के कि सब कुछ एकदम मॉडर्न हो, पिक्चर भी पूरी ग्लॉसी थी और सब बड़े खूबसूरत चेहरे, बहुत ही
0: अच्छी स्टार कास्ट जबरदस्त जी।
1: अब ऐसे में इनको एक ऐसी माँ चाहिए थी जो एक अभिजात्य परिवार की एक कमांडिंग
0: मदर हो। मैं कहूँ तो एक ग्लैमरस माँ,
1: ये बिल्कुल सही शब्द आपने पकड़ा
0: जी।
1: और वो ग्लैमरस माँ ढूंढते इनकी नजर रीमा लागू पे पड़ी और फिर वहीं अटक गई।
0: और कितनी हसीन लगी है उस फिल्म में,
1: बिल्कुल
0: वात्सल्य की मूर्ति रीमा लागू, और उनके पीछे वो छुप के माधुरी दीक्षित का कहना माई री माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। अमर जी आपने कहा था गीत सुनाए,
1: बिल्कुल तो गाना सुनते हैं उसके बाद बात।

0: मनीषा जी, गाना तो आपने सुनवा दिया, लेकिन आपने पहले ये भी कहा था कि आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग है इनकी।
1: बिल्कुल, और रीमा जी की एक बहुत प्यारी बातचीत हमारे पास है।
0: तो फिर देर किस बात की?
1: बिल्कुल, बातचीत उनसे की थी यूनुस खान ने, तो उस रिकॉर्डिंग को हम सुनते हैं और याद करते हैं अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू।
2: रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
3: शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर। एक्चुअली रेडियो से मेरा नाता बहुत पुराना है, तो वो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आ रही है। व्हेन आई वाज अ किड, उस वक्त मैं प्लेज पढ़ने के लिए रेडियो स्टेशन आती थी।
2: जी जी।
3: मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो पढ़ाई करते वक्त रेडियो के गाने सुनना मेरे लिए जरूरी था, तो अच्छा। कई बार डांट भी खाती थी मम्मी से, बट उस वक्त के बिना का गीतमाला जो हुआ करती थी, या रात के 10 से 10:30 के गाने, या सुबह के क्लासिकल एक बीट आता था
2: जी,
3: जो शायद अभी भी आता होगा। तो एक वक्त रहता था कि जब उस वक्त के लिए मैं घर पे आके वो गाने सुन के वापस जाती थी।
2: ये जो रेडियो का दौर है, ये एक बार फिर कहना चाहिए लौट रहा है।
3: एक्चुअली यू आर राइट, बिकॉज वो वेव रहती है, जैसे हमारे फिल्मों में कभी फिल्में अच्छी चलती है कभी बुरी चलती है, वैसे रेडियो का हुआ था। अभी कॉम्पिटिशन भी है, फिर भी आजकल मेरे साथ तो ये होता है कि गाड़ी में मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो रेडियो मेरा हमेशा चलता रहता है। ये फ्रेंड बन गया है रेडियो आज,
2: यानी बचपन से लेके आज तक रेडियो से आपका नाता तो जुड़ा हुआ है।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन अभिनय से आपका नाता कैसे शुरू हुआ था?
3: वो भी शायद बचपन से ही है। मेरी मम्मी मंदाकिनी, शी इज फ्रॉम थिएटर, उन्होंने थिएटर से शुरुआत की थी, तो उनके साथ मैं जाया करती थी, तो आई थिंक वहाँ से मैंने पिकअप किया होगा और आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज।
2: घर से आपको एक तरह से रंगमंच के संस्कार मिले थे?
3: हाँ जी, एक्चुअली रंगमंच के संस्कार ही मुझे ज्यादा मिले हैं। फिल्में तो मैंने बहुत लेट करना शुरू किया।
2: बचपन से क्या आपने ये तय कर लिया था कि आपको अभिनय ही करना है?
3: जी बिल्कुल नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर मैं करती थी, काम करती थी, अच्छा लगता था। और आई थिंक मैट्रिक तक मेरा एक गैप रहा, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद जब मैं मैट्रिक के बाद जब बॉम्बे आई, तब से फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ।
2: कैसे वो दिन थे और किस तरह से तैयारी करना, रिहर्सल्स, वो सारा माहौल कैसा था?
3: एक्चुअली इट्स वेरी मेस्मराइजिंग, यू नो, एक्चुअली मुझे आज भी प्ले ओपन होने तक का जो एक समय रहता है
2: जी,
3: यानी रिहर्सल से 1 महीना 1.5 महीना जितना भी, वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, इसलिए कि उसमें आप बनते हैं,
2: यू ग्रो करते हैं
3: एज एन आर्टिस्ट, और लेट तक रिहर्सल करते रहो, मजा आता है। फिर
2: खाने पीने की कोई सुध नहीं और वो,
3: हाँ, एक वो अजीब सी फीलिंग होती है शो पहला ओपन होने तक, यानी पहली एंट्री लेने तक पेट में बटरफ्लाइज रहते हैं, बट इट्स अ वंडरफुल पीरियड फॉर मी।
2: ये बताएं कि आपका पहला यादगार नाटक कौन सा था?
3: ऐसे प्लेज मैंने काफी किए हैं, बट

0: पहली फिल्म आई थी आक्रोश, अगर मैं सही हूँ
1: जी मुझे हंसी इसलिए आई, उसमें मैंने लावणी डांस किया था।
0: अच्छा
1: तो इसलिए मुझे हंसी आई, रोल नहीं था मेरा कुछ, मुझे लावणी से बहुत लगाव था। ये डांस इस तरह का मुझे बचपन से मैं देखती आ रही थी और मेरा ड्रीम था जो उस फिल्म में पूरा हुआ, यू नो
0: जी।
1: सो या यू आर राइट कि उस फिल्म में मैंने वो किया था, वो लगातार दोनों फिल्म मेरे ख्याल से, कलयुग भी आई थी उसी वक्त एंड आक्रोश भी आई थी
0: जी।
1: उसके बाद अगेन देयर वाज अ बिग गैप।
0: लेकिन उस दौर में आपकी कुछ मराठी फिल्में आती रही थी।
1: हाँ, सिंहासन आई थी और दो तीन
0: माझा घर माझा संसार।
1: हाँ, माझा घर माझा संसार, फिर अंतरपट आई, ननंद भौजाई आई थी, कह सकते।
0: तो आपकी मराठी सिनेमा यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी?
1: वैसे बचपन में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आई हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स, तू सुखी रहा है, काफी फिल्में की थी मैंने, बट सिंहासन, फिर ये ननंद जो अभी मैंने बताई, वही फिल्में मैंने, मेरी शुरुआत हुई थी। कुल मिला के 7-8 फिल्में की होगी मैंने मराठी में एज अ लीडिंग लेडी, उसके बाद फिर गैप आया एंड देन।
0: और रंगमंच तो आपका चल ही रहा था।
1: हाँ, वो तो मैंने प्यार किया तक चल रहा था।
0: अच्छा, ये कहानी क्या है कि मैंने प्यार किया में आपका चुनाव किस तरह से हुआ?
1: एक्चुअली मुझे राजश्री की ऑफिस से गुप्ता जी करके उनका फोन आया था, उन्होंने शायद मेरा पृथ्वी थिएटर में उस वक्त मैं प्लेस करती थी, हिंदी प्लेस करती थी, तो शायद उन्होंने वो प्ले मेरा देखा होगा
0: जी,
1: और उन्होंने बुलाया मुझे ऑफिस में। तो मैं वहां गई तो सूरज जी नरेटेड मी द एंटायर थिंग, तो मुझे पता नहीं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा लगा, द वे ही वाज नरेटिंग मी द स्टोरी। मैंने खाली सब सुनने के बाद इतना ही पूछा कि जो आप मुझे बता रहे वैसे ही आप शूट करेंगे? बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे? मैंने कहा नहीं, कई बार ऐसा होता है बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ और जाता है
0: जी।
1: तो बोले नहीं नहीं, मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, आई लाइक द फ्रेशनेस ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट, यू नो। तो मैंने कहा नहीं, ये कर लेती हूँ मैं, एंड लकीली इट गॉट सुपर हिट, एंड राजश्री पीपल दे आर रियली वेरी नाइस पीपल, लाइक ऐसा लग रहा था कि कोई घर का फेस्टिवल चल रहा है, यू नो
0: जी।
1: तो इस तरीके की ट्रीटमेंट आज तक उनकी वैसी ही है, तो ऐसे लोगों के साथ काम करते वक्त भी मजा आता है।
0: मेरे ख्याल से सिनेमा में पहली बार आपने माँ की भूमिका की होगी
1: जी,
0: और उसके बाद फिर एक
1: फस गई मैं। फस गई मैं।
0: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गंभीर भूमिकाएं हैं वो आपको ज्यादा पसंद हैं या कॉमेडी?
1: मुझे तो कॉमेडी में करने में बड़ा मजा आता है, हंसने हंसाने में बड़ा मजा आता है, सीरियस में थोड़ी तकलीफ होती है दिमाग को, यू नो, बट कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट आई फील। लोगों को हंसाना इतनी आसान बात नहीं है, रुलाना मेरे ख्याल से आसान बात है, बट लाइक सीरियस भी वास्तव जैसे रोल है, जो एक गंभीरता से अगर आप करें तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत काफी दिन तक लोगों के दिमाग पे बसा रहता है। तो
0: कैसे वास्तव के रोल के लिए आपने अपने आप को तैयार किया था?
1: मैंने कुछ तैयार नहीं किया अपने आप को, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिटेल में पता नहीं था कि ये रोल क्या है, बिकॉज महेश के साथ मैं कभी ये सवाल ही पूछती नहीं हूँ। एक भरोसा है, एक ट्यूनिंग है हम दोनों की, व्हेनेवर ही ऑफर्स मी अ रोल आई डू इट। तो एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि कल ये आपको सीन करना है, तो ऐसे कोई तैयारी थी नहीं, एक सीन करते वक्त पता चलता है कि अच्छा इस ट्रैक पे आप जा रहे हैं। एंड वास्तव का रोल करने में मुझे बड़ा आसान रहा, क्योंकि मेरा जो बचपन था वो ऐसे ही लोकेलिटीज में, नॉट एकदम चालसी बट उससे थोड़ा बढ़ के, बट आई वॉज फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ एटमोसफेयर, टू पोर्ट्रे दिस काइंड ऑफ एटमोसफेयर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैंने देख चुकी थी मैं जहाँ रह रही थी, तो कि ऐसे माहौल में कैसे लोग बड़े होते हैं, या जो प्रिंसिपल्स उस औरत के दिखाए थे वो थोड़े सीन के पहले तैयारी कर लेती थी मैं, थ्रू डायलॉग्स ओनली।
0: जब पूरी फिल्म तैयार हुई और वो रोल अपने आप में एक बुलंदी के साथ एक सशक्त तरीके से
1: निकला
0: बाहर आया, तो कैसा लगा?
1: अच्छा लगा, बिकॉज एक तो मुझे अभी तक ना फिल्मों का, जैसे थिएटर में एक स्क्रिप्ट हमें पता होती है बिगिनिंग से लेके एंड तक, ये स्क्रिप्ट है, ये रोल का ग्राफ है, वैसे फिल्मों में नहीं होता, बिट्स में समझ में आता है। तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पूरा सिनेरियो आपको बताते हैं, उस वक्त पता चलता है, बट कई बार ऐसे होता है कि नहीं, वो सीन बाय सीन आपको पता चलता है, देन वी टेक द प्रिकॉशन की पूछ लेते हैं कि इसके पहले क्या हुआ है, आगे क्या ग्राफ बनने वाला है, यू नो। तो जब मैंने वो सीन किया, उसके बाद वो जब जुड़ के मेरे सामने खड़ा हुआ कैरेक्टर, तो मैं ताज्जुब में रह गई कि ओ ओ व्हाट अ सशक्त कैरेक्टर मिला है मुझे। काफी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि आपको अच्छा लगा कि आपने अपने बेटे को मारा, जब आपने, आपको अच्छा लगा अपने बेटे को, मतलब दे भूल गए कि कई लोगों का ऐसा कि नहीं नहीं माँ है, मार कैसे सकती है। अच्छा, एक तरीके से मुझे अच्छा लगा कि दे हैड फॉरगॉटन कि इट्स अ फिल्म का रोल।
0: अच्छा, आपके पूरे फिल्मी करियर में आप अपनी कौन कौन सी भूमिकाओं को बड़ा यादगार मानती हैं, जो आपके अपने दिल के करीब हैं?
1: आशिकी का एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था जहाँ पे प्रोग्रेसिवनेस की बात आती है औरत के, बिकॉज ज्यादातर के अपने यहाँ पे

0: हिंदी फिल्मों के रोल्स एक ही ढांचे के रहते हैं, तो उसमें अलगपन बहुत कम
1: जी
0: जगह मिलता है, तो उसमें से इसलिए मुझे आशिकी का जो प्रोग्रेसिवनेस था उस औरत का दिखाया था, सिंगल लेडी हु इज वर्किंग ऑल्सो, तो वो ग्राफ मुझे अच्छा लगा था, बाकी ऐसे नहीं कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है।
1: जी
0: और एक मराठी फिल्म आई कैन से आपली मांडसकर के था, उसका रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
1: किस तरह का रोल था?
0: इट वॉज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ रोल, बट इट वॉज आई डोंट नो, मुझे करते वक्त मैं अभी तक उसकी मेमोरीज मेरे दिमाग में है।
1: रीमा जी, आप किस तरह का संगीत पसंद करती हैं?
0: मुझे क्लासिकल अच्छा लगता है और हिंदी फिल्मों का संगीत या मराठी गाने, बट वेस्टर्न का मुझे पता नहीं है, या शायद बचपन से कभी सुनने का मौका नहीं मिला, या कभी वो उस तरह का माहौल ही नहीं था उस वक्त, तो मम्मी और डैडी के साथ मैं कभी क्लासिकल गाने बहुत सुनती थी, कोई प्रोग्राम्स को जाती थी, तो क्लासिकल अच्छा लगता है। और लाइट
1: आज भी
0: वाली
1: शास्त्रीय संगीत की महफिलों में जा पाती हैं आप?
0: कभी कभार, नॉट एवरी टाइम, बट कभी कभार अगर वक्त मिला तो मैं जाती हूँ। किशोरी आमोनकर जी का गाना मैंने सुना है, देन वीणा सहस्त्रबुद्धे जी मुझे अच्छी लगती है, और देवकी पंडित है,
1: जी
0: काफी काफी आर्टिस्ट जो बहुत मशहूर है उनके गाने, भीमसेन जोशी का मैंने गाना सुना है, जो
1: क्या
0: मुझे
1: बात है।
0: बहुत ही यानी वो एक प्रेरणा मिलती है उनका गाना सुन, उनके उनकी जो आवाज है ना उससे अंदर हो जाता है, एंड यू गेट द
1: जी
0: स्ट्रेंथ।
1: बिल्कुल, भारतीय संगीत का गंधर्व सुर है वो,
0: जी
1: एक तरह से
0: बिल्कुल,
1: है।
0: मैं बहुत आवाज की उनकी तारीफ करती हूँ।
1: आइए एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी बिल्कुल, भीमसेन जी का एक अमोल जी की फिल्म थी अनकही,
1: हाँ
0: उसमें एक बहुत ही प्यारा गाना है।

0: बातचीत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार, ऐसे अच्छे अच्छे इंसान क्यों इतनी जल्दी चले जाते हैं।
1: सच में।
0: खैर, ईश्वर की मर्जी के आगे तो कुछ चलता नहीं। एक और बहुत ही अच्छे कलाकार जिनका मैंने जिक्र किया, सज्जन
1: जी,
0: जिनको सज्जन कुमार भी कहते रहे हैं, सज्जन के नाम से ज्यादा फेमस रहे वो। मैं ये बता दूं आपको कि सज्जन साहब के जो फैंस हैं वो सिर्फ उम्र दराज लोग नहीं हैं, सज्जन साहब के फैन तो छोटे छोटे बच्चे भी रहे हैं।
1: उसकी वजह बहुत अच्छे से हमारे श्रोता समझते हैं, जानते भी हैं। एक जमाने में एक सीरियल आया करता था टेलीविजन का, जिसमें सज्जन साहब ने रोल किया था राजा विक्रमादित्य के, जो कांधे पे चढ़े हुए बेताल का
0: जी।
1: मुझे लगता है एक बार उसका म्यूजिक हम अपने श्रोताओं को सुना दें तो जरा वो भी उस दौर में चले जाएं।
0: सिर्फ म्यूजिक क्यों, हम सज्जन साहब की आवाज भी सुनवाएंगे आपको। फिलहाल उस म्यूजिक को सुन लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको बड़ा मजा आ जाएगा।

0: Мать уже найдет. Мать уже найдет, Орла!
1: ये थे विक्रम और बेताल के सज्जन, और सज्जन साहब की आवाज में वो जो डायलॉग है ना उनका, वो बच्चे बच्चे की जुबान पे था, और आज भी हमें विश्वास है कि आपको वो सीन याद आ गए होंगे और एक बार दोबारा आप उसे देखने को फिर से लालायित तो जाएंगे।
2: इनका पूरा नाम मनीषा जी सज्जन लाल पुरोहित था, और 15 जनवरी 1921 में ये जयपुर में पैदा हुए थे, और वो दौर जो था वो अंग्रेजों के जमाने का दौर था, ब्रिटिश लोगों का राज था, और इनको लेकिन जो सबसे ज्यादा इनका जो मन था फिल्मों की तरफ ये झुकाव शुरू से रहा, और ये गीतकार बनना चाहते थे
1: जी।
2: और इस चक्कर में 1941 में ये जयपुर से कलकत्ता चले गए, क्योंकि उस दौर में कलकत्ता में फिल्में बना करती थी, आप बेहतर जानते हैं।
1: गढ़ था उस समय फिल्मों का जी,
2: जी जी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी उस समय, वहां उनकी लेबोरेटरी वगैरह भी थी, और यही वो दौर था जबकि इनको मासूम, चौरंगी इन फिल्मों में काम मिला, लेकिन वहां इनका मन ज्यादा लगा नहीं, और वहां से ये आ गए मुंबई, और यहां आकर उस समय के बहुत ही नामी निर्देशक केदार शर्मा साहब से इनकी मुलाकात हो गई। बस मुलाकात इनसे हुई, उसके बाद जो एक और बड़े कलाकार थे गजानन जागीरदार साहब, जिनके बारे में ज्यादा क्या कहें, सब लोग जानते हैं उनको,
1: ऐसे बड़े बड़े नाम जी।
2: और उसके बाद तो इनकी गाड़ी जो है वो चल पड़ी। इनकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 35 रूपए से शुरुआत हुई थी,
1: 35 रूपए की सैलरी उस वक्त अच्छी खासी हुआ करती थी। और हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे की फिल्म मीना जो 1944 में आई थी उसके डायलॉग्स भी सज्जन साहब ने लिखे थे, और 1946 की फिल्म जो दूर चली रिलीज हुई थी उसमें गीत लिखे थे, एक पोएट व्यक्ति थे, कवि थे वो, तो जाहिर है कि उनका ये जो शौक था ये फिल्मों में जाहिर हुआ। धन्यवाद फिल्म के भी गीत उन्होंने लिखे थे, और कुछ पृथ्वी थिएटर्स के जो ड्रामे हुआ करते थे उसमें वो एक्टिंग भी करते थे।
2: अब उनकी जो फिल्मों की बतौर हीरो जर्नी शुरू हुई 1950 में मुकद्दर फिल्म बॉम्बे थिएटर्स की थी, और उसमें उनकी हीरोइन थी नलिनी जयवंत।
1: क्या बात है,
2: आज के जो हमारे श्रोता हैं उनको मैं याद दिला दूं कि नलिनी जयवंत ये वही हैं जो नास्तिक फिल्म में अमिताभ बच्चन की मदर बनी थी।
1: हाँ, और नलिनी जी पर तो बहुत सुंदर सुंदर गीत एक जमाने में फिल्माए गए थे, मुझे याद है हम एक प्रोग्राम में विविधा के ही नलिनी जी की रिकॉर्डिंग भी सुनवा चुके हैं, तो हमारे श्रोता और भी इंतजार करें आगे भविष्य में।
2: ये समझ सकते हैं श्रोता कि किस जमाने में कहां से एक कलाकार की जर्नी शुरू होती है, और वो वहां से शुरू होके कहां विक्रम बेताल तक पहुंचता है। अब अगर बीच के कुछ एक दो फिल्मों के नाम लूं तो बहुत से श्रोता जो हैं उनको तुरंत याद आ जाएगा कि सज्जन कौन है।
1: जॉनी मेरा नाम
2: जी,
1: उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, याद है आप लोगों को,
2: राय साहब भूपिंदर सिंह
1: जी,
2: जो राय साहब भूपिंदर सिंह को उनका भाई रणजीत सिंह यानी प्रेमनाथ कैद करके रख लेता है
1: जी। हाँ,
2: वो
1: और उन पर एक बहुत मशहूर गीत भी फिल्माया गया है,
2: वो फिलहाल हम आपको गाना नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन आपको एक और फिल्म याद दिलाता हूँ मनीषा जी,
1: याद दिलाइए,
2: चलती का नाम गाड़ी।
1: हाँ, उसमें भी बहुत दिलचस्प किरदार सज्जन साहब का था, और थोड़ा सा जी हाँ थोड़ा नेगेटिव रोल था। खैर, आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा, हमने सज्जन साहब के बारे में बहुत बातें की, अब उनकी आवाज सुनते हैं।
2: बिल्कुल
3: सज्जन साहब, शुरुआत आपकी हुई फिल्मों में करेक्टर आर्टिस्ट से या कि हीरो से, आजकल आप दोबारा जब फिल्मों में आए तो ज्यादा आप करेक्टर रोल्स में देखे।
4: अब ये देखिए कि शुरुआत हुई हमारी फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट जो पहले एक्स्ट्रा कहलाया जाता था, उसके बाद में अरसे तक ये चला, 7-8 बरस तक चला, और उसके बाद में फिर पृथ्वीराज जी का पृथ्वी थिएटर हमने ज्वाइन किया, कुछ अच्छे रोल मिलने लगे तो फिल्म वालों ने भी हमको बुलाया, फिर फिल्मों में हीरो बने, काफी अरसे तक हीरो रहे, नरगिस हमारी हीरोइन थी, मीना कुमारी थी, गीता वाली थी, और उसके बाद में हम बुड्ढे हो गए समझे, तो हम हीरोइन के बाप बन गए, हीरो के बाप बन गए, और वो सिलसिला आज भी चालू है और रहे।
3: लेकिन आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता?
4: बिल्कुल नहीं अजीब लगता, हमने तो ये समझा कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट थे तब भी नशा लेके काम करते थे, हीरो थे तब भी मजा लेके काम करते थे, और आज भी जो रोल मिलता है हम उसके अंदर अपना पूरा मन लगाते हैं और उसके बाद में अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं।
3: आजकल आपको अब भी इस नए जमाने में जब आप काम करते हैं और आर्टिस्टों के साथ और किरदारों के साथ फिल्म में, तो जैसा पहले आपको सुकून मिलता था आर्टिस्टों के साथ काम करते, क्या आजकल भी इस नए जमाने में ऐसा लगता है कि नहीं? या ऐसा लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर?
4: नहीं नहीं, ये तो असंभव है कि वैसा का वैसा सुकून कैसे मिल सकता है। आप जनरल बात ये समझिए कि पहले डायरेक्टर लोग भी कुछ कहानी ऐसी लेते थे जिसमें चरित्र चित्रण होता था, कुछ कहने को बात होती थी, कुछ दिखाने को बात होती थी, अभिनय करने का मौका होता था और इत्मीनान से फिल्म बनती थी। तो मतलब कुछ सिखाया समझाया भी जाता था और फिर वो की वो बात उस चरित्र में से और उस कलाकार में से बाहर निकाली जाती थी। अब तो ऐसी आपाधापी चल रही है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, उसमें किसी को फुर्सत नहीं है कि वो कहानी को देखे, कि चरित्र चित्रण देखे, कि अभिनय देखे, कि बाकी की बातें देखे। और उसके बाद में जब दो दो शिफ्ट हैं, तीन तीन शिफ्ट हैं, अब कोई आदमी सिर्फ दो घंटे तीन घंटे ही फिल्मों में काम करने के लिए आता है और दिन में पांच छह जगह काम कर रहा है, तो उसके साथ के काम वालों की तरफ किधर जान जाएगा डायरेक्टर का? और उसकी तरफ भी जाएगा तो उसके तो नजर घड़ी पर है, अभी आया है, अभी घंटे डेढ़ घंटे में भाग जाएगा, तो अब वो बात रही नहीं, उसमें कोई मजा नहीं रहा। हम जैसे स्टेज पे जाके वन मैन शो करते हैं अपने, मतलब एक शो करते हैं, समझो कि छह आठ महीने के लिए बैटरी चार्ज हो गई, वहां कोई हमारे सामने बंदिश नहीं है। शाइलॉक भी करते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सर जेफना पंडरनाथ करते हैं, समझे, गुरुदेव टैगोर का करते हैं, बिना पैसे का भोज करते हैं, हफीज जालंधरी का अभी तो मैं जवान हूं इसको अभिनय करके बताते हैं, पेंटोमाइम करके बताते हैं। हमने अब तक 74 शो किए हैं, समझे, लंदन में भी किए तो अमेरिका में भी किए। तो कहने का मतलब ये है कि हम, हमारी ये जो भूख है या हमारी ये जो एक इच्छा है कि कुछ किया जाए, वो हम वहां पूरा करते, घर पे थोड़ी बैठे रहते। अगर जो हमने वहां परेशान किया या परेशान हुए तो उसमें सबकी गड़बड़। इसलिए मैं अपनी पोजीशन जानता हूं, मैं इसलिए ना तो दखल देता हूं और न ही उम्मीद करता हूं कि मेरे दखल देने से यहां कुछ होने वाला।
3: मतलब आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलती रही
4: कि कोशिश कर बस, ये
3: ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां मिली? थिएटर में।

0: या की फिल्मों में?
1: हमेशा थिएटर में मिली है, मिल रही है और मिलती भी रहेगी। हमने स्टेज पे काम करके वापस आए कि नहीं आए, हम जूनियर आर्टिस्ट थे, समझे? अभिनय तो उसमें भी बराबर करना है। और आज का जमाना एक ऐसा आया है कि जिसमें हम स्टेज अभिनय या फिल्म अभिनय या टीवी अभिनय, समझे, या कलर फिल्म की अभिनय और ब्लैक एंड व्हाइट की अभिनय, ऐसी तो कोई अलग अलग भेद तो है नहीं, सब जगह अभिनय।
0: हमारे यहाँ के जो लोग हैं आजकल, तकरीबन 90% लोग हैं, वो सब फिल्मों में आना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर है साहब, चाहे वो क्लर्क हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि हम अपने आप को पर्दे पर देखें।
1: आपके दिल और दिमाग के अंदर ये जो परसेंटेज है वो शहरी आबादी को देखते हुए है, समझे? आप एक काम कीजिए, जब आपको फुर्सत मिले 8-10 दिन की, तो किसी बहुत दूर देहात में चले जाइए जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती और बस भी नहीं जाती और सड़क भी नहीं है, समझे? और कम से कम वहाँ 400-500 आदमी आपको मिलेंगे जो रहते हैं, उनमें से पूछे कितने लोग फिल्मों में जाना चाहते। तो ये 90% वगैरह ऐसे एग्जेजरेशन नहीं करना चाहिए अपने को। काफी लोग
0: जो शहर
1: मुंबई हिंदुस्तान नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग अगर जो इसकी तरफ झुकाव है उनका, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये चीज ही ऐसी है। मगर उसके बाद में अगर जो मेरी आंखें कमजोर, समझे, और उसके बाद में मेरे दिल में मैं ये ख्वाहिश पालूं कि मैं तो पायलट ही बन के रहूंगा, तो ये गलत बात है, समझे। मेरा नाक टेढ़ा, मेरी शक्ल सूरत ठीक नहीं, मुझे पूरी हिंदुस्तानी बोलनी आती नहीं, मुझे अभिनय की ABC मालूम नहीं, मैंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का नाम सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ये अनुभव किया नहीं, रंगमंच के ऊपर पांव रखे नहीं, कभी रखे तो पसीना आ गया, और उसके बाद में दिल में ये अरमान पालना कि नहीं मैं तो बस एक्टिंग ही करूंगा और मैं तो अपने आप को पर्दे पे ही देखूंगा, तो उसका इलाज आप और हमारे पास नहीं है, समझे। और उनको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, समझे। एक्टिंग करना है, बर्न योर बोट्स, सारी तैयारी करके आइए, उतरिए मैदान में, आजमाइए अपनी तकदीर।
0: जब आप खाली होते हैं तो अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या आप भी फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं?
1: नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में देखिए
0: पोएट्री वगैरह लिखते हैं क्या?
1: ये भी लिखता हूँ, इसमें चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, हमने कुछ गीत लिखे हैं, समझे। हम शुरू में, मतलब इंडस्ट्री में जब आए तो एज ए डायलॉग राइटर और सॉन्ग राइटर ही के तौर पे आए थे। फनी मजुमदार ने एक पिक्चर बनाई थी दूर चले, तो उसके गाने भी हमने लिखे थे और डायलॉग भी हमने लिखे थे।
0: समझे, आप क्या क्या करते थे?
1: क्या कमाल है, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं करता, ऊपर वाले ने कुछ दिया है, समझे, तो वो करते हैं। तो आज भी मैं अपने गीत लिखते रहता हूँ। जब चीन ने अटैक किया था 1962 की बात है शायद, समझे, उस वक्त हमने काफी वैसी वीर रस की कविताएं लिखी, 4 एडिशंस उस किताब के छपे, नेहरू जी तक को सुनाई, लाल किले से पढ़ के सुनाई कविताएं, समझे। और उसके अलावा गीत तो चलते ही रहते हैं। ये गीत मैं चाहूं तब थोड़ी है, तो अपने आप आते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकले होंगे गान, और निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अंजाम। तो ये तो आ जाती है, तो लिख देते हैं, समझे। अब मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं चाह करके थोड़ी लिख सकता था। चुपचाप अकेले छुप छुप के मैं गीत किसी के गाता हूँ, और दिल के जख्मों को छील छील मैं अपना जी बहलाता हूँ। तो हम अपना जी बहलाते रहते हैं, समझे। तो वो है, बगीचे के अंदर काम है, बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है, समझे। और उसके बाद में जैसे हमने आपको बताया कि हम रेडिएशन की एक एग्जीबिशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें जब सारा एटमॉस्फेयर रेडिएशन से सरचार्ज्ड हो जाएगा तो ये जो जीवित लोग हैं उनके ऊपर क्या असर होने वाला है, समझे। तो वो हमने 250-300 पीसेस बना लिए हैं और वायदा किया अपने आप को 500 पीसेस तैयार होंगे तो हम एग्जीबिशन बाहर निकालेंगे। बहुत करने को काम है जी, बहुत काम है।
2: मनीषा जी, ये रिकॉर्डिंग सुनके सचमुच बहुत अच्छा लगा
3: जी, बहुत अच्छा लगा।
2: सज्जन कुमार साहब, उन्होंने लगभग सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया
3: जी। हाँ।
2: अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी रहे वो। अब यहाँ मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी दुखद बात है कि 17 मई 2000 में सज्जन साहब ने इस संसार से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया, वो चले गए। और जब वो चले गए वाली बात है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किस राजा विक्रम ने उनकी बात का जवाब दे दिया, तो वो नाराज हो गए और बोले, तू बोला तो मैं चला।
4: सच कहा विक्रम, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोला और मैं चला जाऊंगा, तू बोला और अब मैं जा रहा हूं।
3: शुदा, हम याद कर रहे थे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता सज्जन साहब की, उनकी रिकॉर्डिंग आपने सुनी। सज्जन साहब के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे तब आपको याद होगा कि अमर जी ने जिक्र किया था कि वो आए थे गीतकार बनने और बन गए अभिनेता।

0: ही एक कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री में आए, जो आए थे दिल में हसरत लिए गीतकार बनने की और बन गए निर्माता निर्देशक। और क्या ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी। जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं?
1: प्रकाश मेहरा साहब की। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है दोस्तों, बस ये है कि रेडियो में काम करते हैं ना तो थोड़ी आदत हो जाती है हमारी इस तरह से बोलने की कि डेंटन टेन। वो फिल्मों में नहीं होता, वो बच्चे जब कहानी सुनाते हैं।
0: आप तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सच में प्रकाश मेहरा साहब की
1: ये उस दौर की फिल्म है ना। जी हाँ। कि जब हम पिक्चर देख के आते थे और हमसे कोई पूछता था कौन सी फिल्म देखी, हम आज तो यार हमने देखी मुकद्दर का सिकंदर। अच्छा फिर क्या होता? क्या होता, अमिताभ बच्चन आता है और मोटरसाइकिल चलाता है और उसके बाद क्या, डेंटन टेन। बस वो कुछ इसी तरह से हम बचपन में भी कहानियां सुनाया करते थे। हाँ। सुनते थे तो प्रकाश मेहरा साहब का नाम आते ही मुझे भी वो डेंटन टेन याद आ गया, क्योंकि उस दौर की फिल्में थी।
0: जी हाँ।
1: और एक से एक फिल्में बनाई मनीषा जी उन्होंने। बिजनौर से आया एक बंदा आया था गीतकार बनने। एक फिल्म दोस्तों याद होगी आपको, एक कुंवारा एक कुंवारी, उसका एक गाना, मैं मनीषा जी उसके बोल आपको बताता हूँ।
0: बताइए।
1: वो बोल है, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा गीत है।
1: न मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता।
0: तो अमर जी, आपने इतने प्यारे गीत को याद दिलाया है
1: जी।
0: सुनना पड़ेगा और फिर हम आगे एक रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे श्रोताओं को।
1: तो चलिए सुन लेते हैं।

0: अमर जी
1: जी,
0: क्या गाना, वाह। बहुत दिनों बाद हमने इस गाने को सुना। न टूटता न फूटता, न मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता।
1: जार जार रोए प्रकाश मेहरा के प्रशंसक
0: जी
1: 17 मई 2009 को, क्योंकि प्रकाश जी ने फिल्मों से, जिंदगी से, दुनिया से सबसे नाता तोड़ा और चले गए। पता नहीं क्यों इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गुणी लोग जब चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ, बहुत कुछ खाली हो गया। लेकिन तो खैर, सृष्टि का नियम है, ईश्वर ने जन्म बनाया है तो मृत्यु भी बनाई है, यह अटल सत्य है। बहरहाल 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्म हुआ था
0: प्रकाश
1: मेहरा साहब का। और फिर ये आ गए मुंबई। आए तो थे ये गीतकार बनने, मनीषा जी
0: जी,
1: लेकिन शुरुआत में आप तो जानती हैं, फिल्म हमारी जो माया नगरी है यहाँ पे बहुत पापड़ बिलवाती है, तो इन्होंने पहले प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया। उस हैसियत से अपना जब काम ये कर रहे थे, उसके बाद इनको फिल्म मिली हसीना मान जाएगी,
0: शशि कपूर साहब की,
1: बिल्कुल। और उसमें इन्होंने गाना भी लिखा और वो हिट भी हुआ।
0: कौन सा वाला गाना?
1: हसीना मान

0: आएगी टाइटल सॉन्ग जो था वो था और भी कई गाने इन्होंने लिखे और बाद में तो बहुत से गाने लिखे। और मनीषा जी यहाँ मैं आपको बता दूं कि खान ब्रदर्स फिरोज खान और संजय खान साहब की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी मेला, गोरी के हाथ में चांदी का छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह,
1: याद आ गया वो भी गाना। आज न जाने क्यों बड़े दिलचस्प गीत आपकी जबान से।
0: ये भी डायरेक्ट उन्हीं ने की थी फिल्म, प्रकाश मेहरा साहब।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: तो इस तरह से इनका ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद इन्होंने वो किया जो इतिहास में मतलब प्रकाश मेहरा को भी अमर कर गया और एक और कलाकार को अमर कर गया,
1: जिसने हमें महानायक दिया। फिल्म बनी जंजीर।
0: मनीषा जी फिल्म जंजीर से जुड़े कुछ किस्से हैं, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं।
1: बिल्कुल,
0: आप फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुनवाएंगे।
1: बिल्कुल, इंतजार करेंगे हमारे श्रोता, आप जरा किस्सा सुनाइए।
0: अब किस्से कुछ ऐसे हैं कि फिल्म जंजीर एक गीतकार की फिल्म थी
1: जी।
0: पहले तो जब प्लान की गई, जब लिखी गई, इसमें तब कोई गाने नहीं थे, लेकिन बाद में रिलीफ के लिए 4-5 गाने डाले गए, या जिसको आज आइटम सॉन्ग कहते हैं, उस जमाने में कैबरे कहलाते थे
1: जी।
0: और उसमें बिंदु जी पे जो फिल्माया गया कि दिल जलों का
1: दिल जला के
0: प्राण साहब पे कव्वाली फिल्माई गई, एक हीरोइन पे गाना फिल्माया गया, एक और था गाना दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। आप जानती हैं गाना पिक्चराइज किस पे हुआ था?
1: आप ही बता दीजिए ना।
0: गीतकार गुलशन बावरा थे वो।
1: क्या बात है,
0: जो हारमोनियम बजाते हुए नजर आते हैं वो गीतकार गुलशन बावरा।
1: देखिए श्रोताओं, अमर जी के साथ जब किस्सा गोई शुरू हुई तो न जाने कितनी कितनी बातें निकलती चली गई।
0: अब जो दूसरा किस्सा है वो बहुत से लोग हालांकि जानते हैं कि जंजीर फिल्म पहले गई थी देवानंद साहब के पास। देवानंद साहब से इन्होंने गुजारिश की कि साहब आप इस फिल्म में काम कीजिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले इस फिल्म में गाने नहीं थे, तो देवानंद साहब ने कहा कि देखो भाई, मैं तो वो फिल्में करता नहीं जिसमें गाने ना हो, तो मैं तो रोमांटिक फिल्मों का हीरो हूं। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये कहानी जो थी वो थी सलीम जावेद की
1: जी।
0: अब ये कहानी धर्मेंद्र साहब ने पहले ही खरीद ली थी।
1: अच्छा।
0: लेकिन वापस ले ली थी इन्होंने सलीम साहब ने उनसे।
1: अच्छा।
0: और फिर प्रकाश मेहरा साहब से गुजारिश की कि भैया आप इसको बनाइए। और फिर ये फिल्म गई राजकुमार साहब के पास, लेकिन राजकुमार साहब ने तो अलग सा कारण बताकर उन्होंने इनकार कर दिया कि साहब मैं नहीं करूंगा। तब जाकर आपको पता है अनवर अली जो महमूद साहब के भाई थे
1: जी,
0: उनके साथ अमिताभ बच्चन शेयरिंग में रहते थे,
1: यही मुंबई में।
0: और अमिताभ बच्चन महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा कर चुके थे
1: जी।
0: और अनवर से कहकर महमूद से सिफारिश करवाई प्रकाश मेहरा पे। तब जाकर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से मिले और मिलते ही प्रकाश मेहरा ने कहा कि ये है मेरा हीरो।
1: क्या बात है, कहां से कहां, कहां से कहां, कैसी बातें निकली।
0: अब एक और किस्सा है। अब ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है कि प्राण साहब को खलनायकी से चरित्र भूमिकाओं में लेकर आए मनोज कुमार
1: जी। हाँ।
0: तो जब जंजीर फिल्म प्राण साहब ने साइन कर ली शेर खान के किरदार के लिए, उसी समय फिल्म शोर प्लान कर रहे थे
1: मनोज कुमार,
0: उसमें खान का किरदार था।
1: अच्छा।
0: और वो मनोज कुमार ने कहा कि भाई ये तो प्राण साहब ही करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और उन्होंने पूरे हक के साथ प्राण साहब से कहा कि ये तो आपका रोल है, आपको करना है। प्राण साहब का एक उसूल था कि प्राण साहब एक जैसा किरदार दूसरी किसी फिल्म में नहीं करते थे।
1: वाह।
0: और उस समय क्योंकि उन्होंने शेर खान वाला किरदार जंजीर के लिए एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो उन्होंने बना कर दिया। तब शोर में खान का किरदार प्रेमनाथ साहब ने किया।
1: क्या बात है। तो देखिए श्रोताओं, जिस तरह से मैं अवाक होकर के पूरे किस्से को सुन रही थी, मुझे लगता है इसी दिलचस्पी से आप भी सब रेडियो से कान लगाकर इस बात को सुन रहे होंगे कि अमर जी ने कौन सी जानकारी आपको दी। खैर श्रोताओं, अब हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवा दें जो हम अपने खजाने से लेकर आए हैं। अमर जी, तो अब सुनवाए इस रिकॉर्डिंग को।
0: बिल्कुल।
1: प्रकाश मेहरा साहब से बातचीत की कमल शर्मा जी।
2: प्रकाश मेहरा साहब, ये तो हमें मालूम है कि आपका जन्म बिजनौर में हुआ, मुंबई किस उम्र में आया?
3: ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि मैं आया फिर गया अराउंड 58, तो मेरे पास टोटल 42 रुपए थे। मैंने कहा भाई ये काफी है, यहाँ आके थोड़ी सी मैं बुनियादें बना गया था फिल्म डिवीजन में, इधर उधर 2-4 लोगों से मेरा कांटेक्ट हो गया। हमारे एक दूर के रिश्ते के मामा थे, कजन मामा, वो मरीन ड्राइव पर रहा करते थे। तो मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका था जहाँ हमारे

0: हमारे एडिटर के ठीक बगल में सामने वाली खिड़की पर चौथे या पांचवें फ्लोर पे ओपी नैयर थी। ये हारमोनियम पे गाने कंपोज किया करते थे, हम सुना करते थे। एक दिन हम पहुंच गए इनके पास जी। दो चार गाने मैंने उल्टे पुल्टे जैसे भी थे मेरे पास मैंने सुना दिए। बोले भाई काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, मेहनत की बहुत जरूरत है। ये तो पूरा महीना मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम अगले महीने आके मुझे मिलने। वहां से एक साहब थे मौर्य साहब, वो फिल्म डिवीजन में प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कुछ स्टॉक शॉट लेने विनोद देसाई आए थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कोई काबिल लड़का हो तो आप उसे हमारे पास भेजिएगा। उन्होंने मुझे खत दिया, मैं विनोद देसाई के यहाँ पहुंच गया। क्या जानते हो, ये जानते, एक सीन दे लिखोगे? हमने कहा साहब बताइए। हमने एकांत में बैठ के वो सीन लिख दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। बोले 150 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कहीं रहने की इसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मरीन ड्राइव का इतना बड़ा फ्लैट है, हमारी पत्नी जो है वो सेपरेट अलग जगह रहती है, वो अब पत्नी से सेपरेट हो गए थे, बेटा हमारा साथ है, और ये सामने जो बालकनी है समुद्र की हवा थी, तो बालकनी में उन्होंने सोफा कम बेड था, सिटिंग बनाई हुई थी, ग्लास से कवर कर ली थी। बोले ये बालकनी तुम्हारा बेडरूम है, बाकी हर चीज की फैसिलिटी यहाँ है, तुम काम करो। उसी बिल्डिंग में शंकर जयकिशन थे, जयकिशन 5 माले पे, और 6 माले पे थे मोहन सहगल। अब हमारी एम्बिशन ये नाग देवता और नाग पंचमी और ये सब थी नहीं, हमारी एम्बिशन थी सोशल फिल्म में। तो मोहन सहगल की हमने न्यू दिल्ली कुछ 20 मरतबा देखी थी। नीचे ये दीवार पे शाम को, मेरी ड्राइव की जो दीवार है, शाम को ये सब खलीफा जितने भी थे, जयकिशन भी और मोहन सहगल भी, विनोद देसाई भी, ये सब वहाँ दीवार पर बैठते थे। वहाँ दीवार पे बैठ के फ्यूचर प्लानिंग, कल सीन क्या होगा, परसों क्या होगा, उनके राइटर्स भी होते थे वहाँ, मोहन सहगल भी आते थे। मोहन सहगल का, विनोद का एक ही बिल्डिंग में चूंकि रहना था, तो और विनोद क्या चल रहा है, तुम्हारी पिछली फिल्म बहुत अच्छी गई भाई। मिले हाँ मोहन जी। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं मोहन सहगल से बात कैसे करूँ, वरना विनोद देसाई मुझे निकाल दे। एक दिन लकीली मोहन सहगल लिफ्ट में अकेले थे, तो मैंने बोला मोहन जी ऐसे ऐसे है, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, मुझे कुछ करना है। अभी माइथोलॉजिकल ग्रुप में आगे कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आपके ग्रुप में है। कह लगे मेरी एक फिल्म खत्म हो रही है, अभी दूसरी शुरू होगी, मगर मैं विनोद से पूछ लूंगा, तुम यू डोंट वरी। वो ऐसा आदमी नहीं कि एक आदमी दो जगह काम कर सकता है भाई, काबिलियत है तो करो यार, मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में। विनोद बहुत तारीफ करता है, बोलता ऑन द स्पॉट कोई भी सीन दो बैठ के लिख देता है। इन्होंने कहीं विनोद देसाई को बोला, तो विनोद ने बोला कि मेरी शूटिंग नहीं होगी तो आप क्या काम करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। बोले यार फिर तुम यहाँ फ्लैट से तो नहीं उसको निकाल दोगे, वो रहेगा यहाँ? बोले नहीं नहीं रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह सिलसिला हमारा शुरू हुआ।
1: वो भी आपको बिल्कुल बेटे जैसा मानते थे,
0: वेरी वेल बिहेव पर्सन, इतना खूबसूरत उनका ट्रीटमेंट था मेरे साथ, उनसे ज्यादा सरशार सैलानी मरहूम जो राइटर थे, ग्रेट राइटर।
1: तो प्रकाश जी आप बेसिकली बनना क्या चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे, फिल्म इंडस्ट्री
0: आए थे राइटर बनने? अच्छा, उससे पहले का जो पीरियड है मौर्य साहब से और यहाँ तक, वो बहुत खतरनाक गया है। जब तक हम अपने मामा को मिले हैं तब तक हम फुटपाथों पर सोते थे, चने खाते थे, मैं उसके बाद जो किस्मत ने पलटा लिया तो वही हमारी फिर दोस्ती हो गई। काम करते करते मोहन सहगल के और उसके, तो हमारे दोस्त थे इंदू भूषण, बहुत पैसे वाले के बेटे, तो इंदू भूषण से दोस्ती हो गई। इंदू भूषण को बड़ा शौक था कि यार एक पिक्चर बनाएंगे, तो मैं देखिए मैं इंदू भूषण को यहाँ तक बोलता था कि इंदू भूषण तू थोड़ा सा ठहर जा, बेसिक चीजें मैंने जो है वो सीख ली, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे 1 साल मोहन सहगल के साथ और काम करने दो। विल मे की फिल्म और एक सब्जेक्ट है, हमारे मित्र हैं, मित्र हो गए थे वहां से, मोहन सहगल के वहां से एस एम अब्बास, उनके पास एक सब्जेक्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे सुनाया है हसीना मान जाएगी। मैंने कहा अब्बास साहब 1 साल के बाद रुक जाइए, बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर इसके लिए हमारे पास है। 1 साल के बाद हमने इनसे कहा कि सब्जेक्ट सुने, वो इंदू भूषण यंगस्टर, वो भी खाने पीने वाला आदमी, बड़े बाप का बेटा, परवाह उसे थी नहीं पैसे की, नोट तो ऐसे फेंकता था कि जैसे कोई वर्थ ही नहीं है। तो हसीना मान जाएगी शुरू हो गई। एक और वाकया हुआ हमारे साथ, जब मोहन सहगल के यहाँ काम कर रहे थे तो हमारे पास एक ऑफर आई, किसी ने कहा होगा कि यार ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कुछ दम है। निरूपा राय जयराज को लेके अमर सिंह राठौर बोले तुम बनाओ, तुम्हें 50,000 रुपए देंगे, एक फीएट गाड़ी देंगे और एक फ्लैट देंगे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं 2-4 दिन के बाद आपको बताऊंगा। तो मैंने ये बात मोहन सहगल का जो कैमरामैन था सरदार बलदेव सिंह, असिस्टेंट कैमरामैन बलदेव सिंह से पूछा यार ऐसे ऐसे ऑफर आई है डायरेक्शन की, बोले सत्यानाश हो जाएगा, हाँ मत करना, मैथोलॉजिकल ग्रुप में तो घुसा है तो फिर उसके बाद तो निकल नहीं सकता, जब तेरी अगले साल हसीना मान जाएगी शुरू हो रही है, देन कीप पेशेंस। बात मेरे दिमाग में जम गई, मैंने उन्हें मना कर दिया। बहरहाल किस्मत में वो था, क्योंकि ऑलवेज आई यूज टू बिलीव इन डेस्टिनी, आपके प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर आपको खींच के किस तरफ ले जा रही है वही होना। आपकी मेहनत तो है, आपकी सिंसियरिटी तो है, मगर ये लक जो है ये बहुत बड़ी चीज। तो एक साल के बाद वो सिनेमा जाएगी शुरू हो गई, पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हिट और पिट का मतलब, हिट होने के बाद आप कौन से आसमान पे होते हैं, ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम पड़ा। जब हसीना मान जाएगी की रिलीज के एक महीने के बाद मैं वापस आया हूँ वहाँ मांदरा में, तो मेरे पास कुछ 40-50 ड्राफ्ट थे, 20 चेक थे, और जिस फैमिली के साथ मैं रहता था, आंटी थी वो डिसोजा, तो मिसेस डिसोजा को कोई साहब अपना नाम लिख के 51,000 रुपए कैश दे गए, वो थे नडियाड वाला। मैं बौखला गया बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने जॉनी वॉकर से, वही मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड हुआ करते थे कि हसीना मान जाएगी, वो थे हसीना मान जाएगी कंप्लीट कराने में हमारे पास पैसे खत्म हो जाया करते थे, तो अपने घर से लाके हमें देते थे, बोले मगर एक हफ्ते में ले लूंगा और हम एक हफ्ते में वापस कर दिया। तो जॉनी वॉकर से पूछा कि एक ऑफर है नजाड़ वाले की, एक ऑफर है मलिक चंद कोचर की, उनकी चार ऑफर थी, बोलो सब कर लो। मैंने कहा जॉनी भाई डायरेक्शन में ऐसे कभी होता है, एक फिल्म में मेरा तेल निकल गया था हसीना मान जाएगी में, एक एक सीन सोचते वक्त मेरा सिर फटता था कि मैं इसको स्क्रीन पे कैसे ले आऊंगा, सोच तो लिया। तो जॉनी वॉकर ने कहा सब कर ले।
1: निर्माता निर्देशक बनने से पहले आपने और भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई फिल्म इंडस्ट्री में, तरह तरह के काम किए आपने।
0: प्रोडक्शन का काम ज्यादातर साइड में मैं करता था
1: जी,
0: बिकॉज आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाकी मैंने कहा ना, मैंने एयरपोर्ट पर सामान उठाया, कुलीगिरी की बरसात में मैं विले पार्ले से महालक्ष्मी पैदल चल के आया करता था।
1: तो ये जो जंजीर की हम बात कर रहे हैं,
0: अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे
1: जी,
0: बट एज ए हीरो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, उनकी सारी उम्मीदें थी। ओबेरॉन की फिल्म बंदेहाल बन गई थी जिसमें ये और मुमताज, और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया, मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया, तो वो छोड़ के भाग गए, मेरे पैसे वापस कर दिए। फिर मैंने अमित कुबर यार कैफियत की, तो फिर मैंने जया से बात की, जो समाधि में जया जी काम कर रही थी। समाधि कहानी धर्मिंदर को बहुत पसंद, उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा बाजी उनको बुलाता था, मैंने कहा बाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट में मुखराम शर्मा से, मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, यानी उनके मुकाबले का कोई राइटर नहीं था उस वक्त, दो ही नाम लिए जाते थे पंडित मुखराम शर्मा एंड इंदिराज आनंद। तो मैं मुखराम शर्मा के हाथ पैर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे नहीं रहे थे, नहीं मैंने केदार कपूर को बोला है वो बना रहा है, तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ, वो दे दिया। और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का दे दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनत करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ, बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा इंस्पेक्टर की एक कहानी है। अच्छा, धर्मेंद्र ने जिंदगी भर कभी आज तक उनसे पूछो वो कहानी कौन सी थी, बोले एक इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोली है इंस्पेक्टर और पठान के आगे, बोले यार आगे उसे मालूम है वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रुपए उसे दे दिए हैं, आगे उससे सुन ले यार, इंस्पेक्टर और पठान की कहानी है, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। किताब को उस वक्त भी कहा था कि देखो भाई हर फिल्म में तुम अपना इमेज चेंज करते रहना, क्योंकि अब तुम हो गए हो बहुत बड़े स्टार, हर फिल्म में अपना इमेज चेंज करते रहना, वरना ये यहाँ के प्रोड्यूसर इतने बेदर्दी हैं तुम्हारी वर्दी सिलवा देंगे वो इंस्पेक्टर की। हर फिल्म में तुम इंस्पेक्टर ही दिखाई दोगे, और हंसा बहुत वो। एंड मैंने ही फिर अपनी सेकंड फिल्म हेरा फेरी, जिस प्रेस ने लिखा था कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन इन जंजीर, उसी प्रेस ने आफ्टर हेरा फेरी लिखा कि बेस्ट कॉमेडियन एवर बॉर्न इन द इंडियन स्क्रीन दैट इज अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना। मैंने कहा ना कीप ऑन चेंजिंग द इमेज, दैट्स व्हाई आई हैव मेड मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि कोई फिल्म मैच्योर्ड लव स्टोरी उस जमाने में नहीं बनी थी। तो मैंने संगम एंड देवदास मेरी तमन्ना थी। इन दोनों को ब्लेंड करके मुकद्दर का सिकंदर बनाया। तो मैंने कहा इनसे, एक फेस्टिवल से आ रहे थे तो प्लेन में सब साथ में ही थे, तो यूसुफ भाई भी बैठे थे, राज कपूर भी बैठे थे। तो राज जी ने जिक्र छेड़ा, बोले भाई तेरी मुकद्दर का सिकंदर की वो इंदिरा आनंद बहुत तारीफ करता है। चाचा जी बुलाते थे उन्हें या मामा जी कुछ, वो इंदर जी बड़ी तारीफ करते। मैंने कहा राज जी अभी चार पाँच दिन में सेंसर हो जाएगी, मैं प्रिंट आपको, नहीं नहीं नहीं मैं थिएटर पर देखूंगा। यूसुफ भाई से बोले भाई हम भी देखेंगे। बहरहाल मफहूम क्या है, लुब्बे लुबाब क्या है जो इतना जबरदस्त क्रेज उसका बना हुआ। मैंने कहा कुछ भी नहीं यूसुफ भाई, आपकी देवदास है, राज्य की संगम है। आप देवदास में झाड़ के पीछे मितवा गाया करते थे, मेरा सिकंदर जो है थोड़ी सी मारपीट कर लेता है।

0: रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। और
1: हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं मनीषा जी, कि हमें विविध भारती के माइक से बोलने का मौका मिलता है, हमें अपने श्रोताओं के दिल तक पहुंचने का मौका मिलता है, हम अपने श्रोताओं के साथ अपना विविधा का खजाना, विविध भारती का खजाना बांट पाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसलिए हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं।
0: और अमर जी, आज की इस विविधा को हमारे श्रोता याद रखेंगे, इस उम्मीद के साथ अब इजाजत लेते हैं, क्योंकि अगली विविधा में क्या लेकर आना है इसकी भी तो तैयारी करनी है।
1: बस तो निकलते ही लग जाएंगे अपने काम में,
0: और इस वक्त तो ले लेते हैं इजाजत। तो आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे।

0: जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु कवनत्तिरकुल्लावदुम
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1,200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत से। बागी फिल्म का गीत है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत है।

आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा और चित्रगुप्त की संगीत निर्देशन में सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: आप सुन रहे थे बारात फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली।

0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं सात समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और सुरों में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

0: दिया हरे हरे चल जा जा चल जा जा चल जा।
1: तेल मालिश बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, प्रेम धवन का लिखा, चित्रगुप्त का संगीत पथ किया हुआ। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की।
2: एक बेमिसाल शायर
3: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
2: एक शानदार शख्सियत।
4: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
2: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
4: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
2: कुछ बेमिसाल किस्से।
4: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
2: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जाने

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं नवरात्रि फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। जी एस नेपाली के लिखे गीत को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ सैमसन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और अब सुनवा रहे हैं हम मतवाले नौजवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है, जोड़ी है मजरू सुल्तानपुरी और चित्रगुप्त की।

बेजुबान, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं कल हमारा है, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

प्यार की बाजी। इस फिल्म का गाना आपने सुना, गीता दत्त और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुनते हैं ये गीत।

अली बाबा 40 शोर फिल्म का ये गाना बना कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब दीजिए यादों की महफिल से राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, दिन का एक बजे का वक्त और एक सुरीला सा सफर शुरू होने का समय। कितना मिलता जुलता है ये समय, और इसी समय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। राजुल है आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सुरीला सफर में। तो सुरीले सफर की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आज जो हमने इबारत पोस्ट की है वो कुछ इस तरह से है, वाक्यांश की समय का बैकग्राउंड संगीत हर पल बदलता रहता है और उसकी धुन पर दुनिया का मेला बिगड़ता सवरता है। समय के लिखे गीत में कभी ख्वाबों के सिलसिले गुनगुन करते हैं तो कभी वीराने, कभी मिलन के स्वरों में बहार की पायल झनक उठती है तो कभी तन्हाई के स्वर गूंज जाते हैं। उसके गीतों में माँ की मीठी लोरी होगी या अपने लिए जीने का सबक, दिल मिलने का नगमा होगा या मिलकर घबराए दिल का फसाना। वो कब कौन सा तराना छेड़े वो ही जाने, बस उसके सुर में सुर मिलाकर चलती रहे जिंदगी और हर कदम करती रहे एक नए गीत का इंतजार। तो ये है आज की इबारत, और इसमें से आपको शब्द सोचने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं आज के कार्यक्रम में जिन पर गीत सुनवाया जा सकता है। वैसे काफ़ी श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही कयास लगाया है, क्या बात है। वैसे आपने जो शब्दों का सिलसिला छेड़ा है उसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुरंगों से सजी है, कई शब्द बहुत सुंदर बन रहे हैं और बहुत मज़ेदार गाने होने वाले हैं आज। इन्होंने कुछ गानों की बारे में भी जिक्र किया है। एक और साथी ने कहा है कि अब तक के मानस पटल पर गद्य के पढ़ते ही इतने गीत याद आ गए हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। यद्यपि बजने 4-6 ही हैं और देखिए इनमें से कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम का हम सफर हो सकता है। पर आपके गीतों का हमने इंतज़ार किया, एक आधी गीत दिखा, सारे गीत तो हमें नज़र नहीं आए। चलिए, आप अगर छूट गया है तो अब बता दीजिए। जोधपुर राजस्थान से तपती दोपहरिया में प्यार भरा सलाम भेजने वाले हमारे एक श्रोता ने कुछ गाने भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इबारत में शामिल शब्द समय, हर पल, दुनिया का मेला, गीत, बहार, पायल, कभी तन्हाई, माँ की मीठी लोरी, जीने का दिल, नगमा, फसाना, कौन सा वो ही जाने, सुर चलती रहे जिंदगी, इंतज़ार। इन्होंने तो बहुत सारे शब्द बता दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारा रोजमर्रा का जीवन संगीत की रेखा और रंगों के अलाप से शुरू होता है। स्वरों के समन्वय को लेकर कल्पना का खेल चलता रहता है। हम तन्हाई में हो या वीराने में, बहार की पायल तो झनकती ही रहती है। सोचिए वे गीत कितने मधुर और मीठे होते हैं जिसके एक एक शब्द में माँ की मीठी गूंज बसी हो। माँ की गोद में लोरी की तान जैसे साज और साजिंदे एक जान एक सुर हो जाते हैं। ये अनंत यात्रा है जहाँ दिल से दिल मिलाकर सुरों के साथ चलते हुए हर कदम पर संगीत की विविधता और मिठास बिल्कुल माँ के आंचल की तरह प्यारी और पूर्णमय। क्या बात है, कितना खूबसूरत मैसेज। और आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे भी मनाया जा रहा है, मातृ दिवस मनाया जा रहा है, और बहुत सारे श्रोताओं ने शुभकामनाएं भी भेजी हैं। हमारे एक श्रोता कह रही हैं कि आज के अर्थपूर्ण गद्यांश के लगभग सभी शब्द चुने जा सकते हैं, लेकिन एक शब्द बिना झिझक चुन रही हूँ, वो है माँ और लोरी, क्योंकि आज मातृदिन है तो इन दोनों का वात्सल्य भरा जिक्र होना ही चाहिए, है ना, बिल्कुल होना चाहिए। और एक और श्रोता ने कहा है कि समय वक्त बड़ा बलवान होता है, समय को हम धीरे धीरे चलने को कहते हैं तो भी वो अपनी ही चाल में चलता है, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप, हा हा हा, क्या बात है। ये तो बस आनंद का संवाद नहीं, हकीकत है। हमें तो शाम गम काटनी है, जिंदगी अपनी, जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, नसीब में जिसके जो लिखा है वो ही मिलेगा। आज तो हमें उन गीतों का सुरीला सफर पूरा करना है जो मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी फरमाइश से जो आपने गीत चुने हैं उनमें से भी कई सारे गीत शामिल हैं। तो अब बातों से बढ़कर गीत की तरफ चलते हैं।

0: देखिए तो जरा कौन सा गीत पहला बना है। और हाँ, एक सवाल है, सवाल कुछ यूं है कि जो समय है उसकी उपस्थिति देखने के लिए घड़ी बनी और एक
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा में नगर निकाय का आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्वक जारी है। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और अन्य कई स्थानों से मिली जानकारी के अनुसार मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान को लेकर सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सभी 204 मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता अपना वोट देने आ रहे हैं। पंचकुला नगर निगम के क्षेत्र में आज कुल 2,07,379 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1,535 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वोट देने आई कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जनता का जो फैसला होगा वह मंजूर होगा। वहीं पंचकुला भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल ने भी पंचकुला वासियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि मतदाता सही फैसला करेंगे। सोनीपत नगर निगम के महापौर और 22 वार्ड से नगर निगम सदस्य के चुनाव के लिए भी लोग उत्साह से मतदान कर रहे हैं। सोनीपत नगर निगम चुनाव के लिए महापौर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी पूर्व महापौर राजीव जैन ने अपनी पत्नी पूर्व मंत्री कविता जैन बेटे दीवान के साथ मतदान किया। वहीं कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी कमल दीवान ने अपनी पत्नी मेघा दीवान के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी प्रत्याशी मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। अंबाला में भी लोग लगातार अपने मतदान के मौखिक अधिकार को उत्साह के साथ प्रयोग कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक अंबाला में 25% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। अपना वोट देने आए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि वोट सबका संवैधानिक अधिकार है, अपने इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान केंद्रों पर आकर लोकतंत्र के इस पर्व में वोट डालकर भागीदारी करने की अपील की। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कल पवित्र ब्रज 84 कोस यात्रा के पलवल जिले में पड़ने वाले विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए वाटर कूलर का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल व अन्य अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि 17 मई को शुरू होने वाली इस यात्रा में श्रद्धालुओं को पलवल जिले से गुजरते समय कोई असुविधा न हो, इसलिए यह निरीक्षण किया गया है।
2: हरियाणा सरकार का आदेश है कि इस यात्रा में किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी कमियां है रास्तों में, कई गड्ढे हैं, कई सफाई की जरूरत है, उनको दुरुस्त किया जा सके। ये यात्रा बहुत अच्छे से हो, चालू ढंग से ले और कोई भी एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए हमने निरीक्षण किया है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
1: वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर कल भिवानी के महाराणा प्रताप चौक गेट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता नेत्रपाल भिवानी एवं उनके साथियों ने किया। सबसे पहले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ व आयोजकों ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं बल्कि राष्ट्र स्वाभिमान के प्रतीक हैं, जिनकी वीर गाथा सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जींद के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल 11 मई को जयंती देवी मंदिर में जिला स्तरीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन होगा। इस दौरान धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत गुजरात के सोमनाथ में आयोजित राष्ट्रीय समारोह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी प्रसारित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि स्थानीय शिव चौक से जयंती देवी मंदिर तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए भी भजन कीर्तन, ओंकार जाप और शिव तांडव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। पलवल पुलिस की अपराध जांच शाखा ने कल अवैध देसी कट्टा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच अधिकारी जगमिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान पलवल के गांव बिडोकी निवासी

प्रेम, त्याग और समर्पण की मूरत माँ सभी को मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, ऐसा हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं। परिवर्तनशीलता और उसकी अनिश्चितता और समय की परिवर्तनशीलता, उसकी अनिश्चितता और जीवन पर उसके गहरे प्रभाव का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक चित्रण है आज की इबारत। समय ऐसा संगीतकार है जो लगातार धुन बदलता रहता है। दुनिया का मेला इसी धुन पर बिगड़ता संवरता है। समय का गीत कभी सपनों की गूंज है तो कभी निराशा का वीराना। आशा और निराशा से इन्होंने मिलाया, बिल्कुल सही बात है। आशा और निराशा भी होती है जब कुछ मिलता है या जब कुछ खो जाता है। ये भी कहा है कि ये जीवन के द्वंद्वों, मिलन और जुदाई, बहार और खामोशी की धुन छेड़ता रहता है। ये माँ की लोरी जैसा ममतामयी भी हो सकता है और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। और भी कुछ बातें लिखी हैं, शब्द बताए हैं, समय हर पल सिलसिले ख्वाब, मेला मिलन बहार पायल झनक तन्हाई, माँ लोरी दिल के तराने या फसाने सुर हो सकते हैं। वाह क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय के साथ बदलते संगीत की बात कितनी सही है। वाह बिल्कुल सही है, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़कर आप बराबर अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसा लगता जा रहा है ये सफ़र। तो अब दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

बदली बदली सी इस दुनिया का ये जो राग है ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी। लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज़ आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है

ये संदेश पढ़ लेती हूँ। ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है। बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए टेक्स्ट को लेकर अगर आप उसके भाव पर जाएंगे तो आपको शायद उसी के हिसाब से, अगर आप प्लेलिस्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, उस टेक्स्ट में से आप जो बातें हो रही हैं उन बातों में हिस्सा लीजिए और कार्यक्रम में उस शब्द को चुनकर, जो बहुत ही ख़ास शब्द दिख रहा है उसको चुनकर अपनी पसंद का गीत सुनिए। अगर आपकी पसंद इस प्लेलिस्ट से मिलती है जो कि गाने हमने चुने हैं आज के इस इबारत से। हाँ, घड़ी के बारे में एक और संदेश है। मेरे दादाजी ने मुझे सुइयों वाली घड़ी लाकर दी थी। सबसे पहले 1984 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर घड़ी मिली थी। क्या बात है, समय की और घड़ी की बात हो रही है। 1975 में नौकरी कर 250 रुपये पहली बार कमाए और 245 रुपये की GMT सोना घड़ी लेकर हाथ में बांध कर समय देखा, जिसमें सेकेंड मिनट घड़ी घंटे के कांटे होते हैं। जी हाँ, पहले तो ऐसी ही घड़ी होती थी। एक और साथी बता रहे हैं कि मेरे को घड़ी देखना मेरे बाबूजी ने और बड़े भैया दोनों ने एक बार में सिखाया था। और ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद पूछा कि बता घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला 1:30 बजे हैं। तब बाबूजी ने समझाया कि अभी 1:30 बजे हैं। शुद्ध हिंदी में 1 और 2 के साथ जब आधा जोड़ा जाए तो 1.5 और 2.5 कहा जाता है। जी हाँ, ये 1:30 1:2 का चक्कर जो है ये कई बच्चों के साथ होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि पहले के ज़माने में चाबी वाली गोल अलार्म घड़ी घड़ी थी। सबसे पहले मेरे दादाजी ने उसे घड़ी में समय कैसे देखा जाता है ये सिखाया था। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि बचपन में मेरी माताजी ने मुझे मुंबई से घड़ी लेकर दी थी और पहचान कराई थी, जिसमें सुइयां थी और चाबी रोज़ घुमाना होता था। पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी थी, ये भी एक साथी ने बताया है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे घड़ी की पहचान, मेरे नाना जी के घर दीवार पर एक ब्लैक घड़ी लगी थी, वो टिक टिक करती थी और जब घंटा होता तो तेज़ आवाज़ में टन की आवाज़ होती, तब मेरे नाना जी ने समय देखना सिखाया था। क्या बात है, समय की कितनी सारी यादें ताज़ा हो गई। और बात आज माँ की भी हो रही है, घड़ी की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। और जो समय है वो जिस तरह सबसे बड़ा शिक्षक होता है उसी तरह माँ भी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ये गीत सुनकर बताइए किस फिल्म का है।

भाई हमारे साथियों ने तुरंत ही कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गाना सुनकर ही समझ में आ गया है कि गीत गाता चल फिल्म का गाना है। बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए जिंदगी के इस सुरीले सफर में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिकटिक की आवाज़ सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नज़र उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी, वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियाँ भी आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर संगीत से सजा संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन गीत स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टन टन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब में से किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है, हो तो हमें बताइए और ज़रा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

वैसे एक श्रोता ने बताया कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत

बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज़्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में।

0: अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश, पर उस दिन स्कूल जाना जरूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में खराब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रस्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फ़ोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ। जी हाँ, घड़ी पर नज़र रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफ़र कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत, बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे। फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहते हैं कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मज़ा आता था। उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में। लेकिन एक संदेश और है। हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से। क्या बात। अपनी HMT के रिस्ट वॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद किया हमारे एक श्रोता ने, जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश है। आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी। दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और ना ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी। सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी HMT की। बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ। और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे तो मैंने बोल दिया 10 बजे, इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे। और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज़्यादातर घड़ियां रोमन लिपि में ही आती थी जो हमारे समझ में नहीं आती थी। अलार्म घड़ी रहती थी। जब मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी मिली थी। बाद में सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया है कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय देखना भी सिखाता हूँ क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूँ, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना। बताइए स्वर किसका है।
1: हा हा हा

फूलों का बुलबुल के दिया होने को है, आज फूलों का बुलबुल के दिया होने को है, आज थालों में तंदल आने को है, आज प्यालों में उबलन।

0: बहार बहार आज आई बहार।
1: सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिव हरी बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी, पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी, और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो खत्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने का एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन के ताला बनाने वाले पीटर हैनलिन ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी। क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बचकर उतने मिनट। और एक और संदेश में गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागड़ा नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ शायद छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूँ तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख भेजिए कृपया। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफर पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। इंसान जीना है, इस पल को जी ले क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा। क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा संदेश, अम्मा तो गोंद की तरह होती है जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है। भाई हाँ, सच में सारी ब्रह्मांड की माओं के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए ज़रा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज़ के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज़ है, अभी उस जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये गाना सुनिए।

फिल्म का नाम मेरे लाल, लता मंगेशकर की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है, वो किस्मत माले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे KL सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी, हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार बताइए कब कब। और एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए, सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुर हल पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन की वो शरारतें याद हैं, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती तब अचानक हवा में तैरती चप्पल रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है। उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना बताइए किस फिल्म का है और आवाज किन की है।

0: जंगल में मेरी दुनिया है तेरे आंचल में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत, सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भलाई हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ बीजा बगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखती थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आँखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

मेम साहब फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में माँ बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है माँ, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का कांटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15। घड़ी मिनट दोनों कांटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद का है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज़्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।

0: A doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants at the M. H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In another clash of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians at the Shahid Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur at 7:30 p.m. Yesterday, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs in Jaipur, chasing a massive target of 230 runs set by Gujarat. The host team Rajasthan got bundled out for just 152 runs in the 17th over. India Meteorological Department has forecast heatwave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart, and lungs. Lupus has no known cure and often put devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से

0: शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
0: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय तमिलनाडु முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के आठ विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोक भवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभासपाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वॉशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
5: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
1: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुनते हैं कालजयी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
7: चलो चलें।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना। आशा भोसले की आवाज में प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: ए लो बच्चो आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम। तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे।
1: बाप हमें मामा जी कहना तुमको पड़ा है नीचे उतरला।
0: अरे

0: मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी।

0: मामा जी नजदीक तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ना ना यूँ ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो।
0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी, दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता। एक तू ही क्या मुझ

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

रेडी है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। बड़ा ही सीआईडी है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का

ना कोई बिल्ला ना कोई नंबर, दफ्तर उसका नीला अंबर। नोट है उसकी पॉकेट बुक में सबका माल मसाला। बड़ा ही सी आई डी है वो नीली छतरी वाला।

हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन। हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला।

मोहम्मद रफी का गाया। औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

दिल से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मुहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना ये गाना, राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर में।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400

गीतों के गुलदस्ते सजाए आपका चहेता प्रोग्राम मन चाहे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत चुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत अब्बासी और शहनबाज अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

आए दिन बहार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई एक खत में क्या क्या समाया होता है, प्यार, इकरार, इंतजार और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लव इन टोक्यो फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन। इस गाने को सुनना चाहते हैं जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत, वरुण जरूड़का से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को, याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहा टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है, जो आ रही है इस गीत के साथ। आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक P.S. कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
2: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
3: कहिए माँ जी।
2: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
3: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
2: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
3: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
2: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
3: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
2: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
3: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
2: मेरी बात याद रखोगे ना?
3: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
4: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
5: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है, अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
4: लखपति? अरे क्या कह रहा है?
5: ये जरा गंभीर मामला है। हाँ? देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
4: लगता है मारी तू दारू पी कर आया है, अबे सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते के मौत पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
5: है, बहुत गहरा संबंध है, वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
4: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
5: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ, उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था, मैं छिप कर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
4: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
5: वही तो मैं सुन नहीं पाया, उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
4: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
5: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा, अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
4: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: आओ कंदस्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है।
0: क्या किया जाए कंदस्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो, तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भीड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। भगवान, शिव कामी अम्माल का लड़का मर गया।
0: क्यों स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो, जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो, जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूं बाबूजी, चाहता हूं। ये कैसी मजबूरी है, शिव कामी अम्माल मुझ पर मां के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी,

0: उमा जी
1: आओ, कंद स्वामी आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
0: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माँ जी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
0: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया, कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
0: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है, तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
0: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
0: कुछ नहीं माँ जी, यही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या? अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना, कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
0: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदल कर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है।
1: और क्या कहता, शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
0: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
1: हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
0: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है। सोच लो, ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
1: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार माँ के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ माँ
1: कौन है? अरे आप नानी नानी, देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी, आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो।
2: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।

0: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
1: माँ, तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
0: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
1: कंद स्वामी कौन?
0: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
1: क्या कह रही हो माँ, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
0: बेटा, तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला, तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
2: नानी माँ, आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
0: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला, जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर ले, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ मारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर
0: उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो। तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्हीं ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिया का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदू स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये। लेकिन सुनो, होशियार

0: कुली कुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: माँ, मदर, मम्मी, वेर आर यू? ओ सिली ओल्ड लेडी।
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला। क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई है, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्या सॉन्ग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: What nonsense, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए ये नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मुझे और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी, मुझे दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मुझे है, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओहो सिंगाराम। हेलो, हाउ डू यू डू? यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाक खाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूंछें और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस नासमझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चला आया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धन?
2: हाँ।
0: अंकल सिंगाराम, ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा? बदमाश चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहां जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
0: सिंगाराम तूने ये
2: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है। क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था। तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भाग कर किसी को कंद स्वामी के पास भेज, उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूँ।
2: माजी
0: है? ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ, अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है?

0: पापी, तूने मार डाला मेरे बेटे को, मार डाला।
1: क्या कहा माजी? ये कुमार स्वामी है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं, मैं भाग आया। और
0: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करोगे। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
1: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंदस्वामी, हम आ गए हैं।
1: कौन? इंस्पेक्टर साहब।
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुंचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
3: इसने मेरी बहन के बेटे को, मेरे भांजे को मार डाला है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
2: मैडम जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहां जा रहे हैं आप? रुकिए।
0: इंस्पेक्टर साहब, इसी श्रृंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी, इसी ने ही चाकू भोंका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भाग नहीं पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था?
0: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं तहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, तो श्रृंगारम एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
0: अरे अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा बेटा,
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
1: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये श्रृंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
0: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
1: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। माँ, मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।
0: बेटा!

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस गंध स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला, देखो तो कौन आया है। क्यों गंध स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
1: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
2: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता

0: और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
1: देखो गंदे स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
0: क्या कह रही हैं आप?
1: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये न समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
0: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
1: मैं क्यों माफ करूँ? तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
0: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
1: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: भाई, मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
1: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
0: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चमलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
2: जी।
1: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत

0: करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
1: ये लो।
0: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
1: हीरोइनें भी हैं,
0: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
1: अब
0: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लग गए थे, कास्ट्यूम पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चर मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
1: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहाँ,
0: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डार करके मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा, यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
1: कनेक्शन
0: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगा हूँ, 2-3 साल से रोज जा रहा हूँ, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
1: अरे गजब।
0: रमेश तलवार से, वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर भी, 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे यश जौहर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था, तभी उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मेरे को पाली हिल पे हूँ, वहाँ पर आए वहाँ पे। तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि यश जी के पास में जाता रहा, तो ऐसे अभी वहीदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं यश जी की पिक्चर कैसे करूँ, मैं उनका चेला हूँ। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं यश जी से बात करता हूँ, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूंगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यश जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा हाँ बेटा करो, क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यश जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे। नहीं नहीं नहीं, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी ड्रिप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली तभी यही है बिटवीन।
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं, कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। इनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।
1: ओ
0: इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन इप्टा के मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे, और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब
0: गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखने थे।

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप जी आ जाते बाजा लेके आते, और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, हनी ईरानी। हाँ,
0: तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उत्तर को ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहां पे बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहां जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ, और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो का बाकी देख लेंगे चीजें, अगर आप चाहे तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: ज्यादा हो, उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला, जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला, जिसलिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे, तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी जो बख्शी साहब को आप फीस देते नहीं, अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहा है जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ
0: लूंगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उतने पैसों में गाने भी फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया, तो गाने वाने अब था। उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो हो गया, बोले अब अगला स्टेप सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं है।
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग

0: सारे स्टार
1: दिलीप कुमार
0: सर, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए। पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देखे हैं आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, तो कर लो मान गए। यश जोश की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोश, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे
1: कहानी ढूंढ रहे
0: क्या बना वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग। तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया। उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज अ राइटर। उन्होंने कहा अच्छा, उनका रेट भी आधा हो गया, वो भी सोच रहे थे पिक्चर लेने का। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम
0: शुरू कर दिया
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, कभी पिक्चर बना दे वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट में यश चोपड़ा को भी सुना दूं
1: जी।
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट दे रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का,
0: दुनिया का आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरेन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर,
0: शेखर कपूर, सॉरी शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है, शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से, जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के यहाँ शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहां से, और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ, तो मैंने कहा भाई अब मैं दो तीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा था उस वक्त, तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 साल टीम से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने, तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहां पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा,
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुने इतनी देर सुन सकता हूँ इतने, जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 24 सीन तो पूरे क्लियर थे वो सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक सजेशन जो आए, इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह

0: जो खरीदूंगा तो मैं 10 बजे छत पे ला कर दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो 13 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: ये ऐसे फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी जुकर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी थे। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुकर का भी शेयर था 5%।
0: बाबा
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सती राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो जश जी ने 10% करवा दिए, क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% KG उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरी साहब।
0: जी जी जी, गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए, मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे, उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था खयाम साहब, ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी, जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाने भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके, और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए, उसके बाद वो चाहते थे बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
0: प्रदीप को लेके,
1: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही, लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे, तो भाई उनको वो सब रिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
0: दिलीप साहब को बता,
1: दिलीप साहब को बता दी।
0: ओहो, गजब,
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
0: हाँ,
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओ, क्या बात है,
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी वो वहाँ के थे पिशावर के
0: जी,
1: उस तरफ के, और मैं बफा एपटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
0: अच्छा
1: यारा,
0: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
1: सागर यारा
0: किताब में आई,
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा, जरूर करूंगा, उस तरह प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूंगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उनसे बैठूंगा पूरा, मुझे क्यों चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं कहूंगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
0: और इस तरह फिल्म दुनिया बनी।
1: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ। बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता उस।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ।
0: जी
1: है, फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है।
0: जी।
1: जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया ना उनको, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था।
0: जी।
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी।
0: जी।
1: तो उनके पास, मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, दो एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर, उनका मेरे पास श्री देवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ, फिर आ गए। उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
0: था,
1: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने।
0: जी।
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो,

0: लेकिन पूरा नहीं था, एक होता ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म है, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटे हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकती और डेटे पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात। वो सोचते हैं अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
1: जी,
0: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोला थे, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
1: ओके।
0: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहां आए बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बातें,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय होगी। दोनों खुश थे और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों चाहे, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
1: वाह,
0: ओके हो गया सब। हम निकले, हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई नीचे, जो लिफ्ट से नहीं आए सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब मालिक वो आ गया, रेमनॉड मालिक उनका वो आ गया और लोग जमा हो गए। हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहां बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहाँ पीछे सीट पे लिटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहाँ रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: वो प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही मेरा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ, वो रिलीज होनी चाहिए। अब था वो रिलीज के चक्कर में, बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मिटिए करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारे फिल्म में भाग्य, सर्कमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत याद करते
1: देखते हैं। नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा, ये नहीं करूंगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग, चलो जाओ आते हैं चलते हैं, शिमला शूटिंग हो, वहाँ नॉर्थ में शूटिंग हो के, जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीजें उन्होंने किसी चीज में कमी नहीं की। क्या हुआ, सब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइस ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले से प्रॉब्लम थी उनकी।
2: जी जी जी।
1: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिए।

युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे युवा फरमाइश के अलावा हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के अंतर्गत मेरे सपनों का भारत विषय पर। गीता संदेश कार्यक्रम सुनिए 6:20 पर। आज के इस कार्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 64 से 68 तक की व्याख्या करेंगे डॉक्टर सुरेश कुमार।

फिल्म संगीत सुनिए शाम 7:30 बजे जय जवान कार्यक्रम में। गैर फिल्मी रचनाएं हम पेश करेंगे गुलदस्ता कार्यक्रम में शाम 7:45 पर।

हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आप सुन सकेंगे रात 8 बजे। प्रस्तुति अमरीक सिंह की होगी। रात्रि 8:30 बजे हम पेश करेंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। रात 9:15 पर कार्यक्रम होगा आपके लिए छाया गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9:30 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने विविध भारती केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आज रात 10 बजे सुनिए फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम, प्रस्तुत करता विनय सिंह खुराना। समाचार रिले होंगे शाम 6 बजे, 6:05 पर, उसके बाद रात 8:45 पर, रात्रि 9 बजे, रात्रि 11 बजे और 11:05 पर, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से शाम 6:10 पर रिले किए जाएंगे। ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:05 हुए हैं। आइए सुनें कार्यक्रम गाने नए पुराने।

गाने नए पुराने कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं ऐसे गीत जो पुराने दौर में रचे गए और वो भी गाने जो आज के दौर के हैं, यानी पुराने और नए दौर के फिल्मी गाने इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मधुर गीत के साथ।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत हमने सुना फिल्म मन मंदिर फिल्म से। आइए अब सुनते हैं धुरंधर 2 फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार शाश्वत सचदेव।

दोस्तों, ज्योति नूरा की आवाज़ में आपने गीत सुना। और आइए आप सुनते हैं बीते दौर का बहुत सोना गीत। सोनी महिवाल फिल्म का ये गाना है, आशा भोसले की आवाज़ में। संगीतकार हैं अनु मलिक।

और दोस्तों अब सुनते हैं जीनियस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। कुमार का लिखा गाना है, संगीतकार हिमेश रेशमिया।

और आइए दोस्तों, अब इस कार्यक्रम के आखिर में सुनवाते हैं आपको एक नज़र फिल्म का गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की। मजरू सुल्तानपुर के लिखे गाने को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों, पुराने नए गीतों के इस सुंदर एहसास के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इसी दुआ शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी खुश रहें अपने जीवन में, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और सुनते रहें आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का प्रसारण। प्रदीप को दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से। नमस्ते।

अभी आप सुने थे कार्यक्रम गाने नए पुराने, आकाशवाणी के हम कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 बजे हैं, आइए सुनते हैं युववाणी कार्यक्रम।

युवाणी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को प्रदीप का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे हमारे युवा साथियों की पसंद के फिल्मी गाने, क्योंकि आज है युवा फरमाइश। और साथ ही हम आपके साथ चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के अंतर्गत मेरे सपनों को भारत विषय पर। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश के गाने के साथ। क्योंकि फिल्म का ये गीत है उदित नारायण अलका याग्निक के स्वर में। समीर ने गीत लिखा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया। इस गीत को सुनने के लिए हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश आई है। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ाने, अर्चना ताई गोड़ाने, हीरामन शेड़े, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोड़ाने। गांव टोरोवाल पंजाब से गगनदीप थाड़ी, तृप्ता कुमारी थाड़ी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत प्रेम, डॉक्टर वामिका और वाणी थाड़ी। शाहजीनगर देवलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश आई है हमारे इन श्रोताओं के। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता भाकरे। भोपालगढ़ राजस्थान के श्रोते हैं धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, एमडी फिजान, एमडी फरहान, समीरा आजमीन गुड़िया। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से फरमेश भेजी है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरु कीरत, गुरुशब्द सिंह राहुल। जगोड़ी गांव जिला यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरबीजू, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, मनराज। गांधी चौक बाढ़ में राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास मैसेज भेजा है पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये दो गाना उदित नारायण अलका याग्निक के स्वर में।

सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: युवा साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्षों के अंतर्गत मेरे सपनों को भारत विषय पर। दोस्तों, हमारा जो देश है ये विविधताओं से भरी हुई संस्कृतियों वाला देश है। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहाँ हिमालय की ऊंचाइयां हैं तो सागर की गहराइयां भी हैं। यहां विज्ञान की उड़ान भी है और संस्कारों की जड़ें भी मजबूत हैं। दोस्तों, हम उस भारत के वासी हैं जिसका सपना हर भारतीय अपनी आंखों में सजाता है। मेरे सपनों को भारत, यानी आप सबके सपनों को भारत, एक ऐसा भारत जहां हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर काम को जहां इज्जत मिले, हर हाथ को जहां काम मिले, हर बच्चे को शिक्षा, हर नागरिक को सम्मान मिले। मेरे सपनों का भारत ऐसा भारत है जहां जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की सीमाएं लोगों को बांटती नहीं है, बल्कि ये जो विविधताएं हैं ना हमारे, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग जो भौतिक सुंदरता है कुदरत की, ये हमारे देश के लोगों को बांटती नहीं, बल्कि ये हमारे देश की सुंदरता है, हमें जोड़ के रखती है। आज हमारा देश भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, और ये देखें कि युवा शक्ति ही वो ताकत है जो देश को नई ऊर्जा दे सकती है, नई दिशा दे सकती है। यदि हमारे युवाओं को सही शिक्षा, सही अवसर, सही मार्गदर्शन मिले तो भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश बन सकता है। आज अगर हम तकनीक में अपने आप को देखें तो दुनिया में तकनीक की दृष्टि से हमारे देश की तकनीकी तरक्की ने हमारे देश को आगे पहुंचा दिया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं देश को नई पहचान दे रही हैं। गांव देहांतों तक इंटरनेट पहुंच रहा है, किसान तकनीक से जुड़ रहा है, हमारे विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यही तो है हमारे सपनों का भारत, और हम इसे फलता फूलता देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश भारत ऐसा भारत बने जहां बुजुर्गों को सम्मान मिले, महिलाएं जहां सुरक्षित हों, आत्मनिर्भर हों, और बच्चे भय मुक्त वातावरण में अपने सपनों को उड़ान दे सकें। जी हाँ, यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, और हम चाहते हैं कि जो सपनों का भारत है, हमारे सपनों का भारत, वो ऐसा भारत बने जो दुनिया देखे कि हाँ, भारत कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। दोस्तों, इस बात के लिए हमें कोशिश करनी होगी, साथ मिलकर चलना होगा, एक रहना होगा, मजबूत रहना होगा, और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए अपने प्रयास मजबूत करने होंगे। तो ये जानकारी हमने आपके साथ साझा की, चर्चा की आपसे, और उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों से सहमत होंगे। तो चलिए अब सुनते हैं छोटे मियां बड़े मियां फिल्म का गीत।

इरशाद कामिल ने गीत लिखा, संगीतकार हैं विशाल मिश्रा और आवाज भी विशाल मिश्रा की है। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सब, अनारकली बाजार जगराउंड से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, जिला किशनगंज बिहार से रविदास मोहन दास, रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, गांव सीली कला से जयसिंह कंबोज, विजयंत कंबोज, रिदम निश्चय कंबोज, जयपाल धीमान, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा की फरमाइश हमारे पास आई है, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, बिना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से फरमाइश आई है राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना और इनके परिवार के सदस्य, मुरादगढ़ गांव से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भूवेश कुमार कंबोज, मेहरनगर उमरखेट से अभिजीत गवानकर, राही सरिता गवानकर, प्रणीता सिद्धांत गवानकर, प्रिंस एकांश गवानकर और टुक टुक, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानिया और निमित आहुजा की फरमाइश पर सुनते हैं बड़े मियाँ यानी छोटे मियाँ बड़े मियाँ फिल्म का गीत।

और दोस्तों, इस गीत के बाद हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत गदर 2 फिल्म से। और इस गीत के

0: फरमाइश की है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। उगाला गांव जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन इनके परिवार के सदस्य। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतु, निहारिका, हार्दिक वंशपत्ता। रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, सुनीता शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा खोड़के। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। गुजरात गांधी गांव से फरमाइश आई है प्रवीण सोनी, कलावती सोनी। कांडला बंदरगाह से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल। मुगलपुरा बाग से बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। नथाना गांव पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस, सीता और गीता। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पंकी, लवली, आरती अरोड़ा। गन डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू, परवेज बेगम, इमरान अनाज, नवाजी शेख, दानी शेख, अमन, आफ्रीति। सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली नारंग, सुरेश नारंग। आप सबकी फरमाइश पर गदर 2 फिल्म का गाना हम सुनेंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद।
1: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
2: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
1: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
2: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
1: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
2: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
1: आकाशवाणी
2: विश्वास की आवाज।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: तो श्रोताओं सुनिए गदर 2 फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह की आवाज में।

और दोस्तों आइए इस कार्यक्रम के आखिर में जो गीत हम सुनवा रहे हैं हाउसफुल टू फिल्म का एक गाना है शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा यह गाना संगीत से संवारा है साजिद वाजिद ने और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश की है आप सबने सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव अपर्णा नामदेव अभिषेक नामदेव एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोध निखिल कांगड़ा तन्वी बोध अंकित कांगड़ा फरमाइश आई है करणवीर हाउस भूचो कैचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा मंजीत कौर जोड़ा करणवीर दपिंदर वरिंदर सिमरन एकम दमन और अभिजोत हीरावाली फजल का पंजाब से सुभाष गुदारा मिमला गुदारा इंदु पार्वती हिमांशु गुदारा और धनौरी तिलेवाला से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया अयान बाबू आप सबकी पसंद पर सुनते हैं हाउसफुल टू फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ क्षण में हम सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:10 से हम प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. The event held at the Hyderabad International Convention Center was attended by Telangana Governor Shri Pratap Shukla, Chief Minister A. Revanth Reddy, Union Minister G. Kishan Reddy and other senior leaders. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the center, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour.
1: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
2: Among the major projects unveiled include PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. Built at an estimated cost of around 1700 crore rupees, it is the country's first fully operational PM Mitra Park and is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with six BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, two ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibhen Patel administered the oath of office in secrecy at the ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. Former BJP State President Bhupendra Chaudhary and BJP leader Manoj Pandey were inducted as cabinet ministers. State ministers Ajit Pal Singh and Somendra Tomar were promoted and given independent charge. The founder of Tamilaga Vetri Karagam, TVK actor turned politician C. Joseph Vijay has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered him the oath of office in secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Nine ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has congratulated C. Joseph Vijay on taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. In a social media post, Mr. Modi said the central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of people. He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Union Home Minister Amit Shah today reviewed the country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of central government agencies, reviewed early warning systems, resources deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimum loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में नगर निकाय का आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हिसार में 72%, सांपला में 71% और उकलाना में 69% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कल पूरे उत्साह के साथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। हरियाणा के शिव मंदिरों में भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा का 7 दिन का रिमांड दिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में नगर निकाय का आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और अन्य कई स्थानों से मिली जानकारी के अनुसार मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहा। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। चुनाव संपन्न होने से पहले मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार उकलाना नगर पालिका के लिए 69% मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने बताया कि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सभी स्थानीय निकायों में 50% से अधिक मतदान हुआ। नगर निगम अंबाला में 50%, हिसार में 72%, रोहतक के सांपला नगर पालिका में 71%, पंचकुला में 50%, नगर निगम सोनीपत में 45% तथा रेवाड़ी में 60% और मतदान दर्ज किया गया।
1: अभी तक जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो टोटल वोटिंग है वो 50% का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। अंबाला में अभी तक जो रिपोर्टेड है 50%, हिसार में 72%, पंचकुला में भी 50%, रिवाड़ी 60%, रोहतक 71% और सोनीपत में 45% अभी तक वोटिंग रिपोर्टेड है। और ये अभी और काफ़ी बढ़ने की संभावना है, बिकॉज जैसे जैसे रिपोर्ट अपडेट होगी तो ये बढ़ेगी। अभी
0: उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे तक जो लोग लाइनों में लगे थे उनको वोट डालने दिया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि शाम के बाद मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। फरीदाबाद के तिगांव उपमंडल के गांव शाहूपुरा खादर में आयोजित पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए। प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार क्षेत्र का दौरा कर स्थिति पर नजर बनाए रखी, जिससे मतदाताओं ने बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ग्रामीणों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। शाम 4 बजे तक कुल 80.3% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला कर

0: प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृह मंत्री शामिल होंगे।
1: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: भगवान शिव से जुड़े जो 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। सोमनाथ अमृत पर्व पर अम्बाला छावनी स्थित प्राचीन हाथी खाना मंदिर में भी कल एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी होगा। कार्यक्रम में कलश यात्रा निकाली जाएगी और प्रमुख संतों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा भगवान शिव शंकर द्वारा समुद्र मंथन व शिव तांडव के साथ साथ भगवान शिव पर आधारित गीत की प्रस्तुति भी दी जाएगी। फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी के शिव मंदिर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आयोजन को सफल एवं व्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण और उससे जुड़े राष्ट्र गौरव के विषयों को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम की खास बात यह रहेगी कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ से तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र से लाइव संबोधन भी होगा। इसके लिए लाइव प्रसारण की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ सकें। उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, पेयजल, बैठने और यातायात प्रबंधन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हिसार आकाशवाणी केंद्र में सुगम संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गायक सुमेश जोशी ने प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम प्रमुख पवन कुमार ने बताया कि आकाशवाणी की समृद्ध विरासत को लोगों तक पहुंचाने के लिए 90 वर्ष पूरे होने पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी 17 तारीख को आकाशवाणी हिसार में एक मैराथन भी आयोजित होगी, जिसमें आकाशवाणी की समृद्ध विरासत को लोगों के सामने लेकर जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार यह लोगों की आवाज बनी और किस प्रकार देश के लोगों ने इसको अपनाया। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में नगर निकाय का आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हिसार में 72%, सांपला में 71% और उकलाना में 69% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: FMX 1.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। गीता संदेश कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की श्लोक संख्या 64 से 68 तक की व्याख्या। व्याख्याकार हैं डॉक्टर सुरेश कुमार।
3: गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे द्वितीय अध्याय के स्लोक

0: संख्या 64 से आगे की व्याख्या। श्लोक संख्या 64, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। विधेयात्मा अर्थात स्वाधीन आत्मा वाले तो राग द्वेष अर्थात आसक्ति और ईर्ष्या से रहित अपने वश में रहने वाली इंद्रियों के द्वारा विहित विषयों में आचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। श्लोक में विधेयात्मा पद साधक का वाचक है। साधक की सभी इंद्रियां उसके अधीन रहती हैं। उसके अंतकरण से राग द्वेष प्रेम आदि नष्ट हो जाते हैं। वह अंतकरण में प्रसन्नता को प्राप्त कर ईश्वर में रमण करता हुआ लोक में शास्त्र सम्मत आचरण करता है। साधारण मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती, जिस कारण से वह राग द्वेष क्रोध ईर्ष्या आदि से परिपूर्ण स्वतंत्र और स्वच्छंद रूप से व्यवहार करता हुआ ईश्वर साक्षात्कार से वंचित अंतकरण में सांसारिक सुखों और दुखों का उपभोग करता है। अतः पुरुष को संसार में परम तत्व के साक्षात्कार और अंतकरण की प्रसन्नता के लिए इंद्रियों को वश में कर साधक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। अंतकरण की प्रसन्नता से ही आगे का मार्ग प्रशस्त होता है, जिसका अगले श्लोक में वर्णन है। श्लोक संख्या 65, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि प्रियवतिष्ठते। प्रसादे सति अस्य सर्वदुःखानां हानि उपजायते हि यतः प्रसन्नचेतसः बुद्धि आसु प्रियवतिष्ठते। पूर्व के श्लोक में कहा गया कि विधेयात्मा राग द्वेष से रहित अपने वश में की गई इंद्रियों से विषयों में आचरण करता हुआ अंतकरण में प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अंतकरण की प्रसन्नता के कारण विधेयात्मा पुरुष के सभी दुखों की हानि अर्थात सभी कष्टों का नाश होता है, क्योंकि प्रसन्न मन वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। यहाँ अर्जुन साधक है और भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें सिद्ध बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में श्लोक संख्या 66 की व्याख्या प्रस्तुत है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतो शांतिर शांतस्य कुते सुखम। अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति च अयुक्तस्य भावना न अभावयत शांतिश्च न अशांतस्य सुखम कुतः स्यात्। अयुक्त अर्थात असमाहित चंचल अर्थात वह पुरुष जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं हैं, ऐसे असमाहित पुरुष की बुद्धि नहीं होती, आत्मज्ञान नहीं होता, क्योंकि निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। अयुक्त अर्थात असमाहित पुरुष की भावना नहीं है। इसका अर्थ है कि चंचल व्यक्ति में भक्ति ध्यान आत्मनिष्ठा नहीं होती, और जिसके पास भक्ति भावना नहीं होती ऐसे भावना रहित पुरुष को भक्ति भाव के अभाव में शांति नहीं होती, और शांति रहित व्यक्ति को सुख कहाँ अर्थात सुख कभी नहीं प्राप्त होता। अतः सुख प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक बुद्धि व भक्ति भाव का होना आवश्यक है, जिसके लिए मनुष्य को जीवन में प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक संख्या 67, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम्यवाम्भसि। हि यतः विषयेषु चरताम इंद्रियाणाम यन्मनः अनुविधीयते तत्मनः अस्य विवेकिनः प्रज्ञां हरति अम्भसि वायुर्नावमिव। विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय का अनुकरण करता है वह इंद्रिय उस परम तत्व से न जुड़े हुए अर्थात असमाहित चंचल पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है। जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यह बतलाया गया है कि उदाहरण में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में मन और वह इंद्रिय है। जलाशय संसार रूप समुद्र है और जलाशय में भरे हुए जल के स्थान पर इंद्रियों के विषय हैं। जल में जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है, या तो पथ भ्रष्ट कर भीषण तरंगों अर्थात लहरों में भटकाती है, या अगाध जल में डुबो देती है। संसार में मनुष्य मात्र की भी यही गति है। इंद्रियों के विषय उसे सन्मार्ग से भटकाते हैं अथवा उसे विषयों में डुबोकर पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। योगी पुरुष चतुर मल्लाह की भांति अथाह विषयों वाले संसार में अपनी जीवन नौका को ईश्वर रूपी किनारे तक ले जाता है। इस प्रकार अयुक्त पुरुष की बुद्धि के विषय में कहकर पुनः श्री कृष्ण जी स्थित प्रज्ञ की अवस्था का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहितानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महान अर्थात बड़ी बड़ी विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं अर्थात नियंत्रण में कर वश में की हुई हैं, उसी पुरुष की बुद्धि स्थिर है। विषयों की आसक्ति से रहित होने पर ही जब मन और इंद्रियां सब ओर से हटकर योगी पुरुष के वश में रहती हैं वह निग्रह की अवस्था है। उसी अवस्था में योगी पुरुष की बुद्धि स्थिर रहती है। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 64 से 68 तक व्याख्या सुनी। सभी का धन्यवाद।
1: ये था हमारा आज का गीता संदेश कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 64 से 68 तक की व्याख्या। व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर सुरेश कुमार। FM बैंड 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 6:30 बजे हैं। आइए सुनते हैं थारे संदेश मारे गीत कार्यक्रम।

कार्यक्रम थाय संदेश मारे गीत इस कार्यक्रम के सभी सुनाने के दारे की राम राम सात दिन रविवार और कार्यक्रम है थाय संदेश मारे गीत। उस दिन हम लाए आपके फरमाइश के हजारवीं फिल्मी गीत भजन रागणी कलाकार। बस आपके संदेश मार तक पहुंचने चाहिए, समझो आपके पसंद आप तक जरूर पहुंचेगी, बशर्त है कि हमारे पास आपके पसंद कलाकार रागणी फिल्म भजन हो। बाकी हमारा प्रयास है कि हम आपकी पसंद जरूर पूरी कर सकें, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम है थारे संदेश मारे गीत। तो चला कार्यक्रम की शुरुआत।

इस बसंत समाचार था। आप सब न आप हैं गांव ध्यांगला कुरुक्षेत्र से मांगीराम सैनी, राजपाल बलबीर सैनी व उनके परिवार के सदस्य। और संदेश हैं जाखोल से संबुद्याल विमला योगेश दीपक कुमारी पूजा व उनके परिवार के सदस्य।

0: न्याय कटोरे काजल डोरे, मैं तो तन मन वार गया। फिल्म थी चंद्रावल और सुनना चाहता आप सब ना, जेवर हिसाब से वीरेंद्र सुरेंद्र शमशेर व उनके परिवार के सदस्य। और ये संदेश है राम सावला सहारनपुर से ब्रजपाल श्यामवीर पूजा मोनी सोनू व उन्ती देवी। और कार्यक्रम था संदेश हमारे की जाएगा थोड़े से विराम के बाद।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
1: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत,
2: वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: देखो नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर।
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
6: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: आफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम था संदेश मारे गीत और इसमें मैं आपका अपना साथी गिरधारी और यह कार्यक्रम की अगली पेशकश।

सिंगर डोर के घूमना चावे साले के घरे आली बड़ी बडेरी न्यू चावे आज दे लो चिक चिक गाली सास सुसर न्यू चावे द्या की राम करे रखवाली सास सुसर न्यू चावे द्या की राम करे

સાથે દિવસ સબ કી મનસા ઓન્યારી ન્યારી इस लाइन तो आवाजी थी ज्ञानी राम ने और इस कार्यक्रम की वह जो अगली पेशकश है इसी कार्यक्रम की उन दोनों की माता मुनि जी लिखन में इस तरह है। ये है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय मोहबिया कविता मोहबिया कुंडलेश्वर योगेश दिलीप परदेशी व उनके परिवार के सदस्य। और ये है खुर्जा उत्तर प्रदेश से त्रिवराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अंकुश अरोड़ा खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू मल्होत्रा भावना मल्होत्रा अनिल कटारिया व उनके परिवार के सदस्य। और ये हैं उगाड़ा जिला अम्बाड़ा से राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती राघव हरमन व उनके परिवार के सदस्य।

0: कार्यक्रम खाई संदेश हमारे गीत जाएगा एक छोटे से विराम के बाद।
1: ये देख कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई
1: दिखा हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
6: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल होंगे चोरी।
3: थैंक्स बब्बू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
4: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: असली नोट से क्यों खेल रहा है
2: ब्रो? ये फटा है। सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को
1: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ,
2: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
1: आज ये कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: पापा, लाइए 3,000।
5: क्यों भाई?
4: मेरी पॉकेट मनी।
5: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
4: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
5: है?
4: ए नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
5: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
4: अपना मोबाइल लाओ,
5: ले ले।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: कार्यक्रम थर संदेश, हमारे गीत में आपका स्वागत। मैं आपका अपना साथी गिरधारी।

सकर्म से होते जे दोने फरमाए

ऊंच नीच कर्मों से होते हैं। ज्ञान का अर्थ मैंने भी और सुनना चाहता था, आप सब लोग आप हैं मिर्जापुर कुक्षेत्र से निष्पाक विमान कृष्णा राहुल कमल शुभम प्रियंका आचल कुंज प्रवीण चिराग रजत राजेश धीमान व उनके परिवार के सदस्य संदेश हमारे पास आए हैं। मुरादगढ़ करनाल से रमेश माखना रमेश कम्बोज पिंकी वंश भूवेश कम्बोज व उनके परिवार के सदस्य। कलेरा मुला पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम गीतू निहारिका हार्दिक वंश बत्ता व उनके परिवार के सदस्य। और ये जो संदेश हमारे पास है ये है तेजमवड़ी अम्बाड़ा से बंसरा संधु व उनके परिवार के सदस्य।

0: कार्यक्रम की जो अगली पेशकश है वो इन सब साथियों की फरमाइश पर ये है कि ठाणा कैथल से करतार सिंह डांडा, सुमन खुशी दिव्य डांडा व उनके परिवार के सदस्य, और ये है योगी मोला बड़ा जिला अम्बाड़ा से रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर, गुरसबद व उनके परिवार के सदस्य। संदेश हमारे पास जो आया है, भाई ने नाराजगी तो लिख दी कि नाराज है और आपने हमारे नाम पूरे नहीं पढ़े, लेकिन मैंने बताया कि नाम कौन से नहीं पढ़े इस संदेश में, नाम तो कौन नहीं आए किसी के भी, वो देख लेंगे चलो। और आग्रह कस्बा बराड़ा जिला अम्बाड़ा से रवि कुमार, राहुल रंजीत को, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत व उनके परिवार के सदस्य। और एक और संदेश हमारे पास है, ये है ढाणी कुतुबर तहसील हंसी जिला हिसार से रामधारी गुज्जर, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप, बेबी कीर्त व उनके परिवार के सदस्य। अभी कई बार वो है कि आपकी चिट्ठी मेरे पास सही से नहीं पहुंच पाती। और ये है राजकुमार निरंकारी, अंशुल, अवनी, जोहड़ माजरा, बाकी ना जोहड़ माजरा कला इंद्रिय से, और ये इन सब की फरमाइश पे आ गई।
1: तेरी तायस पीतस

एक साथी की शिकायत है जिसका लास्ट में जो फोन नंबर है 26450, देखें कि हमारे नाम नहीं बोले गए। तो साथी हम किस तक कोई नाराज नहीं है, हर श्रोता का नाम लें, जितने नाम हमारे पाए हम उतने बोला। हाँ किसी कारण था किसी का रह गया हो तो उस तम हर जोर का दिल तक माफी मांगा और भाई आठ का नाम लिख के भेज दो, कार्यक्रम में भी शामिल कर लेंगे, ये भी कर सकेंगे क्योंकि लेकिन बार पर जो नाम आए होंगे हम वहीं बोलेंगे। और हमारा प्रयास तो होता है कि हम लोग तो टेक्स्ट मैसेज हैं, फिर भी हमारा प्रयास ये रहे कि हम आपके जो व्हाट्सएप के मैसेज है उन लोगों हम कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करें। तो अगर किसी का नाम रह गया हो तो दिल से आज जोड़ के वास्ते माही मांगा अटका भेज दो, फिर शामिल कर लेंगे। और ये कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

ऑफर में हमारे पास एक संदेश और आया है। ये है गांव जगोड़ी यमुनगर से रणधीर सिंह बांगर गुरमेचो युगम वीरेंद्र व उनके परिवार के सदस्य।

अभी आप सुन रहे थे थारे संदेश मारे गीत कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान।

जय जवान कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम अपने सभी सैनिक साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सैनिक दोस्तों, हमारे देश में बहुत कुछ खास है ना? यहाँ हिमालय का साहस है, गंगा की पवित्रता, किसानों की मेहनत और आप सभी की वीरता। वो किसी ने कहा है कि मेरे देश की मिट्टी में खुशबू वफाओं की है, यहाँ गूंजती है बातें प्रेम की और दुआओं की। सीमा पर जवान खड़ी हैं बनकर मजबूत दीवार, तभी तो सुरक्षित रहती है खुशियाँ परिवारों की। जी हाँ सैनिक भाइयों, हम आपके हौसले का, आपके जज्बे का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपकी इसी शिद्दत से हमारी सरहदें सुरक्षित हैं, तभी तो हमें हमारे देश की हर बात निराली लगती है। लीजिए सुनिए जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मोहम्मद रफी की आवाज़।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सैनिक साथियों, रंग अनेक मगर दिल एक, यही है भारत की पहचान। हर रंग हमारे देश का एक उत्सव है, हमारे देश की शान निराली है। हमारे देश के त्यौहार, उनकी रंगत, उनकी रोशनी, उनकी मिठास, उनका रंग बेमिसाल है। और ये सारे उत्सव हमारे देश के तभी हम पर मेहरबान हैं क्योंकि हमारी सरहदें सुरक्षित हैं, हमारे सैनिकों के मानिंद। हमारी सरहदों पर रातों जागते हैं हमारे सैनिक, तभी तो हमारे बच्चे चैन से सोते हैं। हर मुश्किल में सीना तान कर हमारे सैनिक साथी खड़े रहते हैं सरहदों पर, अपने देश भारत को सुरक्षित रखने के लिए। वीर जारा फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर, गुरदास मान और उदित नारायण के स्वर में। जावेद अख्तर के लिखे इस गाने को संगीत से संवारा है संजीव कोहले ने।

ऐसा देश है मेरा, जिस धरती पर वीर जन्म लेते हैं वह धरती स्वर्ग कहलाती है। अपने भारत की हर धड़कन देशभक्ति गीत सुनाती है। तिरंगे की आन बचाने को जवान सरहदों पर डटे हैं, तभी तो मेरा भारत दुनिया में सबसे बड़ा है। दोस्तों, देश बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि देश हमें ना जाने क्या क्या देता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि हम देश को क्या देते हैं। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, देश में रहने वाली हर चीज को खुशी से महसूस करना चाहिए, देश में रहने वाले हर नागरिक से दिल से प्यार करना चाहिए और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में अपनी कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़नी चाहिए जब तक जीवन बाकी है। क्यों है ना? रोज सुनाए दादी।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी खुश रहेंगे अपने जीवन में, अपना ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। और हाँ, जो सरहदों पर खड़े हैं ना, उन्हें हम अपने दिल में बसा के रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे। अपने सभी सैनिक साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहते हैं सलाम।

अभी आप सुने थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय जवान FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है।

इस समय शाम के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को प्रदीप का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में गाई कुछ प्यारी प्यारी रचनाएं। देखना उनका कनखियों से

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: आप
4: डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: गुलदस्ता कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं एक और रचना उस्ताद मेहदी हसन की ही आवाज में।

इसी के साथ ही आज का गुलदस्ता कार्यक्रम समाप्त हुआ। अभी आप सुने थे गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम गुलदस्ता FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्रस्तुति अमरीक सिंह की।

0: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से प्रस्तुत साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आज के संक में विश्व अस्थमा दिवस, नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर एक दिवसीय सेमिनार। 6 मई से शुरू हो गई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी की परीक्षाएं, विकसित हरियाणा विषय पर प्रेरणादायक नीतिगत संवाद कार्यक्रम, समापन 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर। पर साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे विश्व अस्थमा दिवस के बारे में। साथियों, दिनांक 5 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। साथियों, विश्व अस्थमा दिवस पर हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं
1: डॉक्टर आशीष अनेजा, सीनियर फिजिशियन एंड डायबिटीज स्पेशलिस्ट, यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर कुरुक्षेत्र, यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र।
2: डॉक्टर साहब, आज दिनांक 5 मई को हम विश्व अस्थमा दिवस मना रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
1: जैसे कि आप जानते हैं कि 5 मई को हर साल हम विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। ये हर साल पहले मंगलवार को मई को मनाया जाता है, अस्थमा के प्रति जागरूक करने के लिए।
2: डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आज विश्व अस्थमा दिवस मना रहे हैं, तो अस्थमा बीमारी की अगर हम बात करें तो किस तरह के शुरुआती लक्षण आते हैं डॉक्टर साहब?
1: जैसे कि देखा जाए कि अस्थमा की बीमारी जो है ये बच्चों में और बुजुर्गों में ज्यादा होती है, और जैसे कि क्लाइमेट वेरिएशन होता है, वायु प्रदूषण है, इन सब से ये दिक्कत ज्यादा होती है। इसमें शुरुआती लक्षण होते हैं जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी के सिम्टम आते हैं, छाती में जकड़न और घबराहट, जिसको हम वीजिंग कहते हैं, एक टिपिकल शब्द होता है वीजिंग, जिसके ये प्रमुख लक्षण है।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपको पता चल जाता है इस तरह के लक्षण मरीज में आ रहे हैं, तो उसके अलावा जो पुष्टि के लिए किस तरह के टेस्ट आप मरीज के करवाते हैं?
1: जैसे कि हम एक रूटीन में इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं इसकी, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं ताकि इसमें इन्फेक्शन देखने के लिए कि क्या इन्फेक्शन है कि नहीं है। छाती का एक्सरे कराया जाता है, जिसमें कुछ टिपिकल सिम्टम लगते हैं तो हमें ब्लड टेस्ट हो गया, छाती का एक्सरे हो गया, और एक स्पायरोमेट्री वगैरह टेस्ट होते हैं जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं इसको जानने के लिए।
2: तो जैसे डॉक्टर साहब, ये प्रमाणित हो जाता है कि जो पेशेंट है वो उसको अस्थमा हो गया, तो उसके बाद किस तरह की ट्रीटमेंट आपके द्वारा दी जाती है वो हमें बताइए।
1: इसमें कई प्रकार की ट्रीटमेंट है। जो सबसे पहला ट्रीटमेंट हमें, जो मेन बेसिक ट्रीटमेंट है, वो होता है कि इसको डाइट और लाइफस्टाइल, और हमें जैसे प्रदूषण वगैरह इन चीजों से बचना, इनसे दूर रहना, और इन चीजों से अपना जितना बचा जा सके, प्रदूषण हो गया, धूम्रपान हो गया, और जिसको जैसे एलर्जी वगैरह है, इन चीजों से बचना और दूर रहना। उसके बाद जैसे कि हमें कुछ इनके लिए स्पेशल इनहेलर्स होते हैं जो इसके ट्रीटमेंट पार्ट होते हैं, जिन ऐसी दिक्कत है जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कुछ और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो उनको खासकर ध्यान रखना चाहिए। उनके सिम्टम्स ये रात में ज्यादा एग्रावेट होते हैं। जो इनहेलर्स पे पेशेंट हैं उनको इनहेलर्स अपने रोज लेने हैं, टाइम पे लेने हैं, उनको बीच में उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो दिक्कत बढ़ जाएगी और वो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट की बीमारियां जो होती हैं वो उसको और एग्रावेट करते हैं और वो दिक्कत बढ़ा देते हैं। तो अपने जो इनहेलर्स हैं वो रेगुलर टाइम पे जिनको बंधे हुए हैं वो लेने हैं। साथ में कुछ एंटी एलर्जिक टेबलेट्स होती हैं जो एलर्जी और इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, वो साथ में हम एड ऑन करते हैं। और कुछ ज्यादा अगर सिम्टम या कुछ दिखाई देते हैं जैसे चेस्ट एक्सरे या स्पायरोमेट्री वगैरह में, तो उनमें हम एंटीबायोटिक्स भी एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो मेन जो इसका ट्रीटमेंट, शुरुआती ट्रीटमेंट है, हमें उन चीजों से बचना है जिनको इस चीज की दिक्कत है, एलर्जी की दिक्कत है, उनको मास्क यूज करना है, और प्रदूषण, धूम्रपान, अल्कोहल, इन चीजों का सेवन कम करना है, बिल्कुल लिमिटेड करना है, और इनहेलर्स रेगुलर लेने हैं, साथ में एंटी एलर्जिक टेबलेट साथ में जोड़नी है, और अपना खासकर ध्यान रखना है बच्चों को और बुजुर्गों को।
2: डॉक्टर साहब, देखे किसी को अस्थमा जैसी बीमारी हुई ना, तो अगर स्टार्टिंग के हम शुरुआती सावधानियों की हम बात करें, तो किस तरह से हमें सावधान रहने की जरूरत है, हम इस तरह के कार्य करें कि जो अस्थमा जैसी बीमारी है वो हमें जकड़ी ना पाए?
1: हमें अपनी ना एक सबसे जो बड़ी कमी है आजकल की, अपना डाइट लाइफस्टाइल, सोने का पैटर्न जो है वो सब कुछ डिस्टर्ब है। खाना टाइम पे नहीं खाना, सोने का टाइम नहीं है, हर टाइम जो आजकल का जीवन शैली हो चुकी है वो सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, और हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स हरी सब्जियां हो गए, विटामिन सी हो गया, इन सब का सेवन से बचते हैं। और जो तली हुई चीजें हैं, ऑयली फूड है, जंक फूड है, इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो रखे हैं, इनसे ये चीजें बढ़ती हैं। तो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो अपनी जीवन शैली को ठीक करना है, सही समय पे सोना, कम से कम

0: 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, जूसेस, इनका सेवन को बढ़ाना, फाइबर डाइट को बढ़ाना और अपनी जो एलर्जी की आस्थमेटिक हैं उनको बचना। और जैसे मौसम चेंज होता है, आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो ये उन पेशेंट्स में ज्यादा बीमारी बढ़ती है और उनको खासकर इन चीजों का ध्यान रखना।
1: तो डॉक्टर साहब, आज जैसे हम विश्व अस्थमा दिवस मना रहे हैं तो अंत में क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा?
0: ये संदेश रहेगा कि आजकल हमें अपनी जीवन शैली को ठीक करना है, हमें पानी का इंटेक, जैसे अब गर्मी जैसे ज्यादा बढ़ेगी तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, पानी सूख खत्म होता जाता है, तो पानी का इंटेक प्रॉपर लेना है, प्रॉपर आपने 8 घंटे की नींद लेनी है और जो ये एलर्जिक पेशेंट है, अस्थमेटिक पेशेंट है उनको इनहेलर अपना स्किप नहीं करना है, रेगुलर लेना है, जो साथ में एसोसिएटेड डायबिटीज हाइपरटेंशन की दवाइयां चल रही है उनको भी ज्यादा ध्यान देना है और हमें इन चीजों से बचना है जो हमारी इन चीजों को एग्रावेट करते हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल या एलर्जी, डस्ट एलर्जी, और मास्क का रेगुलर यूज करना है और बीच बीच में थोड़ा स्टीम वगैरह हम लेते रहेंगे तो हमारे जो रेस्पिरेटरी कंजेशंस है या मौसम चेंज की वजह से वायरल हो रहा है इन चीजों से बचा जा सकता है और हरी सब्जियां, विटामिन सी, फ्रूट्स और जूसेस का सेवन ज्यादा करना है ताकि हम सब स्वस्थ रहें और इनहेलर्स ज्यादा से ज्यादा हम इन पेशेंट्स को प्रोवाइड करें और रेगुलर वो अपने इन ट्रीटमेंट को फॉलो करें और कुछ भी अगर दिक्कत लगती है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर की सलाह लें।
1: तो डॉक्टर आशीष अनेजा जी, सीनियर फिजिशियन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हेल्थ सेंटर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: और साथियों, आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में। साथियों, जहाँ पे दिनांक 5 मई को नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। साथियों, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी। साथियों, इस एक दिवसीय सेमिनार की शुरुआत में सभी का स्वागत करते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ देवा ने कहा,
3: आप सबको सादर नमस्कार। सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर आधारित इस सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे लिए हर्ष और गर्व का विषय है कि इस शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम सभी भली भांति जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं की बहुत चिंता करते हैं और युवाओं में भी हमारी बेटियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उन्हें कैसे सशक्त बनाया जाए, यह हमेशा उनकी सोच में रहता है। वह सदैव इस बात पर बल देते हैं कि एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में नारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए उनका सशक्त होना अनिवार्य है। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि ऐसे कर्मठ मुख्यमंत्री आज स्वयं यहां उपस्थित होकर हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को आशीर्वाद देने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार तथा हरियाणा सरकार के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। साथ में ही हमारे पूर्व में मंत्री रहे श्री सुभाष सुधा जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, बहन कमलजीत कौर जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री विश्राम मीना जी, सुपरिटेंडेंट पुलिस श्री चंद्रमोहन जी, हमारे रजिस्ट्रार प्रोफेसर वीरेंद्र पॉल, डीन स्टूडेंट वेलफेयर चौधरी प्रोफेसर एआर चौधरी, प्रोफेसर मंजुला, प्रोफेसर प्रीति जैन, डॉक्टर सलोनी पवन दीवान और सभागार में उपस्थित सभी डीन्स, डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, मीडिया पर्सन और सबसे महत्वपूर्ण हमारी नारी शक्ति, जो बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारी बहनें, हमारी बेटियां यहां उपस्थित हैं, आप सबका भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज का विषय सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र अत्यंत महत्वपूर्ण और समकालीन है। विशेष रूप से यह विषय महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, इसके संदर्भ में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आज स्थिति यह है कि हमारी महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में हमारी संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। महिलाओं के दृष्टिकोण के बिना हमारी नीति

0: नीतियां जो हम लोग संसद और अपनी विधानसभाओं के अंदर बनाते हैं वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती हैं। इस संदर्भ में आपका ध्यान मैं तीन अवधारणाओं की तरफ दिलाना चाहूंगा, इन तीन शब्दों की तरफ। और ये तीन शब्द हैं इक्वालिटी, इक्विटी और इंक्लूसिविटी। अगर हिंदी में कहें इक्वालिटी यानी कि समानता, इक्विटी यानी कि न्याय संगत समानता या समता, और इंक्लूसिविटी का मतलब समावेशिता। हम अगर अपने संविधान की बात करें तो संविधान में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए हैं, यानी कि इक्वालिटी मौजूद है। संविधान न्याय संगत समानता की बात भी करता है, परंतु वास्तविकता यह है कि इक्विटी यानी कि न्याय संगत समानता अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है और यह पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है। इक्विटी को सरल उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ये समझिए कि एक दीवार है, लगभग 8 फीट ऊंची है, और उसके दूसरी तरफ मैच चल रहा है, और हम इस तरफ से कुछ लोग खड़े हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो सब लोग मैच को देखें, और हम उन सब लोगों को एक बराबर की ऊंचाई का स्टूल दे देते हैं। तो जो लोग लंबाई में ज्यादा हैं वो तो लोग उस स्टूल का प्रयोग करके उस मैच को देख सकते हैं, परंतु जिनकी हाइट कम है वो उस स्टूल का उपयोग करके उस मैच को अभी भी नहीं देख पाते। यानी कि हमारे को जो स्टूल देना चाहिए वो जरूरत के मुताबिक देना चाहिए, जिसकी हाइट कम है उसका स्टूल थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए ताकि वो भी मैच देख सके। यही चीज जो हमारा विमेन रिजर्वेशन बिल है, ये इसी जो इक्विटी, इक्वालिटी और इक्विटी के बीच का जो डिफरेंस है उसी को पूर्ण करने का ये काम कर रहा है, ऐसा प्रयास है। ये जो हमारी मातृशक्ति जो किन्हीं आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक कारणों से किसी कारणवश पीछे रह गई, उनको अतिरिक्त अवसर देकर उनकी भागीदारी को सुरक्षित करने का काम एक इक्विटी प्रोवाइड करने का काम ही है। और इंक्लूसिविटी, समावेशता इससे भी एक कदम आगे बढ़कर है, यानी कि ना केवल हमने उनको उचित अवसर, उचित स्थान देना है, परंतु हमने उचित सम्मान देकर उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी है। इसको हम इंक्लूसिविटी या समावेशता के नाम से जानते हैं।
1: साथियों, इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा,
2: भारत माता की ये जय भी कहीं नहीं बोली जाती किसी दुनिया के देश में। अगर जय कहीं माता की बोली जाती है तो हम सब का परम सौभाग्य है, भारत माता की ही जय बोली जाती है। इसमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, और जब ये विषय हमारे सामने आए तो जोरदार भारत माता की, बहुत ही सम्मान के योग आज के इस ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं विशेष तौर से सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सशक्त नारी, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र, इस पे आज इतनी भारी संख्या में हमारी बहनें आज एकत्र हुई हैं। इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, यहां से विधायक भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सरदार तेजेंद्र सिंह गोल्डी जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, हमारे वाइस चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड धूमन सिंह किरमत जी,

सभी हमारे शिक्षकगण, हमारे महिला प्रोफेसर, हमारे महिला डॉक्टर्स, हमारे महिला एडवोकेट्स, हमारी महिला बुद्धिजीवी और सभी हमारे आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बेटियां यहां उपस्थित हैं, मैं आप सबको आज इस कार्यक्रम के आयोजन पर, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है, ये सेमिनार जो आज रखा गया है कि अगर नारी सशक्त होगी तो समाज हमारा सशक्त हो जाएगा। ये बड़ी गहरी बात है। और समाज हमारा सशक्त होगा तो राष्ट्र बुलंदियों को छुएगा। मैं इसके लिए धन्यवाद भी करता हूं। आज मुझे खुशी है ये सेमिनार उस पवित्र भूमि पर रखा गया है जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। और ये वो पवित्र संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के ऊपर महाभारत के समय वो दिया, महाभारत के समय दिया। आप देख रहे कितना बड़ा युद्ध हुआ, कहीं बड़े बड़े लोग चले गए। वो युद्ध क्यों हुआ इसके ऊपर भी हमें विचार, जानते हैं, सोचते हैं कि जब नारी का अपमान हुआ, नारी का जब अपमान हुआ तो इसी भूमि पर वो महाभारत का युद्ध हुआ। और आज हम नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर विचार करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। बहनों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि ये हमें संदेश देती है कि न्याय और अधिकार की बात हो तब मौन नहीं, निर्णय आवश्यक है। चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके आज हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। आज उद्योगों में भी उन्होंने, बड़े बड़े उद्योगों में भी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी और व्यापार समूहों में भी, वित्तीय संसाधनों के प्रबंधनों में भी, संचालन में अपनी प्रतिभा की हमारी महिलाएं छाप छोड़ रही हैं। आज जब देश की बेटियां स्टार्टअप चलाती हैं या वैज्ञानिक बनती हैं तो पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा होता है। बहनों, नारी केवल एक व्यक्ति नहीं है, नारी बल्कि एक संस्था के रूप में है। एक शिक्षित और सम्मानित नारी एक पूरे परिवार को शिक्षित और संस्कारित करती है। यदि एक मां संस्कारित है तो अपने पूरे बच्चों को संस्कार देने का काम नारी ही करती है। एक मजबूत परिवार एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। बहनों, इस बात को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनसेवा का दायित्व संभालते ही महिलाओं को की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सशक्तिकरण का ये बीड़ा उठाया है। मुझे खुशी है कि आज इस अवसर के ऊपर आप इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। और इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आपको विधानसभाएं हो चाहे लोकसभा हो, उनमें 33% आरक्षण देने का प्रयास उनका निरंतर जारी रहेगा। और मैं आपको एक और विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय मोदी जी हैं, जो बोलते हैं उसको तो करते ही हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी धरातल पर उतार देते हैं, यही नरेंद्र मोदी है। वे ऐसे भारत का, आदरणीय मोदी जी ऐसे भारत का निर्माण वो करना चाहते हैं जहां नारी को अवसर मिले, अधिकार मिले, जहां हर बेटी अपने सपनों को साकार कर

0: सके, हर महिला आत्मनिर्भर बन सके, ऐसे भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं। मुझे खुशी है, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगा, मैं दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगा। मत समझो कमजोरी से, यह शक्ति का स्वरूप है। मत समझो कमजोरी से, यह शक्ति का स्वरूप है। नारी से ही सजा हुआ जीवन का हर रूप है। जहां मिले सम्मान उसे वही सच्चा प्रकाश है। नारी के उत्थान में ही राष्ट्र का विकास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और एक मैं आज कुछ यहां पर बात भी कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी इतनी भारी संख्या में बेटियां भी हैं, महिलाएं यहां बैठी हैं, कि हमारा जो 300 पीएचडी महिला शोधकर्ताओं के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महिला छात्रावास का शीघ्र निर्माण किया जाएगा, इसके बारे में मैं आज बोलता हूं। जो महिलाएं अपना स्टार्टअप लगा करके उद्यमी बनना चाहती हैं, जो बेटियां अपना स्टार्टअप लगा करके उद्यमी बनना चाहती हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर यूनिवर्सिटी द्वारा 5,000 रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यूनिवर्सिटी में एआई का सेंटर ऑफ एक्सलेंसी अभी छोटे स्तर पर चल रहा है, उसका शीघ्र ही विस्तार कर दिया जाएगा। उसमें महिला प्रशिक्षकों को फीस में 50% तक की छूट दी जाएगी। और इसी तरह महिलाएं सिविल सर्विसेज, जुडिशरी या बैंकिंग सर्विस इत्यादि में परीक्षाओं की तैयारी जो करना चाहेंगी, ऐसी सुपर हमारी 16 बेटियों महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी में कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी और उनको फीस में 50% की छूट दी जाएगी। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बातें जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया है, बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर अगर चर्चा करने लगे मैं बिना, इतने काम मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण में किए हैं कि हम लंबा समय उसके ऊपर बोल सकते हैं। बहुत सारे काम हैं, बेटियों को सशक्त करना, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना, ये आदरणीय मोदी जी का संकल्प है। आज के इस अवसर पर जो ये महत्वपूर्ण आज का ये विषय सम्मेलन हुआ है, सशक्त नारी, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र, इसके लिए मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।
1: और साथियों, कार्यक्रम के अंत में महिला शक्ति को सम्मानित किया गया हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायर सिंह सैनी द्वारा। और साथियों, आपको जानकारी देंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी की जो परीक्षाएं हैं वो 6 मई से शुरू हो चुकी हैं। साथियों, अगर आपको किस तरह की परीक्षाओं संबंधित किस तरह की दिक्कत है और परीक्षाएं देने से पहले किस तरह की सावधानियां हमें रखने की जरूरत है, साथियों तमाम जानकारियां हमें दे रहे हैं।
2: मैं डॉक्टर अंकेश्वर प्रकाश, कंट्रोलर एग्जामिनेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र।
3: सर, इस समय कुरुक्षेत्र विद्यालय की जो परीक्षाएं हैं यूजी और पीजी की वो 6 मई से शुरू हो चुकी है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
2: हमारी परीक्षाएं 6 मई से सभी यूजी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज सेमेस्टर क्लासेस की शुरू हो चुकी हैं, बीएड की शुरू हो चुकी हैं और उसके बाद मुझे लगता है 9 तारीख से बीटेक की क्लासेस के पेपर भी शुरू हो रहे हैं और ये पेपर जो है लगभग 20 जून तक चलेंगे।
3: सर किस तरह की कहीं जो समय सारणी है वो विद्यार्थियों के लिए रखी गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो गर्मी का मौसम है वो भी शुरू हो चुका है।
2: समय सुबह 9:30 से 12:30 और दोपहर को 2 से 5, ये हमारा विद्यार्थियों के लिए समय है।
3: जैसे अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा संबंधित कोई समस्या आती है सर, तो उस समस्या का समाधान कहाँ से विद्यार्थी करवा सकता है?
2: वो हमने पे नंबर वेबसाइट पर डिस्प्लेड हैं और जो बच्चों की डेट शीट है उसके नीचे भी नंबर लगे होते हैं, और उसके अलावा कोई भी विद्यार्थी मेल से किसी भी माध्यम से मैं अप्रोच करता हूँ, उसकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है।
3: सर अंत में चाहेंगे आपकी तरफ से क्या संदेश हमारे विद्यार्थियों के लिए रहेगा?
2: विद्यार्थियों के लिए मैं संदेश देना चाहूंगा कि एक तो वो पेपर इंश्योर करें कि जो जिस पेपर का पेपर वही क्वेश्चन पेपर मिला है, इसलिए अपनी डेट शीट ध्यान से देखें
3: जी,
2: और उसके बाद ही पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करें। दूसरा, उनको जो आंसर बुक्स मिलती है उसको एक बार ध्यान से चेक करें, उसके पेजेस काउंट करें, जरूर काउंट करें। तीसरा, अपना रोल नंबर वो ध्यान से लिखें, वर्ड्स में, डिजिट्स में, और जो उसमें OMR शीट है उस पर ठीक से सर्कल करें ताकि बाद में रिजल्ट निकालने में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो।
3: तो डॉक्टर अंकेश्वर प्रकाश जी, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन कुरुक्षेत्र विद्यालय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
2: जी धन्यवाद जी।
1: और दोस्तों अब आपको ले चलते हैं महाभारत अनुभव केंद्र ज्योतिसर में। साथियों जहां पे दिनांक 8 मई को जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र द्वारा विकसित हरियाणा विषय पर प्रेरणादायक नीतिगत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथियों जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे उपायुक्त कुरुक्षेत्र विश्राम कुमार मीणा। और साथियों आपको ले चलते हैं ब्रह्म सरोवर के पावन तट पे। साथियों जहां पे दिनांक 9 मई को समापन हो गया 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का। और साथियों 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का भव्य उद्घाटन हुआ दिनांक 5 मई को। साथियों जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कमिश्नर अंबाला श्री संजीव कुमार वर्मा। साथियों इस राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न जिलों के लगभग 130 प्रतिभागियों ने भागीदारी की। साथियों उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए अंबाला कमिश्नर श्री संजीव कुमार वर्मा ने कहा,
4: आज ये स्टेट लेवल का यहाँ शिविर लगा हुआ ट्रेनिंग देते हैं मॉनसून सीजन से पहले, अपने सभी जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं तो इसको हरेक 87 लोग आते हैं, इस बार 130 लोग इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि जब बाढ़ आए तो किसी भी नागरिक को कोई असुविधा ना हो, उसकी जान और माल की हिफाजत के लिए इनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। उसी कड़ी में ये 6 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा पूरे हरियाणा से। इसके लिए जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, जितने भी लाइनिंग डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए भी हमने गुजारिश की है यहाँ के जिला प्रशासन से कि जो एनिमल हस्बेंड्री के अधिकारी हैं, जो यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस बल के लोग हैं, उनको भी इसमें आमंत्रित करेंगे और इनकी जो उसमें जरूरी चीजें हैं उनको बताएंगे।
1: और साथियों इस राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया 9 मई को। साथियों जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए उपायुक्त कुरुक्षेत्र विश्राम कुमार मीणा। और साथियों राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर बेहतरीन कार्य करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। साथियों कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आज के संक में सिर्फ इतना ही। साथियों आज के संक में वाचन संकलन और संपादन रहा आपके दोस्त अमरीक सिंह का, प्रस्तुति सहायक दीपक और प्रस्तुतकर्ता विनय श्री। साथियों इसके साथ ही अनुमति दीजिए अपने दोस्त अमरीक सिंह को, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्रस्तुति अमरीक सिंह की थी। FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओ लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में कई बार हमें ऐसे लोग भी ज़रूर मिल जाते हैं जो बिना कहे हमारी तकलीफ़ समझ लेते हैं, और यही बात दोस्ती में तब्दील हो जाती है।

तो भाई जिंदगी में कुछ याराने यानी दोस्त ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और करीब आ जाते हैं। किसी ने कहा है कि मुस्कानों का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। भाई जो याराने हैं वो सिर्फ हंसी मजाक ही नहीं होते, बल्कि भरोसे और अपनापन का दूसरा नाम है याराना। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी दोस्ती हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है।

0: दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम याराने विषय पर आपसे और बातें करेंगे। आप जाइएगा नहीं, सिर्फ इस छोटे से अंतराल के बाद फिर मिलते हैं आपसे।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: पुलिस?
3: मिस सीमा
5: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
5: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
5: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख दो, बच जाओगे।
5: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
5: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
3: अरे?
5: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
8: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
10: जी,
9: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
10: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
9: पर ये होगा कैसे?
10: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
9: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
10: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
9: बस समझ गया।
10: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में फिर से, और हम आपसे बात कर रहे थे याराने की, दोस्ती की। श्रोता दोस्तों, आज मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में दोस्ती के मायने थोड़े बदल जरूर गए हैं, लेकिन दिल से निभाए गए रिश्तों की खुशबू आज भी वैसी ही है। अब याद आते हैं ना वो दिन स्कूल के, वो टिफिन शेयर करना, वो बिना वजह घंटों बातें करना और फिर छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, याद आता ना हमें। भाई जिंदगी में दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती में जिंदगी होती है। और दोस्तों कभी कभी याराने में, दोस्ती में वो दौर बड़ा नाजुक होता है जब कोई यार रूट जाए, और भाई उस अवसर को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

0: दोस्तों, वक्त की यारी तो हर कोई करता है। मज़ा तो तब है जब वक्त बदल जाए और यार ना बदले। इसी खूबसूरत सोच के साथ, इसी विचार के साथ कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से अपने दोस्त प्रदीप को दीजिए इजाज़त। हम लेकर आएंगे कुछ ऐसे ही एहसास इसी कार्यक्रम में इसी समय। स्वीकार कीजिए, नमस्कार।
1: बम बम बम फिर तू ना नाचे, डम डम डम डम।

अभी आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ क्षण में हम सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 से रात्रि 10 बजे तक, और हमारे केंद्र से सजीव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 10 बजे। हेलो FM, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं

0: सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
4: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें
3: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
4: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है
3: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
4: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है
3: The Somnath Temple, located at Prabhaspatan in Gujarat and widely revered as the foremost of the 12 Jyotirlingas, is marking 75 years since its reconstruction. To commemorate the occasion, the Somnath Amrit Parv is being celebrated. The Somnath Temple has also come to symbolize enduring pride and cultural identity. Prime Minister Narendra Modi will participate in the celebrations tomorrow at Prabhaspatan and will also address a public gathering on the occasion. We have a report.

मोहम्मद रफी की आवाज में आप वासना फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। आपके लिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं बड़ा आदमी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, रचना प्रेम धवन की है और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में बड़ा आदमी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना प्रेम धवन की थी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में लीजिए सुनिए एसएच बिहारी का लिखा गीत। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आए।

टोपी मेयर के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया गीत। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर

संगीतकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणि मोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेन्द्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रविंद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रविंद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए ये गाना सुनिए।

प्रेक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।

1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

इतनी बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्य की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी याद।

फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था। हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत

0: पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया। हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगी।
1: दो नैना मतवाले तिहारे

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

0: हर फूल में बसा है, हर चीज में उसी का जलवा झलक रहा।
1: पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जानी मानी गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

धरती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।

अभी आप सुने थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो FM।

0: हेलो एफएम कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग हमें मिल रहा है अमरजीत सिंह से, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं विनय श्री खुराना। और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे श्रोता इस समय टेलीफोन लाइन पर हैं, जिसके लिए हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो है 2213322। कुरुक्षेत्र का जो एसटीडी कोड है वो है 017744, यानी 01744। ये कोड लगा करके और साथ में जो टेलीफोन नंबर है 2213322 डायल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद का गीत इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन श्रोता इस समय टेलीफोन लाइन पर है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो एफएम।
1: हाँ सर जी, नमस्कार
0: जी। बहुत बहुत नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: सर जी, मैं जिला सोलापुर से रणजीत राठौर बोल रहे हैं।
0: रणजीत राठौर, बहुत बहुत स्वागत है रणजीत भाई आपका।
1: जी सर जी, पहली बार जुड़ा हूँ आपके कार्यक्रम में।
0: अच्छा, ऐसा क्या?
1: पहले बहुत प्रोग्राम सुन रहे थे तो मैंने कहा चलो आज भी मैं भी नंबर ट्राई कर लेता हूँ।
0: बहुत अच्छा किया, और देखिए आपका फोन लग गया।
1: जी जी, बहुत खुशी हो रही है।
0: जी बहुत बहुत, हमें भी खुशी हो रही है। अच्छा, आपने पहले कोशिश नहीं की इस कार्यक्रम से जुड़ने की?
1: जी सर, कोशिश की नहीं की थी कभी, तो हमने कहा चलो आज लगा लेते हैं, देखते हैं।
0: अच्छा, तो आज पहली बार आपने कोशिश की और रंग लाई आपकी कोशिश।
1: जी जी
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए अपने बारे में, क्या काम करते हैं आप?
1: सर जी, मैं रेहड़ी लगाता हूँ।
0: अच्छा, रेहड़ी लगाते हैं, तो किस तरह का सामान बेचते हैं आप?
1: सर जी, अपना फल का रेहड़ी है।
0: अच्छा, फल बेचते हैं।
1: केला है, संतरा है, अमरूद है।
0: वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी सेवा है आपकी तरफ से। तो सब काम ठीक चल रहे हैं ना आपके?
1: हाँ, काम सही चल रहा है।
0: अच्छा जी, तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप इस कार्यक्रम में?
1: आज गीत सुनवा दीजिए, फिल्म महबूब की नींदी।
0: अच्छा जी, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: गाने के बोले जाने के वो लोग मोहब्बत किया करते हैं।
0: वाह, ये तो बहुत मीठा गाना चुना आपने।
1: जी
0: तो
1: जी।
0: सुने आपकी पसंद का गीत?
1: जी सर, जितने भी सुन रहे हैं सभी के लिए डेडिकेशन है, और आपके लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। सुनते हैं आपके पसंद का गीत।
1: ठीक है, धन्यवाद।

0: ਹੈਲੋ ਐਫ ਐਮ
1: ਹੈਲੋ ਐਫ ਐਮ
0: ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ
1: ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ
0: ਸਰ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਾਧੌਰ ਸੇ
1: ਅੱਛਾ ਗੌਰਵ ਰਾਧੌਰ ਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਪਕਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੈਂ
0: ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਦਾਰ
1: अच्छा कभी कभी
0: गाड़ी में भी लगा लेते हैं जी वैसे घर भी चला लेते हैं
1: अच्छा जी
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है क्या काम करते हैं आप अपने बारे में बताइए
0: बस सर यही बस खेती बाड़ी में सोचता है जी
1: अच्छा खेती बाड़ी का काम है तो सब ठीक चल रहे हैं आपके काम सब
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर
1: अच्छा जी तो आज आपने फोन मिलाया कौन सा गीत सुनने के लिए फोन किया आपने
0: सर ये सोलो फिल्म जब पसीना रुक जाती है जी
1: पसंद है आपको ये गीत
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक तो बहुत अच्छे गीत हैं जी पुराने
1: अच्छा जी तो ये फिल्म तो आपने देखी होगी
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत फेवरेट फिल्म है जी
1: अच्छा कितनी बार देखी एक बार या कई बार
0: बस जी बीच में पांच सात बार ही देख लीजिए तो जब चलता है टीवी टूवी अपना देख लेते हैं जी
1: अच्छा और इस फिल्म का कौन सा डायलॉग आपको याद आता है आज भी
0: डायलॉग तो बस
1: अच्छा कितने आदमी थे ये याद
0: तो जो दूसरी लैंग्वेज
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाई आपने फोन मिलाया
0: धन्यवाद

0: जी नमस्कार सर जी।
1: जी बहुत बहुत नमस्कार आपको, कौन बोल रहे हैं जी, कहाँ से?
0: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजमेर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ।
1: हाँ, सुरेश सैनी भाई महोबा के इलाके से हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो एफएम कार्यक्रम में।
0: जी
1: आपने इलाके के बारे में बताइए, महोबा का बहुत नाम सुना है, क्या खास है वहाँ?
0: जी सर जी, हमारे यहाँ महोबा जिला आला उदल की नगरी से पहचाना जाता है।
1: अच्छा जी,
0: क्योंकि हमारे यहाँ सावन के महीने में मेला भी लगता है यहाँ पे।
1: अच्छा जी,
0: और हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है और गर्मी बहुत अधिक पड़ती है इस समय। मैं मान के चलिए बहुत अधिक टेम्परेचर शायद मेरे अंदाज से 44-45 घंटे में होगा।
1: तो
0: और अभी तो जो बारिश हुई थी तो उससे कुछ राहत मिली थी, ठंडक भी आ गई थी अच्छी।
1: हाँ, मौसम में थोड़ा बदलाव है
0: जी,
1: तो गर्मी का तो मौसम है ही, अपना ख्याल रखिए। और सुनाइए आप क्या काम करते हैं?
0: जी सर मैं खेती करता हूँ और साथ में फूलों का डेकोरेशन का भी काम करता हूँ।
1: अच्छा जी, तो फूलों की डेकोरेशन का ये काम कहाँ से सीखा आपने?
0: जी सर मेरे भाई करते हैं, वो बुआ के लड़के हैं, वो
1: अच्छा
0: करते हैं छतरपुर में एमपी में, ऐसे हम लगा हुआ है एमपी और यूपी बॉर्डर पे हमारा गांव।
1: जी सब काम ठीक चल रहे हैं ना आपके?
0: जी जी अच्छा चल रहा है सर।
1: अच्छा जी, तो कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
0: जी सर मुझे सुनना है, आज फिल्म का नाम है रामावतार और गीत के बोल है, तेरी बेबाई का शिकवा करो तो मेरी मोहब्बत की तोहीन होगी। ये वाला गीत है जी, और मैं बधाई देना चाहूंगा जयपाल यादव जी की, उन्होंने सूचना डाली अभी ग्रुप में।
1: अच्छा,
0: कुरुक्षेत्र से लाइव कार्यक्रम चल रहा है।
1: वाह,
0: उन्होंने

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटी

0: हेलो
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी?
0: हेलो
1: जी हेलो
0: सर जी, नमस्कार
1: जी। बहुत बहुत नमस्कार। कहाँ से हैं जी, कौन बोल रहे हैं?
0: सर। सर मैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप आपसे बात कर रहा हूँ सर।
1: वाह जी वाह, मुकेश जी कैसे हैं आप? सब
0: सर
1: ठीक
0: मैं
1: है?
0: बहुत अच्छा, सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो सर?
1: सब कुशल से हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो एफएम कार्यक्रम में।
0: सर जहाँ तक मैं आपको पहचान पा रहा हूँ तो आप प्रदीप जी बोल रहे हैं?
1: हाँ मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। और कब
0: जी
1: फोन मिलाया था आपने इस कार्यक्रम में?
0: सर मैंने तो सर इस प्रोग्राम में शायद 1 साल पहले फोन लगाया था और आज मैंने कोशिश की और आज मेरी कॉल लग गई सर।
1: तो बहुत अच्छी बात है। तो बीच में कभी आपने कोशिश नहीं की जुड़ने की?
0: कोशिश एक दो बार की थी मगर मेरा फोन नहीं लग पाया।
1: अच्छा,
0: और आज मैंने कोशिश की और मेरी कॉल लग गई।
1: चलिए,
0: मुझे बहुत खुशी हो रही है सर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फोन मिलाने के लिए। तो अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप?
0: सर मैं गाड़ी भी चलाता हूँ और सर मैं खेती बाड़ी भी करता हूँ और हमने अभी खेतों में से गेहूँ की फसल उठाई है सर।
1: वाह जी वाह, तो यानी मल्टीपर्पज काम करते हैं, बहुत
0: जी।
1: अच्छी बात है। तो सब काम ठीक चल रहे हैं आपके?
0: जी सब बढ़िया चल रहे हैं सर काम।
1: अच्छा ये बताइए, हमारे केंद्र का प्रसारण कैसा पहुंचता है आपके यहाँ तक?
0: सर आपका यहाँ का प्रसारण हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा आ रहा है क्योंकि हम आपका प्रोग्राम मोबाइल ऐप के जरिए सुनते हैं सर।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जल्दी से अपनी पसंद बता दीजिए
0: जी।
1: अपनी पसंद का गाना बताइए।
0: सर फिल्म का नाम है दाग द फायर।
1: अच्छा,
0: गाने बोले परदेसी आई इतना बता सर।
1: तो ये गीत पसंद है आपको?
0: कुछ नाम ले सकता हूँ सर?
1: हाँ जी लीजिए, अपने परिवार के लोगों के नाम।
0: सर मेरे बड़े भाई साहब है सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, मेरी बहन है काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष, क्रोनी, मोहनी, ऋतिक और मेरे पापा है बलवीर सिंह और हमारी वाइफ है प्रीत।
1: जी तो सभी बहुत।
0: सर हमारे एक दोस्त है जयपाल यादव जी।
1: अच्छा जी, तो चलिए आप सबको सुनवाते हैं मुकेश जी आपकी पसंद का ये गाना सबको।
0: नमस्कार सर।

0: हेलो प्रदीप सर जी, नमस्कार
1: जी। बहुत बहुत नमस्कार। आवाज तो जानी पहचानी है, कौन बोल रहे हैं जी?
0: बिल्कुल निशान लग रही है सर।
1: कहाँ से कौन बोल रहे हैं?
0: मैं अशोक कुमार भारद्वाज कोल
1: कैथल से। हाँ, अशोक कुमार भारद्वाज कोल कैथल से जी। आप तो धार्मिक पूजा पाठ का काम करते हैं ना?
0: हाँ जी, हाँ जी, पूजा पाठ का काम।
1: हाँ जी जी, कैसा चल रहा है आपका काम सब
0: जी?
1: तो
0: चल रहा है काम।
1: अच्छा जी, तो कौन कौन से हमारे कार्यक्रम आप सुनते हैं?
0: हाँ जी, सुबह सुबह और उसके बाद 10 से 11।
1: अच्छा, तो आज आपको कॉल लगा, कौन सा गीत सुनने के लिए फोन मिलाया आज आपने?
0: आज गाना सुनाते दादा फिल्म का ये खुदा के बाद में दिल पे करते मुस्करा के
1: चल दिए। थोड़ा गुनगुनाएंगे?
0: बाकी दो तीन नाम है, ज्यादा टाइम नहीं।
1: अच्छा जी,
0: हाँ जी
1: जी, सुनते हैं आपकी पसंद का गीत अशोक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
0: शुक्रिया सर।

0: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे हैं जी?
0: जी पिंड मौर खुर्द डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से जगजीत मट्टू बोल रहा हूँ जी, पंजाब से जी।
1: अच्छा जी, मट्टू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हेलो फिल्म का
0: धन्यवाद सर जी।
1: जी कैसे हैं आप?
0: ठीक ठाक जी, तुसी दसो जी।
1: जी सब कुशल से हैं, और अपने बारे में बताइए जी, क्या काम करते हैं जी आप?
0: मैं सर जी एफसीआई लेबर में पल्लेदारी का काम करता हूँ जी।
1: अच्छा जी,
0: कनक वीट एंड राइस बाहरले देश को रेल ड्राइंग से जाते हैं जी।
1: अच्छा जी, तो सब काम ठीक चल रहे हैं ना आपके?
0: हाँ जी
1: हाँ जी।
0: सर जी आपको और श्रोते वीरों को मुबारक।
1: अच्छा जी, आपको भी जी बहुत बहुत बधाई जी। तो कौन सा गीत सुनने के लिए फोन मिलाया जी आज आपने?
0: गीत सर जी पुरानी फिल्म है जी, खतरों के खिलाड़ी।
1: अच्छा,
0: आनंद बख्शी साहब का गीत है जी। ये संगीत लक्ष्मी चाल प्यारे जी, थोड़ा हुक्म होगा थोड़े गुनगुना कर बता दो जी।
1: हाँ जी, क्यों नहीं जी, हम तो आपको चाहते हैं, सुनाइए।
0: तुम से बना मेरा जीवन सुंदर सपन से लो ना, तुम मुझसे कबा ना हो ना, तुम मुझसे जुदा ना हो ना। ये गीत है जी।
1: वाह जी वाह, आपकी आवाज बहुत मधुर है, और इससे लगता है कि संगीत के प्रति आपकी रुचि बहुत है।
0: मेरे जान दोस्त को ना ले लो जी।
1: हाँ जी हाँ, लीजिए ना।
0: मेरे बड़े भाई मान जो है जी सरदार प्रगट सिंह ढिल्लों साहब जी।
1: अच्छा जी।
0: तेजी सुखपाल सिंह नैशनल कलोनी ओ बठिंडा तो जी।
1: अच्छा।
0: टेबल हॉस्पिटल चो डॉक्टर साहब रिटायर हुए जी।
1: वाह जी।
0: ते गोनियाला मंडी तो जी मलकीत सिंह कलीकार जतेदार प्यारा सिंह जी, तुहानू सत्तीकाल बुलाउंदी।
1: तो जी सब सुनिए अपनी पसंद का गीत, और मट्टू जी सुनवाते हैं आपको आपकी फरमाइश का गाना इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
0: तेजी मेरी भैन अपनी अनुराधा को भी सत्री का अनुराधना जी।
1: हाँ जी, सुनिए आप सब।

0: हेलो एफएम।
1: हेलो एफएम जी।
0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: हम छोटी काशी भिवानी से, मदन पाल जी।
0: जी मदन पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका छोटी काशी से। जी अपने बारे में बताइए ना।
1: हम जी हलवाई का काम करते हैं जी।
0: अच्छा जी, तो सब काम ठीक चल रहे हैं आपके?
1: बढ़िया चल रहे हैं जी।
0: तो कब फोन किया था आपने इस कार्यक्रम में?
1: हमने जी एक महीने पहले।
0: अच्छा, एक महीना पहले। थोड़ा रुक कर, थोड़ा समय के एक अंतराल के बाद फोन आप धैर्य रख कर किया करें, ताकि दूसरे श्रोता भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ सके।
1: नहीं जी, हम तो महीने बाद करन मिलाते हैं जी।
0: अच्छा जी, चलिए फिर भी हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का गीत। कौन सा गीत सुनेंगे आप आज?
1: हमें गीत सुनना जी फूल और कांटे फिल्म का, देवगन की पहली फिल्म है जी।
0: हाँ,
1: जो सुपर डुपर हिट हुई थी जी।
0: जी कौन सा गाना सुनेंगे
1: आप? बोला जी प्रेमी आशिका वाला।
0: जी पसंद है आपको ये गाना?
1: बहुत पसंद है जी।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश।
1: ओके,
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: हेलो एफएम।
1: हेलो एफएम
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: कुलदीप सर जी को ग्राम बकोल लदावले से अजीत कसाना का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी अजीत भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नियमित श्रोता हैं, और बहुत अरसे के बाद आपसे बात हो रही है।
1: जी आज मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है और कई साल बाद मैंने कॉल लगाई है।
0: जी तो बहुत दिल से स्वागत है आपका, और
1: धन्यवाद।
0: अच्छा, ऐसे श्रोताओं के लिए आप क्या कहेंगे जो बार बार हमें फोन करते हैं और दूसरे श्रोताओं को मौका नहीं देते?
1: मैं तो यही कहूंगा कि वो भी 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ट्राई किया करें और दोस्तों को भी मौका दिया करें।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और अजीत भाई, अपने बारे में बताइए, क्या काम करते हैं आप?
1: मैं जी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा जी,
1: और खेती किसानी इसमें मैं हमारे यहाँ गन्ने की खेती स्थान पर है।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चीनी मिलें खूब लग रही होंगी आपके यहाँ?
1: जी हाँ, उत्तर

0: प्रदेश में चीनी मिलें काफी हैं और हमारे गांव में ही शुगर मिल है।
1: जी, तो बहुत अच्छी बात है। गन्ने के जो खेती होती है उसमें बड़ी मेहनत लगती है।
0: मेहनत तो जी हर एक काम में है।
1: तो कैसा काम चल रहा है आपका, खेती बाड़ी का काम?
0: खेती का काम बढ़िया चल रहा है।
1: तो हमारे स्टेशन के, हमारे केंद्र के कार्यक्रम सुनते हैं, कब कब सुन पाते हैं आप?
0: जब भी टाइम मिल जाता तभी आपके हम प्रोग्राम जुड़ जाते हैं और रात को आता है ये आपका हेलो एफएम
1: और चांदनी रातें,
0: चांदनी रातें, और सुबह को आता है 8:30 बजे
1: सुबह सवेरे। तो पसंद है आपको?
0: लेकिन उसमें हमारे जो है
1: कॉल नहीं लगती।
0: कॉल नहीं प्रोग्राम में हम आंसर देते हैं लेकिन हमारा मैसेज शामिल, नाम शामिल नहीं होता है, इसलिए हम उसको कम सुन पाते हैं प्रोग्राम।
1: अच्छा, तो आपने इसीलिए छोड़ दिया कि आपका नाम शामिल नहीं होता? अच्छा, ऐसी बात तो नहीं है कि आप जब भी मैसेज करते हैं तो कोशिश तो हमारे प्रस्तुत करता है कि
0: के सभी के नाम शामिल, हमारा मैसेज बराबर शामिल
1: होता। अच्छा जी, चलिए,
0: हम उसको प्रोग्राम को पूरा सुनते हैं। आज भी मैं शुरू से प्रोग्राम जुड़ा हुआ हूँ।
1: हाँ जी,
0: और सभी लिसनर्स के नए भी फरमाइश किया, एक से बढ़कर एक।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: सभी लिसनर का, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आज कौन सा गीत सुनने के लिए फोन किया आप?
0: आज की मूवी का नाम है थानेदार।
1: जी,
0: और गाने के बोले और भला क्या मांगू मैं रब से।
1: जी, पसंद है आपको गाना ये?
0: और ये गाना मैं अपनी पत्नी को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: अच्छा जी, वाह जी,
0: 14 मई को मेरी शादी की सालगिरह आ रही है।
1: वाह जी वाह, तो अग्रिम शुभकामनाएं।
0: शुक्रिया, धन्यवाद।
1: सुनिए,
0: 14 मई 1997 को मेरी शादी हुई थी माया देवी जी के साथ।
1: वाह जी वाह, चलिए आपकी जोड़ी बनी रहे और सुनते हैं आपकी फरमाइश का गीत।
0: मेरे साथ में मेरी पत्नी माया देवी और दो बच्चे ऋतिक और अक्षय का।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
0: मैं जी सुनील पाठक बोल रहा हूँ, ये अनारकली विहार जगराओं पंजाब से।
1: जी सुनील भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एल एफ एम कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सब?
0: बहुत अच्छे हैं भाई साहब, बहुत ही अच्छे जी।
1: जी तो क्या काम करते हैं, अपने बारे में बताइए।
0: हमारी बहुत ही पुरानी दुकान है यहाँ पर अनारकली विहार में, वॉच कंपनी है घड़ियों।
1: अच्छा, घड़ी का काम करते हैं, घड़ी ठीक करते हैं, नई घड़ी देते हैं, तो सब काम ठीक चल रहे हैं आपके?
0: हाँ जी, सब काम ठीक चलते हैं।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल सही चलते हैं जी।
1: जी बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत सुनने के लिए फोन किया आपने?
0: मैं तो जी 46 साल पुराना लिसनर हूँ जी आपका।
1: जी हम जानते हैं इस बात को।
0: कुरुक्षेत्र के सभी प्रोग्राम सुनता, पर मैं फोन कम लगाता हूँ।
1: ऐसा क्यों? कभी कभी तो बात कर लेनी चाहिए।
0: फोन लगाई जाओ, मिलता नहीं, लगाई जाओ, मिलता नहीं, फिर ना
1: दिल टूट जाता है,
0: मूड खराब हो जाता है।
1: थोड़ा इसमें धैर्य की जरूरत होती है, और हमारे साथी लगे रहते हैं, फिर भी कोशिश करते रहते हैं। चलिए आज
0: कोशिश तो करनी चाहिए।
1: अब देखिए ना, आपने आज कोशिश की तो आपका फोन लग गया।
0: मैंने जी देखो पहली बार फोन लगाया और पहली बार ही लग गया।
1: ये तो जी देखो, आपने अब अपना जो विचार है वो बदलना पड़ेगा।
0: आने नहीं, कोई गाड़ी में आगे से करूंगा, जाते जाते मैंने गाड़ी कुरुक्षेत्र की पकड़ी।
1: अच्छा जी, चलिए
0: और आपको जी उसके मदर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी आपको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आप अपनी फरमाइश बताइए जल्दी।
0: हाँ जी, मुझे जी अपना उपहार फिल्म का गीत सुनना है मैंने।
1: अच्छा,
0: जिससे बोला मैं एक राजा तू एक रानी हो।
1: अच्छा जी, तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद का गीत।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी,
1: बहुत शुक्रिया जी।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का हेलो एफएम कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आप तक भेजने में हमें तकनीकी सहायक मिला अमरजीत सिंह से। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं विनय श्री खुराना, और उन सभी सुनने वालों से विनम्र निवेदन जिनकी फोन कॉल्स आज के कार्यक्रम में शामिल हुई, वे सभी हमें कम से कम 4 हफ्ते के बाद ही फोन करें। तो बस आज के कार्यक्रम का सफर यहीं तक। अपने दोस्त प्रदीप को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो एफएम। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षण में हम सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।